मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। आज गुरुवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 14वीं तिथि तदनुसार 4 जून सन 2026 प्रातः के 5:56 और 50 सेकंड हुए हैं। आरंभ होती है आज की हमारी प्रातःकालीन सभा। इस सभा में आपके साथ है आपकी दोस्त तुलिका शर्मा। आप सभी को हमारा नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 6 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम अनुप्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेस के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेता ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, दवा उद्योग, स्वास्थ्य सेवा और नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेस 5 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा, व्यापार और वैश्विक दक्षिण के मुद्दों पर मजबूत सहयोग है। ये यात्रा दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने में सहायक होगी। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भारत की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। आज शाम वे विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मिलेंगी। गृहमंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में पर्यटन, कृषि और बागवानी, निवेश,

0: खेल, बुनियादी ढांचा, संपर्क सुविधा तथा हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार किए जा रहे नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर भी विचार विमर्श होगा। इसके बाद गृहमंत्री त्रिपुरा के दो दिन के दौरे पर आज शाम अगरतला पहुंचेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पश्चिम बंगाल में विभिन्न रेल परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए शनिवार को कोलकाता पहुंचेंगे। पूर्वी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिवाजी माझी ने आकाशवाणी को बताया कि रेल मंत्री मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ नबन्ना सभागार में उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रक और बस को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि योजना के अंतर्गत लगभग 2,00,000 ट्रक और 16,000 बस BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
1: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
0: नई दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में कल एक गेस्ट हाउस में आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक हैं। पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। उसने बताया कि इमारत के मालिक लवकेश बजाज को हिरासत में ले लिया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा है कि घटना के मजिस्ट्रेट जाँच के आदेश दे दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। दो दिनों तक चलने वाली इस बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरी दुनिया में योग अत्यंत लोकप्रिय हो रहा है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वे आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होने वाली प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप 2026 में आभासी माध्यम से शामिल होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस मंच ने दुनिया भर के योग प्रेमियों को जोड़ा है। भारत ने सैफ फुटबॉल महिला चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। 5 बार के विजेता भारत का फाइनल में शनिवार को मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश से मुकाबला होगा। मैच भारतीय समय अनुसार शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। सबसे पहले सुनते हैं ये देशगान।

समूह स्वर में अभी आपने ये देशगान सुना। वंदना में आइए अब आपको सुनवाते हैं हरिओम शरण का गाया ये भक्ति गीत।

मुकेश के स्वर में अभी आपने ये भक्ति गीत सुना। वंदना में आइए अब आपको सुनवाते हैं ललिता घोष का गाया ये भक्ति गीत।

0: अरुण और साथियों के गाए इस भक्ति गीत के साथ ही आज की वंदना संपन्न होती है। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन। आज हम आपको सुनवा रहे हैं श्री जगदीश तोमर से उनके विचार।
1: स्वाध्याय जीवन निर्माण का एक महत्वपूर्ण साधन है। इसलिए प्राचीन काल में जब विद्यार्थी अपना अध्ययन पूर्ण कर गुरुकुल से विदा होता था तो आचार्य उसे अंतिम रूप से उपदिष्ट करते हुए कहते थे, सत्य बोलना, धर्म का आचरण करना, स्वाध्याय में प्रमाद न करना आदि। आज भी अनेक विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोहों में प्राचीन आचार्यों का यह उपदेश औपचारिक रूप से ही सही दोहराया जाता है। इस परंपरा में स्वाध्याय की महत्ता स्पष्टतः प्रतिपादित है। उसका मुख्य प्रयोजन यही है कि स्वाध्याय द्वारा व्यक्ति स्वयं को मानसिक रूप से समृद्ध और संपन्न करता रहे, क्योंकि जब वो प्रज्ञावान होगा तो समाज भी विकासमान और समुन्नत होगा। हम अपने दैनंदिन जीवन में भी स्वाध्याय की उपयोगिता सहज अनुभव कर सकते हैं। हम देखते हैं कि समाज जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कार्यरत विशिष्ट जन कितने ही व्यस्त हों, किंतु वे स्वाध्याय के लिए समय निकाल ही लेते हैं। कितने ही महानुभाव प्रातः अथवा रात्रि को शयन पूर्व कोई पुस्तक अवश्य पढ़ते हैं और उसमें प्रकट विचारों से स्वयं को लाभान्वित करते हैं। स्वाध्याय के संदर्भ में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के एक पत्र का उल्लेख प्रासंगिक होगा। आजादी के लड़ाई के दिनों में एक किशोर ने नेताजी को एक पत्र लिखकर पूछा था कि वो स्वयं को देश के स्वतंत्रता संग्राम के लिए किस प्रकार तैयार करे। इस पर नेताजी ने उसे पत्र लिखकर बताया था कि वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ देश के लिए 1.5 घंटे का समय अवश्य दे। इस 1.5 घंटे में 15 मिनट योगासन या व्यायाम, 15 मिनट ध्यान और 1 घंटा स्वाध्याय के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए। इस पत्र में उन्होंने ये भी लिखा था कि वो स्वाध्याय के अंतर्गत पाठ्यक्रम के अतिरिक्त कोई ज्ञान संपन्न कराने वाली स्फूर्तिदायक एवं प्रेरणादायी पुस्तक का चयन करे। इस दृष्टि से स्वामी विवेकानंद की पत्रावली और उनके भाषणों का संग्रह लेक्चर्स फ्रॉम कोडरम्बो टू अल्मोड़ा का चयन किया जा सकता है। स्वामी जी के उन भाषणों का हिंदी अनुवाद हो चुका है और अब वे भारत में विवेकानंद पुस्तक में उपलब्ध हैं। नेताजी स्वयं एक गंभीर अध्येता थे। उन्होंने स्वामी विवेकानंद के विचारों से शक्ति एवं प्रेरणा प्राप्त की थी। इंडोनेशिया के स्वर्गीय राष्ट्रपति सुकर्णो अपने शयन से पूर्व स्वामी जी के शक्तिदायी विचारों का इंडोनेशियाई अनुवाद स्वरय विवेकानंद नियमित रूप से पढ़ा करते थे। महात्मा गांधी भी एक गंभीर स्वाध्यायी थे। गीता को तो अपनी माता कहते थे। उन्हें एक छोटी पुस्तक अनटू द लास्ट बड़ी प्रिय लगती थी। उसके लेखक रस्किन ने उसमें हर व्यक्ति, फिर वह वकील बैरिस्टर हो, अध्यापक आचार्य हो या मंत्री प्रशासनिक अधिकारी, सबको हाथ से काम करने की सलाह दी थी। इससे गांधी जी बड़े प्रभावित हुए। उससे उन्होंने श्रम की प्रतिष्ठा का मूल्यवान पाठ सीखा। हमारी अपनी भाषाओं में भरपूर जीवनोपयोगी साहित्य उपलब्ध है। श्रीमद् भगवद गीता, रामायण, श्री रामचरितमानस जैसे अमर ग्रंथों के अतिरिक्त प्रेमचंद, प्रसाद, निराला, मैथिली शरण गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भवानी प्रसाद मिश्र जैसे अनेक महान साहित्यकारों की कृतियां भी हमें ज्ञान संपन्न करती हैं। जीवन और जगत को देखने समझने के लिए वे हमारे अंतरचक्षु उन्मीलित करती हैं और हमारे समाज सापेक्ष जीवन जीने का मार्ग प्रशस्त करती हैं।
0: कार्यक्रम चिंतन में अभी आप सुन रहे थे श्री जगदीश तोमर का आलेख। वाचक थे राजेंद्र कुमार। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।

0: सदियों बाद पैदा होता है एक महापुरुष और हमें दिखा जाता है रोशनी की अनगिनत राहें। आइए हम सब चलें उस मार्ग पर जो दिखाया महात्मा गांधी ने।
1: यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ।

भारतीय भक्ति साहित्य में जहां एक ओर ब्रह्म के निर्गुण और सगुण स्वरूपों की व्याख्या मिलती है, वहां दूसरी ओर प्रभु के नाम की महिमा तथा यशोगान भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तुलसीदास ने प्रभु के नाम को उनके निर्गुण तथा सगुण दोनों रूपों से अधिक महिमामय तथा बड़ा बताया है। जो लोग सभी कामनाओं को त्याग कर श्री राम का नाम भजते हैं, उनका मन भक्ति रूपी सरोवर में मछली की भांति होता है, जिसे जल से अलग करने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। निर्गुण तथा सगुण ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान होता है। निर्गुण काठ में निहित अग्नि जो दिखती नहीं, सगुण उस अग्नि के समान है जिसे प्रत्यक्ष देखा जा सकता है, किंतु तत्वतः दोनों एक ही हैं। दोनों का ज्ञान प्राप्त करना समान रूप से कठिन होता है। प्रभु का नाम ऐसा सहारा है जिससे दोनों सरल और सुगम हो जाते हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि चर्चा। आज हम आपको सुनवा रहे हैं जानकारी ग्रीष्म ऋतु में सिंचाई प्रबंधन। जानकारी दे रहे हैं सोहन सिंह।
1: किसान भाइयों, गर्मियों के मौसम में तापमान बढ़ने के साथ ही वातावरण में नमी की कमी होने लगती है, तेज हवाएं और लू चलने लगती हैं। इन सभी क्रियाओं से खेत में सिंचाई द्वारा दिया गया पानी बाष्पीकरण और पादप सर्जन द्वारा नष्ट होने लगता है। फसलों में पानी की कमी महसूस होने लगती है। सिंचाई जल का महत्व देखते हुए सिंचाई के लिए जो नालियां बनाई जाएं, वह कम चौड़ी और गहरी बनाई जाएं। नालियां अगर पक्की बना दी जाएं तो और अच्छा रहता है, जिससे पानी का रिसाव नहीं हो पाता है। नालियां बनाते समय हल्का ढलान अवश्य रखें, जिससे नालियों में पानी न रुकने पाए और न ही रुक रुक कर बहे। नालियों में जो खरपतवार घास उगाते हैं, उनके द्वारा भी पानी का नुकसान होता है। समय समय पर खरपतवारों को हटाते रहें। फसल में पानी फसल की आयु और फसल की जल मांग के अनुसार सिंचाई करनी चाहिए। फसल में पौधे छोटे होने पर हल्की सिंचाई करें और जब पौधे बड़े हो जाएं तो अधिक पानी दें। कुछ फसल के पौधे जिन्हें सूखा सहन करने की क्षमता अधिक होती है, उनमें हल्का और अधिक अंतराल

0: के बाद सिंचाई करें। यदि पौधे दिन के समय मुरझाए हुए और उनकी पत्तियां नीचे की ओर झुकी हुई दिखाई दें, जब पौधों की स्थिति देखकर समझ लेना चाहिए कि भूमि में नमी की कमी है। भूमि के लक्षण देखकर, भूमि का फटना, मिट्टी का भुरवापन देखकर सिंचाई करें। प्रत्येक फसल पानी की कमी के प्रति अपने जीवन की कुछ अवस्थाओं में दूसरी अवस्थाओं की अपेक्षा अधिक संवेदनशील होती है। फसल में क्रांतिक अवस्थाओं पर अवश्य सिंचाई करें, जिससे फसल की पैदावार में बढ़ोतरी होती है। गर्मियों के मौसम में सिंचाई सामान्यतः एक सप्ताह के अंतराल पर करते हैं। फसल में पानी कितनी गहराई पर दें, सिंचाई की गहराई, भूमि की किस्म, भूमि में उपस्थित ढलान उगाई जाने वाली फसल पर निर्भर करता है। यदि सही विधि, सही समय और सही मात्रा में पानी देकर हम फसलों से काफ़ी लाभ कमा सकते हैं। सिंचाई कभी भी करें और कोई भी मौसम हो, सिंचाई हमेशा यह ध्यान रखकर करनी चाहिए कि पानी का अधिक से अधिक सदुपयोग हो और कम से कम दुरुपयोग। फसल में सिंचाई रात के समय या सुबह शाम के समय करनी चाहिए। इस समय धूप भी कम रहती है और हवा भी कम चलती है, जिससे पानी का वाष्पीकरण कम होता है। जहाँ पर भूमि ढलान वाली हो, वहाँ पर स्प्रिंकलर विधि अपनानी चाहिए, जिससे पानी की बचत होती है। जहाँ पर फलदार पौधे लगाए हों, वहाँ पर ड्रिप इरिगेशन का प्रयोग करना चाहिए, इससे भी पानी की काफ़ी बचत होती है। बॉर्डर विधि से फसल में सिंचाई करने पर प्रत्येक बॉर्डर में 75 से 80% तक पानी पहुँच जाने पर बॉर्डर बंद कर देना चाहिए। शेष भाग की उपस्थित बॉर्डर में पानी से ही सिंचाई की जा सकती है। पूरे खेत में पानी एक समान लगे, इसलिए सिंचाई आखिरी वाले बॉर्डर से शुरू करनी चाहिए। इस क्रम से सिंचाई करते ऊपर आते जाएं, जिससे पानी कहीं कम कहीं अधिक की समस्या नहीं आती है। गर्मी के मौसम में पानी के महत्व को देखते हुए फसल की सिंचाई करें और सावधानी रखें तो कम पानी में अधिक फसल की सिंचाई की जा सकती है और अधिक से अधिक फसलों से उत्पादन लिया जा सकता है।
1: कार्यक्रम कृषि चर्चा में अभी आप सुन रहे थे जानकारी ग्रीष्म ऋतु में सिंचाई प्रबंधन, जानकारी दे रहे थे सोहन सिंह। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है, प्रस्तुत है सूचना परक कार्यक्रम दर्पण। प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक की कुछ वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। इनमें मुख्य हैं थर्माकोल से बनी प्लेट, कप, ग्लास, कटलरी जैसे कांटे, चम्मच, चाकू, ट्रे, मिठाई के बक्से। इसके अलावा निमंत्रण कार्ड, सिगरेट पैकेट की फिल्म, प्लास्टिक के झंडे, गुब्बारे की छड़ें और आइसक्रीम पर लगने वाली प्लास्टिक की स्टिक, साथ ही 100 माइक्रोन से कम के बैनर शामिल हैं। इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, हमारी धरती को प्लास्टिक प्रदूषण से बचाएं।

सुनिए ये सूचना। स्टूडेंट्स के लिए इंटर्नशिप में जॉब ट्रेनिंग का ये अच्छा मौका है। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जो अच्छी इंटर्नशिप ढूंढ रहे हैं, वो डिजिटल इंडिया के नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन के टेक्निकल इंटर्नशिप में हिस्सा ले सकते हैं। कुल 50 सीट्स हैं, हर महीने स्टाइपेंड भी है। NEGD की ये समर इंटर्नशिप ख़ासतौर से स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइन की गई है। 6 महीने की इंटर्नशिप में स्टूडेंट्स नौकरी की असल दुनिया से तो रूबरू होंगे ही, साथ में उन्हें रियल प्रोजेक्ट पर अनुभवी सीनियर्स के साथ काम करने का मौका मिलेगा। इस इंटर्नशिप के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स या समकक्ष क्वालिफाइंग डिग्री में कम से कम 75% मार्क्स हों तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जिन्होंने 75% मार्क्स के साथ डिग्री हासिल की हो, केवल वे कैंडिडेट्स ही इस

0: इंटर्नशिप में अप्लाई कर सकेंगे जिन्होंने 2 साल 2025-2026 में डिग्री पूरी की हो। इसके अलावा 2027 में जिन छात्रों की डिग्री कंप्लीट होगी और वो भी फाइनल ईयर में है, वो भी आवेदन के पात्र होंगे। इस नई इंटर्नशिप में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पर प्रमुख रूप से फोकस किया जाएगा, जिसमें कैंडिडेट्स अपनी रुचि के मुताबिक अप्लाई कर सकेंगे। नेशनल ई गवर्नेंस डिवीज़न की इस टेक्निकल इंटर्नशिप के लिए आप नेशनल ई गवर्नेंस की वेबसाइट देख सकते हैं।
1: रक्तदान जीवन का उपहार है, आइए रक्तदान करें, जीवन दान करें। रक्तदान से किसी प्रकार की कमजोरी नहीं आती। 18 से 65 वर्ष तक उम्र और 45 किलो अथवा इससे अधिक वजन का कोई भी स्वस्थ व्यक्ति हर 3 माह में रक्तदान कर सकता है। रक्तदान एक पीड़ा रहित प्रक्रिया है, महिलाएं भी रक्तदान कर सकती हैं। रक्तदान किसी को जीवन और स्वयं को आत्मसंतोष प्रदान करता है। रक्तदान करने के लिए शासकीय अथवा रेड क्रॉस सोसाइटी के ब्लड बैंक में संपर्क करें।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700-001-4242।
2: ओ 8700-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700-001-4242 पर।

0: रास्ता।
1: सड़क पर पैदल चलते समय रखें हम कुछ बातों का ध्यान।
2: हमेशा सड़क के किनारे बनी पटरियों पर ही चलें।
1: सड़क पार करने के पूर्व दाएं और बाएं अवश्य देख लें।
2: तेज गति से आ रहे वाहन के सामने से निकलने की भूल ना करें।
3: दर्पण कार्यक्रम समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 6:55 हुए हैं।
4: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका निधि झा। अथ वार्ताः। केन्द्रीय मंत्रिमण्डलेन विमानन परिवहन मार्ग आधारभूत संरचना क्षेत्रेषु महत्वपूर्णाः योजनाः अनुमोदिताः। पश्चिम एशिया संकट कारणेन वर्धितेषु इंधनमूल्येषु भारतीय विमान सेवानां कृते विमान इंधनस्य अर्थात् ATF मूल्यस्य स्थिरीकरणार्थं तैल विपणन समवायेभ्यः सहस्रकोटि रूप्यकाणां आयव्यय सहायतां प्रदातुं प्रशासनं निर्णयं कृतवत्। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णवः अवोचत् यत् एतेन विमानन क्षेत्र संबद्धाः प्रायः 77,00,000 आजीविकाः सुरक्षिताः भविष्यन्ति। सहायता योजनेयं 36 मासपर्यन्तं प्रवर्तयिष्यते। मंत्रिमण्डलेन दिल्ली निकटवर्ती क्षेत्रे वायु प्रदूषण नियन्त्रणार्थमपि एकस्याः योजनायाः अनुमोदनं कृतम्। द्विवर्षीय योजनायां प्रायः 2,00,000 ट्रक यानानि 16,000 बस यानानि च प्रतिष्ठापयितुं लक्ष्यं निर्धारितम्। मंत्रिमण्डलीय समित्या ओडिशा राज्ये रामेश्वरात् पारादी पर्यन्तं 63,00,000 किलोमीटर परिमितस्य नूतन तटीय राजमार्ग निर्माणाय अनुमतिः प्रदत्ता। एतदतिरिच्य समित्या बिहार राज्ये राष्ट्रिय राजमार्गयोः 31 तथा 31,200 च इत्येतयोः खगड़िया पूर्णिया खण्डस्य चतुर्पथ परियोजना अपि अनुमोदिता। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां वेनेजुएला देशस्य राष्ट्रपतिना डेल्जी रोड्रिगेज इत्यनेन सह द्विपक्षीय वार्तां विधास्यति। अस्याम् उच्चस्तरीय चर्चायां भारत वेनेजुएला संबंधानां अशेषेषु पक्षेषु मंथनं भविष्यति। सहैव ऊर्जा सुरक्षा व्यापार निवेश स्वास्थ्य सेवा परिवहनं नवीकरणीय ऊर्जा इत्यादिषु क्षेत्रेषु भविष्ये सहयोगस्य नूतन मार्गाणां अन्वेषणं च भविष्यति। रोड्रिगेज वर्यः भारतदेशस्य 5-दिवसीय यात्रायां ह्यः नवदिल्लीं समागच्छत्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अवोचत् यत् कृत्स्ने ही विश्वे योगस्य लोकप्रियता तीव्रगत्या वर्धमाना वर्तते। एकस्मिन् सामाजिक अन्तर्जालीय पटले एकेन सन्देशेन प्रधानमन्त्रिणा संसूचितं यत् अद्य प्रथम वैश्विक योगासन प्रतियोगितायां सह आभासीय माध्यमेन सम्मिलितो भविष्यति। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहः अद्य सायंकाले त्रिपुरा राज्यस्य 2-दिवसीय यात्रायाम् अगरतला नगरं प्रति एष्यति। यात्रावधौ श्री शाहः पुष्पवंत पैलेस इत्यस्य शिलान्यास समारोहे भागं ग्रहीष्यति। लंकामुरा स्थिते सीमा सुरक्षा बलस्य निरीक्षणं च करिष्यति। सहैव राज्य केन्द्रीय सुरक्षा अधिकारिभिः सह एकं उच्चस्तरीय उपवेशनं करिष्यति। गृहमन्त्रिणः यात्रां वीक्ष्य त्रिपुरा प्रशासनेनापि एका उच्चस्तरीया प्राशासनिक सुरक्षा सीमा सभा आयोजिता। राष्ट्रिय राजधान्यां दिल्ल्यां मालवीय नगरस्य एकस्मिन् विश्रान्ति निलये भीषणाग्निकाण्डे 21 जनाः मृत्युमुपगताः, अनेके च जनाः व्रणिताः अभवन्। दक्षिणदिल्ल्यारक्षीविभागस्य उपायुक्तः अनन्त मित्तलः अवोचत् यत् अग्निशमनविभागस्य 8 वाहनैः सह अग्निः नियन्त्रितः। आरक्षिणाम् अग्निशमनस्य तथा अन्य आपत्कालिकसेवानां संयुक्तप्रयत्नैः 40 जनाः सुरक्षितरूपेण उद्धृताः, चिकित्सोपचारार्थं च चिकित्सालयेषु प्रेषिताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी घटनामुद्दिश्य गहनं दुःखं व्यक्तीकृतवान्। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः, उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन्, गृहमन्त्री अमितशाहः तथा दिल्लीराज्यस्य मुख्यमन्त्री रेखागुप्ता अपि अस्मिन् दुःखदे घटनाक्रमे शोकं प्रकटितवन्तः। सर्वैः नेतृभिः शोकसन्तप्तपरिवारान् प्रति गहनसंवेदना व्यक्तीकृता। इति वार्ताः।
0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेता ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, दवा उद्योग, स्वास्थ्य सेवा और नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज 5 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची थी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा, व्यापार और ग्लोबल साउथ के मुद्दों पर मजबूत सहयोग है। ये यात्रा दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने में सहायक होगी। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री येवेट कूपर भारत की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। उनका आज शाम विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी मिलने का कार्यक्रम है। गृहमंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में पर्यटन, कृषि और बागवानी, निवेश, खेल, बुनियादी ढांचा, संपर्क सुविधा तथा हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार किए गए नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार, पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उत्तर पूर्वी परिषद सदस्य और केंद्र तथा राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इसके बाद गृहमंत्री त्रिपुरा के 2 दिन के दौरे पर आज शाम अगरतला पहुंचेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पश्चिम बंगाल में विभिन्न रेल परियोजनाओं में

0: तेजी लाने के लिए शनिवार को कोलकाता पहुंचेंगे। पूर्वी रेलवे के अधिकारी शिवाजी माजी ने आकाशवाणी को बताया कि रेल मंत्री मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ नबन्ना में सभागार में उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमान ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2,00,000 ट्रक और 16,000 बस BS6 या इलेक्ट्रिक वाहन से बदली जाएंगी।
1: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है। और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
0: नई दिल्ली के मालवीय नगर में कल एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक शामिल हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और इमारत के मालिक लवकेश बजाज को हिरासत में ले लिया है। इस बीच दिल्ली सरकार ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही अवैध संपत्तियों, अनाधिकृत गेस्ट हाउसों और अग्नि सुरक्षा नियमों तथा भवन उपनियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ पूरे शहर में विशेष अभियान चलाने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिन तक चलने वाली इस बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरी दुनिया में योग अत्यंत लोकप्रिय हो रहा है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होने वाले प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप में आभासी माध्यम से शामिल होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस मंच ने दुनिया भर के योग प्रेमियों को जोड़ा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज पर और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन एयर पर आप हमें सुनते हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से कुछ ही देर बाद यानी 7:10 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। 7:20 पर हम आपको सुनवाएंगे सीता परमार का काव्य पाठ। 7:30 फिल्म संगीत सुना जा सकता है।

8 बजे समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज, ये दोनों ही समाचार बुलेटिन आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम अनुप्रसारित करेंगे। 8:30 प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। 9:00 सूचनाओं और समाचारों पर आधारित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर सुना जा सकता है।

9:30 बजे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे साधना गोरे का शास्त्रीय गायन। 10:05 बजे पर व्हाट्सएप फरमाइश कार्यक्रम सुना जा सकेगा, इसमें श्रोता अपनी पसंद के फिल्मी गीत सुनेंगे। इससे ठीक पहले 10 बजे जिले की चिट्ठी भोपाल से अनुप्रसारित की जाएगी और इसके ठीक बाद 11 बजे से सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से हम अनुप्रसारित करेंगे।

हमारी सायंकालीन सभा आरंभ होगी शाम 4 बजे विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स से। इसे हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाता है। 5 बजे से आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से सभा आरंभ होगी और सभा के आरंभ में ही आप सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी। आज यह कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति होगा। 6 बजे NCERT का शैक्षणिक कार्यक्रम होगा उमंग।

शाम 7:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चौपाल हमारे केंद्र से। इसमें चर्चा होगी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना पर, आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये चर्चा भी की जाएगी। इसके अलावा जल बचाएं जीवन बचाएं, इस पर होगी चर्चा। डॉक्टर राज सिंह कुशवाहा से की गई बातचीत आपको सुनवाई जाएगी, जिसका विषय होगा वर्मी कंपोस्ट से भूमि की उर्वरा शक्ति कैसे बढ़ाएं। रात 8 बजे से सभा की समाप्ति तक सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से हम अनुप्रसारित करेंगे। ये थे आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7:10 होने को हैं। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से हम अनुप्रसारित करेंगे।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज मेघालय प्रवास पर उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। प्रदेश में भी शीघ्र लागू होगी समान नागरिक संहिता, कहा मुख्यमंत्री ने। और प्रदेश के हर जिले में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए फीडर सेंटर स्थापित होंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। इस दौरान ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, औषधि, उद्योग, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। डेल्सी रोड्रिगेज 5 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा, व्यापार और वैश्विक दक्षिण के मुद्दों पर मजबूत सहयोग है। ये यात्रा दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने में सहायक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप में वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि योग दुनिया भर में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि इस प्रतियोगिता ने दुनिया भर के

0: योग प्रेमियों को एक मंच पर लाने का काम किया है। उन्होंने इसे योगासन के वैश्विक खेल विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया और आयोजनकर्ताओं तथा प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी। गृह मंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में पर्यटन, कृषि, बागवानी, निवेश, खेल, बुनियादी ढांचा, संपर्क सुविधा और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार किए जा रहे नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार, पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उत्तर पूर्वी परिषद सदस्य और केंद्र तथा राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि देश में एक निशान, एक विधान और एक कानून लागू हो, इस राष्ट्रीय भावना में कुछ भी गलत नहीं है। समान नागरिक संहिता को देश के 3 राज्यों ने पहले ही लागू कर दिया है। हमारी सरकार भी इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। शीघ्र ही मध्य प्रदेश भी देश का UCC लागू करने वाला राज्य बन जाएगा। इसके लिए हमने उच्चतम न्यायालय की रिटायर्ड जज न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित की है। ये समिति जिला स्तर पर सभी वर्गों से उनकी राय ले रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश के सभी जनजाति समुदाय को यूसीसी से पृथक रखा जाएगा। उन्हें अपने पारंपरिक रीति रिवाज मानने की स्वतंत्रता होगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव कल नई दिल्ली में आयोजित एक कॉन्क्लेव को संबोधित कर रहे थे। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। आकाशवाणी समाचार सरकार के पिछले 12 वर्षों के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम बात कर रहे हैं केंद्र सरकार की उन योजनाओं की जो देश के विकास में मील का पत्थर साबित हो रही हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है। सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता। वहीं GST ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाया है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। इस योजना के तहत स्वीकृत 1,25,00,000 घरों में से 98,00,000 से अधिक घर बनकर लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। वहीं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही है, जो बाजार से 50-80% सस्ती दरों पर उपलब्ध है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक लाभार्थियों को 40,00,000 रुपए के ऋण दिए जा चुके हैं। भारत के मध्यम वर्ग के लोगों की आय बढ़ने और नए अवसर मिलने के कारण अब वे देश की आर्थिक प्रगति, विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय मंत्रिपरिषद के आर्थिक मामलों की समिति ने मध्य प्रदेश में 4,415 करोड़ रुपए की लागत वाली 2 सड़क निर्माण परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार की इस महत्वपूर्ण सौगात से प्रदेश की जनजातीय बहुल जिले बैतूल, खंडवा, खरगोन और बड़वानी के समग्र विकास को तेज गति मिलेगी। साथ ही हजारों स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। इस परियोजना में खरगोन जिले में एक ग्रीनफील्ड बाईपास भी विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा,
2: राजमार्ग की जो सौगात मिली है, मैं उसके लिए उनका आभार भी मानता हूँ और बधाई देता हूँ। बैतूल, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, ये चारों जिले हमारे करीब करीब महाराष्ट्र से लगे हुए भी हैं और इनके माध्यम से पूरा प्रदेश का विकास का परिपथ बनता है। ऐसे में 4,415 करोड़ से लगभग 2 जो सड़कें की सौगात मिली, 2 परियोजनाएं, ये भविष्य की दृष्टि से एक अलग प्रकार से हमको आर्थिक रूप से इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने में मदद करेगी।
0: उधर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में नई पहल की है। वे अब राजधानी भोपाल में नियमित रूप से ईवी कार से ही यात्रा करेंगे। ये ईवी मुख्यमंत्री सुरक्षा से जुड़े सभी मानकों पर खरा उतरने, फीचर्स की विधि

विधिवत जांच और अन्य जरूरी प्रक्रियाओं का बारीकी से पालन करने के बाद मुख्यमंत्री के लघु कारकीट में कल से शामिल कर ली गई है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रदेश के कई जिलों में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत व्यापक पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने 5 जून से शुरू हो रहे विशेष जनकल्याण अभियान के तहत प्रदेश भर में वृहद पौधरोपण के निर्देश दिए हैं। खेल और युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा है कि प्रदेश के हर जिले में फीडर सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इनके माध्यम से खेल प्रतिभाओं की खोज और संवर्धन को नई गति मिलेगी। श्री सारंग कल भोपाल के टीटी नगर स्थित मेजर ध्यानचंद हॉल में टैलेंट सर्च अभियान की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों और खेल प्रशिक्षकों को इस संबंध में व्यापक दिशा निर्देश दिए। अब कुछ समाचार संक्षेप में। पश्चिमी विक्षोभ के चलते प्रदेश में प्री मानसून की गतिविधियां शुरू हो गई हैं। अगले 24 घंटों में भी 20 से अधिक जिलों में आंधी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार बिजली गिरने की भी आशंका है। शिवपुरी में कोलारस की ग्राम पंचायत गोरा टीला में रात्रि चौपाल लगाकर प्रशासन ने ग्रामीणों की समस्याओं का निराकरण किया। खंडवा में आज जिला विकास समन्वय निगरानी समिति की बैठक आयोजित की जाएगी। आगरमालवा में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर चलाए जा रहे स्वच्छ गांव मेरी जिम्मेदारी थीम के तहत मिशन लाइफ के अंतर्गत पेड़ पौधों की साफ सफाई संरक्षण संबंधी गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। मंदसौर जिले के आदर्श गांव बालागुड़ा में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। इस चौपाल में कलेक्टर अदिति गर्ग ने ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी। झाबुआ में कल विश्व क्लबफुट दिवस के अवसर पर जिला अस्पताल में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डिंडौरी में आगामी मानसून और संभावित बाढ़ की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आपदा प्रबंधन संबंधी तैयारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। गुना के कुंभराज क्षेत्र के ग्राम बड़ौद में कल कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल और पुलिस अधीक्षक हितिका वासल ने रात्रि चौपाल में ग्रामीणों से संवाद किया। भारतीय पहलवान आज से मंगोलिया में उलान बतार ओपन रैंकिंग सीरीज टूर्नामेंट में अभियान शुरू करेंगे। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। आइए अब सुनते हैं सीता परमार से उनका काव्य पाठ।
1: मेरी पहली कविता का शीर्षक है शाश्वत प्रेम। एक रोज पूरा का पूरा आसमान नापूंगी मैं, एक रोज पूरा का पूरा आसमान नापूंगी मैं, फैलाकर अपनी दोनों बाहें उसके एक सिरे से दूसरे छोर तक बित्ता भर भी नहीं छोड़ूंगी शेष। हथेली पर रख लूंगी सुर्ख लाल जलता सूरज, हथेली पर रख लूंगी सुर्ख लाल जलता सूरज, किसी दौड़ते भागते बच्चे की बड़ी गेंद की तरह थोड़ा मचलने दूंगी उसे भी जिद में, पर रहने दूंगी टिमटिमाते असंख्य तारों के बीच तुम्हारे लिए प्रेम के प्रतीक चांद को, क्योंकि जानती हूं मैं अंत में बस प्रेम ही बचता है जो रखता है जिंदा पृथ्वी और आकाश के बीच पलती सृष्टि को, क्योंकि जानती हूं मैं अंत में बस प्रेम ही बचता है जो रखता है जिंदा पृथ्वी और आकाश के बीच पलती सृष्टि को, जो रखता है जिंदा सब कुछ खत्म होने के बाद भी थोड़े से विश्वास को सालों साल तक, थोड़े से विश्वास को सालों साल तक। मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है प्रेम में पड़ी लड़कियां। जमीन से हो जाती हैं 2 फुट ऊपर प्रेम में पड़ी लड़कियां, जमीन से हो जाती हैं 2 फुट ऊपर।

0: मैं पड़ी लड़कियां इंद्रधनुषी सतरंगी रंग जैसे सीधे उतर आए हों आसमान से उनकी आंखों में, फिर बादलों से बूंदों की जगह बरसते हैं सपने, फिर बादलों से बूंदों की जगह बरसते हैं सपने, खूब सजती हैं समरती हैं सुर्ख चटकती कलियों सी खिलती हैं खुलते रंगों में। दिन में कई कई बार देखती हैं आईना, खुद में ही ल जाती हैं, भीड़ में भी तन्हा और तन्हाई में भी मुस्कुराती हैं खुद में ही ल जाती हैं, भीड़ में भी तन्हा और तन्हाई में भी मुस्कुराती हैं खुद में। मिलन अभिसार के सुखद पलों की कल्पना के जब फूटने लगते हैं उनके भीतर फुब्बारे, तब गहरी नींद में बुदबुदा उठती हैं अपने प्रेमी का नाम तक, अपने प्रेमी का नाम तक। पूर्णतः प्रेम की नारंगी चाशनी में पक सी जाती हैं, पूर्णतः प्रेम की नारंगी चाशनी में पक सी जाती हैं, प्रेम के रस में डूबी इमरती सी लड़कियां, प्रेम के रस में डूबी इमरती सी लड़कियां। पर कहाँ पड़ती हैं रखवारों के रोजमर्रा की प्यार में धोखे की काली स्याही में लिखी खबरें, पर कहाँ पड़ती हैं अखबारों में रोजमर्रा की प्यार में धोखे की काली स्याही में लिखी खबरें। वो कहाँ मानती हैं कि सतरंगी रंगों की तितलियां बहुत लुभाती हैं उद्दंड लड़कों को, वो कहाँ मानती हैं कि सतरंगी रंगों की तितलियां बहुत लुभाती हैं उद्दंडी लड़कों को। मेरी तीसरी कविता का शीर्षक है कभी कभी। कभी कभी रिक्त हो जाती हूँ मैं, कभी एकदम भारी। कभी कभी रिक्त हो जाती हूँ मैं, कभी एकदम भारी। दादी की भारी भरकम लोहे की संदूक की तरह, जिसमें तह कर रखे हों उसने लंबे जीवन के असंख्य अविस्मरणीय खट्टे मीठे अनुभव। दादी की भारी भरकम लोहे की संदूक की तरह, जिसमें तह कर रखे हों उसने लंबे जीवन के असंख्य अविस्मरणीय खट्टे मीठे अनुभव। रेशमी कपड़ों में लिपटा नाजुक सा बचपन, मिट्टी की गुल्लक में कैद जमा खुले पैसों में अनगिनत उपेक्षित इच्छाएं, सुर्ख लाल रंग की जरीदार साड़ी में अब तक दौड़ती चमेली के इत्र की महक के साथ शामिल है उनकी प्रीत की अटखेलियां, अपनप्त और स्नेह की गर्माहट लिए पुराने कुछ लिहाफ और ना जाने क्या क्या, अपनप्त और स्नेह की गर्माहट लिए पुराने कुछ लिहाफ और ना जाने क्या क्या, जो बढ़ाता है इस संदूक की तरह मेरे मन के भारीपन को, जो बढ़ाता है इस संदूक की तरह मेरे मन के भारीपन को। और रिक्त होने पर बिल्कुल हल्की, ठीक वैसे ही जैसे हवा के दबाव से भरे गुब्बारे में से पैनी पिन की चुवन से निकाल दी हो किसी ने उसके आत्मविश्वास की हवा, जैसे हवा के दबाव से भरे गुब्बारे में से पैनी पिन की चुबन से निकाल दी हो किसी ने उसके आत्मविश्वास की हवा, और खाली होते ही वो समर्पित हो गया हो बहती हवा के रुख पर, और खाली होते ही वह समर्पित हो गया हो बहती हवा के रुख पर। आसमान की बुलंदियों को छूने की लालसा लिए पतली सी डोर पर इतराती चमकीली रंगीन पतंग की काट दी हो डोरी ही, और वो प्रयत्न कर रही हो आसमान और धरती के बीच अपने अस्तित्व को तलाशने की, ठीक वैसे ही हल्की जैसे माह के अंतिम दिनों में पिता की जेब और माँ के घर गृहस्थी और रसोई के डिब्बे, ठीक वैसे ही जैसे माह के अंतिम दिनों में पिता की जेब और माँ की घर गृहस्थी और रसोई के डिब्बे। सच में मैं भी हो जाती हूँ कभी कभी उतनी ही भारी या उतनी ही हल्की, सच में मैं भी हो जाती हूँ कभी कभी उतनी ही भारी या इतनी ही हल्की। मेरी अगली कविता का शीर्षक है स्त्री मन। मन कुछ भरा भरा है उतना ही जितना कि आधा किलो के डिब्बे में दवा दवा कर भर दिया जाए उसके माप से अधिक राशन को। ना बनने पर बार बार उसे जमीन पर ठोक ठोक कर सामान को समानांतर करके उसमें बनाई जाए थोड़ी और जगह। छक भरे मन के ऊपर जन्म से ही कसकर चढ़ा दिया है स्त्री की मर्यादाओं रूपी सीमांकन के खांचे वाली धातु का ढक्कन, जो संस्कारों के खांचों के साथ मिलाकर चूड़ी पर चूड़ी चढ़ाकर कस दिया गया है उसकी अबोध अवस्था से, जैसे दाल चावल या शक्कर के डिब्बों को कर दिया जाता है पूरी तरह कसकर बंद। बिल्कुल वैसे ही मन ठसा ठस भरा है आजकल, उसमें से उतना ही सामान निकाला जाता है जितना है उपयोगी। कई बार दम घुटता है, इस अवस्था में होती हैं कई कई बार अवरुद्ध सांसें तक, पर हर बार उसके खुलने की कोशिशों में तनिक सा और भर दिया जाता है, पर हर बार उसके खुलने की कोशिशों में तनिक सा और भर दिया जाता है, समार कर समझा कर और कस दिया जाता है हर बार उस धातु की विशेषता के पारंपरिक रूप को करके इंगित, उस धातु की विशेषता के पारंपरिक रूप को करके इंगित। सचमुच स्त्री मन है, सचमुच स्त्री मन है, या फिर किसी पकी हुई धातु का डिब्बा, सचमुच स्त्री मन है या फिर पकी हुई किसी धातु का डिब्बा। मेरी अगली कविता का शीर्षक है रेत पर बनी आकृतियां। जानती हूं कि रेत पर उकेरी हुई आकृतियां नहीं ठहरा करती कवि समय रूपी लहर पर, जानती हूं कि रेत पर उकेरी हुई आकृतियां नहीं ठहरा करती कवि समय रूपी रेत पर, बस एक बेग एक लहर और हो जाता है सब कुछ विलीन उसमें, सिर्फ छूटती है तो बस नमी असंख्य कणों के ढेर में होकर भी अपने में तन्हा सी पड़ी रेत। हाँ हाँ जानती हूँ सब, फिर भी कैसी पागल हूँ रेत पर फिर चांद की तस्वीर उतार बैठी, रेत पर फिर चांद उतार बैठी।
1: अभी आप सुन रहे थे सीता परमार से उनकी कविताएं, आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। श्रोता साथियों, आज का कार्यक्रम लेकर हाजिर है आपकी दोस्त तुलिका, और आज 4 जून आज है गायक कलाकार SP बालसुब्रमण्यम की याद का दिन, आज उनका जन्मदिन है। आइए उनके गाए गीतों से उनका जन्मदिन मनाते हैं। सबसे पहले SP बालसुब्रमण्यम को सुनते हैं आशा भोसले के साथ, गीत आनंद बख्शी का, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, और फिल्म का नाम अंधा कानून।

लता मंगेशकर और एसपी बालसुब्रमण्यम को आइए सुनते हैं, फिल्म है पत्थर के फूल, गीत देव कोहली का, संगीत राम लक्ष्मण का है।

0: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
1: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
2: बन गया बजट?
1: हाँ, 5,000 बच गए।
2: तो नई साड़ी ले ले।
1: ना, पिछले महीने तो ली थी।
2: एक और
1: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
2: बढ़िया,
1: जाओ भाई।
3: RBI कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

एस पी बालसुब्रमण्यम और अलका याग्निक की आवाज़ में आइए सुनते हैं समीर की लिखी ये गीत रचना। संगीत नदीम श्रवण का है और फिल्म का नाम साजन।

और आइए कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं एसपी बालासुब्रमण्यम के साथ चित्रा को। गीत समीर का, संगीत आनंद मिलन का और फिल्म का नाम जागृति।

0: जो दिल में थी वो
1: उसके पैसे दो हस्बैंड जी।
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका और भारत बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से कुछ सप्ताह दूर। मौसम विभाग ने आज केरलम और माहे में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज से अहमदाबाद में शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल होंगे। भारत ने भूटान को 1-0 से हराकर सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। इस दौरान ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, औषधि उद्योग, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। डेल्सी रोड्रिगेज 5 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची। हमारी संवाददाता की ये रिपोर्ट।
5: राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है। वह इससे पहले 2015 में विदेश मंत्री और 2019, 2023, 2024 तथा 2025 में उपराष्ट्रपति के रूप में भारत का दौरा कर चुकी हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल भारत के ऊर्जा, औषधि और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी कई प्रतिष्ठानों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं को समझना तथा सहयोग की नई संभावनाओं की तलाश करना है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा, व्यापार और वैश्विक दक्षिण के प्रति साझा प्रतिबद्धता पर आधारित सौहार्दपूर्ण संबंध है। मंत्रालय के अनुसार इस यात्रा से दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध और अधिक मजबूत होंगे तथा विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को नई गति मिलेगी। अनुपम मिश्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष।

0: इशिका शॉ।
1: ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री येवेट कूपर दो दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉक्टर की बैठक करेंगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनकी ये यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। गृहमंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी।
0: बैठक में पर्यटन, कृषि और बागवानी, निवेश, खेल, बुनियादी ढांचा, संपर्क सुविधा और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार किए जा रहे नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार, पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उत्तर पूर्वी परिषद सदस्य और केंद्र तथा राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे। अनुमेदिता और ऋषो की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। दो दिनों तक चलने वाली इस बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस सम्मेलन के दौरान काशी के विश्व प्रसिद्ध GI टैग प्राप्त और ODOP यानी एक जिला एक उत्पाद की एक विशेष प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। प्रदर्शनी में 6 कारीगर, वाराणसी की समृद्ध शिल्प परंपराओं का प्रतिनिधित्व करने वाले 6 अनूठे उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। ये उत्पाद काशी की सदियों पुरानी कला, शिल्प कौशल और सांस्कृतिक विरासत के जीवंत प्रतीक हैं। प्रदर्शनी के माध्यम से विदेशी प्रतिनिधियों को न केवल इन उत्पादों की विशिष्टता से कराया जाएगा बल्कि स्थानीय कलाकारों और कारीगरों को भी वैश्विक बाजार में अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार सरकार के पिछले 12 वर्षों के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम कारोबार करने में सुगमता यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर चर्चा करेंगे।
3: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ कारोबार को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इन सुधारों से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और भारत दुनिया में प्रतिस्पर्धी व्यापारिक केंद्र के रूप में मजबूत हुआ है। 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार, उद्यमिता और निवेश आधारित विकास को बढ़ावा दे रही है। सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या 2016 में लगभग 500 से बढ़कर इस साल मार्च तक 2,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सकें। इसके अलावा 2017 में GST लागू किया गया जिसे अलग अलग कर व्यवस्थाओं की जगह एक सरल कर प्रणाली लागू हुई जिससे कारोबार करना आसान हो गया। महाराष्ट्र के ठाणे के चार्टर्ड अकाउंटेंट मनोज बासेर ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में किए गए सुधारों से अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिली है।
4: केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष करके ऊपर किए गए रिफॉर्म्स देश की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा स्टेप है स्टेबिलिटी के लिए। अप्रत्यक्ष करके रिफॉर्म से वन नेशन वन टैक्स का एडवांटेज काफी क्लियरिटी देता है कि हमें बिजनेस कैसे करना है। लोगों को टैक्स के बारे में पूरा नॉलेज और क्लियरिटी आती है। इससे एक देश की इमेज भी बहुत अच्छी हुई है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हुई है।
3: वहीं सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल, सरल और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस जेम की शुरुआत की गई। जेम पर अब तक कुल 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हो चुका है। जेम से जुड़ी एक विक्रेता कामिनी गुप्ता ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जेम की प्रक्रिया काफी सरल और पारदर्शी है और सरकारी खरीदारों तक पहुँच प्रदान करता है।
5: ये डिजिटल खरीद मंच है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और इनकी जो टेक्निकल टीम है और जो भी हमारे लोग जुड़े हैं जेम से, ये एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम करते हैं, इनका सहयोग मिलता रहता है। एमएसएमई स्टार्टअप महिला उद्यमियों और निर्माताओं को सीधे सरकारी खरीदारों तक पहुंच प्रदान करता है।
3: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए

0: केंद्र सरकार ने उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल पर पंजीकरण की संख्या अक्टूबर 2020 में 10,000 थी, जो बढ़कर अब 8,31,000 से अधिक हो गई है। भारत में कारोबार के लिए बेहतर माहौल, मजबूत डिजिटल व्यवस्था और पारदर्शी शासन से व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिल रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इसका मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिताओं में योग को शामिल करना है।
2: इस 5 दिवसीय वैश्विक प्रतियोगिता में अमेरिका सहित 60 देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी 12 विभिन्न स्पर्धाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। वर्ल्ड योगासन के तत्वाधान में योगासन भारत द्वारा आयोजित इस ऐतिहासिक आयोजन का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिता में योग को शामिल करने का मार्ग प्रशस्त करना है। यह पहल वैश्विक स्तर पर योग और कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ साथ योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में बढ़ावा देने का एक प्रयास है। इस चैंपियनशिप के दौरान खिलाड़ी कला और लयबद्ध योग डिवीजनों के साथ साथ 7 आधिकारिक योग श्रेणियों में हिस्सा लेंगे। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: बिहार के मुजफ्फरपुर में एक निजी अस्पताल में भीषण आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए। ये घटना ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में कल रात हुई। घटना की जाँच जारी है। इधर नई दिल्ली के मालवीय नगर में कल एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक शामिल हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और इमारत के मालिक लवकेश बजाज को हिरासत में लिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि भारत और अमेरिका लंबे समय से प्रस्तावित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से बेहद करीब हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच ये समझौता अगले कुछ सप्ताह में पूरा हो सकता है। रूबियो ने कहा कि हाल ही में भारत यात्रा के दौरान क्वाड देशों के प्रतिनिधियों के साथ इस संबंध में चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि क्वाड देश अब केवल बातचीत तक सीमित नहीं है, बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग सहित कई ठोस परियोजनाओं पर मिलकर काम कर रहे हैं।
3: सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं, वे हाल ही में दुनिया भर में हुई घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। क्वाड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। क्वाड तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्रवाई कर सकते हैं।
1: भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। गोवा के मडगांव में कल भारतीय महिला फुटबॉल टीम 6 साल बाद सैफ महिला चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची। 5 बार के विजेता भारत का फाइनल में शनिवार को मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश से सामना होगा। मौसम विभाग ने आज केरलम और माहे में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, कर्नाटक, कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और उत्तराखंड में भी बारिश की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है, जबकि पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी की आशंका है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
4: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित मुख्य समाचार पत्रों ने आज मालवीय नगर के होटल में लगी भीषण आग की खबर को सचित्र प्रकाशित किया है। जनसत्ता लिखता है, दिल्ली में भयावह अग्निकांड। दैनिक जागरण के शब्द हैं, अवैध होटल में 21 की मौत, 11 विदेशियों सहित 21 जिंदा जले। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, घटना के बाद अग्नि सुरक्षा संबंधी व्यापक अभियान चलाने पर सख्ती। शीर्षक से हिंदुस्तान ने लिखा है, नियम तोड़ने वाले प्रतिष्ठान सील होंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए अनुग्रह राशि देने की खबर भी अधिकतम समाचार पत्रों में है। अमर उजाला ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के 2 गुटों में बंटने की खबर को शीर्षक दिया है। तृणमूल में टूट, 58 बागी विधायकों ने ऋत व्रत को चुना नेता, मिली मान्यता। इसी खबर पर राजस्थान पत्रिका की टिप्पणी है, टूट गई टीएमसी, 58 विधायकों ने स्पीकर को सौंपा समर्थन पत्र। अमेरिका द्वारा भारत सहित 50 से अधिक देशों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने के प्रस्ताव पर नवभारत टाइम्स ने बॉक्स में लिखा है, अमेरिका ट्रेड डील पर बातचीत के बीच 12.5% की एक्स्ट्रा ड्यूटी का पेच, अमर उजाला ने छापा है। ट्रंप प्रशासन का आरोप, इन देशों ने बंधुआ मजदूरी रोकने के लिए नहीं उठाए कदम, इसलिए लगाया जा रहा है शुल्क, भारत ने जताई कड़ी आपत्ति। वैश्विक तापमान में हो रही वृद्धि पर अमर उजाला ने संपादकीय लेख में संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट के हवाले से चिंता व्यक्त करते हुए टिप्पणी की है, जून से अगस्त 2026 के बीच अल नीनो सक्रिय होने की 80% और नवंबर तक बने रहने की आशंका है। मेघालय के चेरापूंजी में 7 सिस्टर्स और किनरेम वाटरफॉल में लगातार हो रही बारिश की मनमोहक तस्वीर दैनिक भास्कर में है। पौष्टिक आहार के फायदों की याद दिलाते हुए लोकसत्ता ने टिप्पणी की है, याददाश्त बढ़ाने में सहायक पौष्टिक आहार।
1: धन्यवाद सर फिरोजी। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज शिलोंग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका और भारत बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से कुछ सप्ताह दूर। भारत ने भूटान को 1-0 से हराकर सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार पत्र प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू होल्ड टॉक्स विद एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला डेल्सी रोड्रिगेज इन न्यू दिल्ली टुडे। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह टू चेयर 73rd प्लीनरी सेशन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल इन शिलोंग। U.S. Secretary of State Marco Rubio says United States and India are only weeks away from concluding a long-awaited trade agreement. IMD issues orange alert for heavy rain in Keralam and Mahe today. First World Yogasan Sports Championship to begin today in Ahmedabad. Prime Minister Narendra Modi to join the event virtually in the evening. And in football, India advanced to the final of SAF Women's Championship, beating Bhutan 1-0 in Goa. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with the acting president of Venezuela, Delcy Rodriguez, in New Delhi today. Ms. Rodriguez arrived yesterday on a 5-day visit to India. She is accompanied by a delegation comprising the ministers of Foreign Affairs, Economy and Finance, Science and Technology, Communication and Information and Transportation. Ms. Rodriguez had visited India in her earlier capacity as Foreign Minister in 2015 and as Vice President in 2019, 2023, 2024 and 2025. More from our correspondent.
6: The discussions will involve the full spectrum of India-Venezuela relations and explore avenues for further cooperation in areas of energy security, trade and investment, pharmaceuticals, healthcare, transportation and renewable energy. The Venezuelan delegation will also visit several sites connected with energy, pharmaceuticals and auto sectors to gain insights into India's technological and industrial capabilities and to explore opportunities for collaboration. India has been an important partner of Venezuela in the areas of energy and investment. Indian PSUs have made significant investment in Venezuela in the energy sector and they are keen to explore opportunities for further enhancing their presence. According to the Ministry of External Affairs, India and Venezuela enjoy warm and friendly relations underpinned by cooperation in the energy sector, trade and shared commitment to the Global South. It said that the visit is expected to further strengthen

0: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि राजकुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था। इसका सही जवाब है 23 अगस्त। और सही जवाब भेजने वाले हमारे दो भाग्यशाली श्रोता हैं, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से महेश पाल और जबलपुर से मनीषा साखरदांडे। आप दोनों ही श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूरवीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

श्रम मिट्टी में छिपे उस बीज की तरह है जो स्वयं को गलाकर दुनिया को हरियाली दे जाता है, और श्रमिक उस बरगद की तरह जो अपने हिस्से में तपती धूप रखता है और दुनिया को छांव बांटता है। किसी भी राष्ट्र की असली शक्ति इन मेहनतकश हाथों में ही होती है जो अपने पसीने से उसके सपनों को आकार देते हैं। और जब इन्हीं हाथों को उनका अधिकार दिलवाने के लिए कोई आवाज उठती है तो इतिहास उसे एक व्यक्ति नहीं, एक आंदोलन की तरह याद रखता है। भारत के श्रमिक आंदोलन को नई चेतना देने वाले एक ऐसे ही महान व्यक्तित्व थे नारायण मल्हार जोशी, जिनके लिए मजदूरों की पीड़ा उनकी अपनी संवेदना बनी और उन्होंने श्रम को सम्मान दिलवाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। नारायण मल्हार जोशी का जन्म 5 जून सन 1879 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के पास स्थित गोरे गांव में हुआ था। ये समय भारत के लिए परिवर्तन की आहटों का समय था। देश गुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ था और समाज अनेक असमानताओं के बोझ से दबा हुआ था। ऐसे समय में नारायण मल्हार जोशी का जीवन आकार ले रहा था। उनकी आरंभिक शिक्षा पुणे में हुई, जो उस समय राष्ट्रवादी चेतना का प्रमुख केंद्र था। सन 1901 में उन्होंने डेक्कन कॉलेज पुणे से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने अहमदनगर, मुंबई और पुणे के विभिन्न विद्यालयों में अध्यापन का कार्य आरंभ किया। इस दौरान वो तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन को ध्यान से देख और समझ रहे थे। उनके जीवन में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब वो राष्ट्रवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले के संपर्क में आए। गोखले जी की विचारधारा ने उन्हें बहुत गहराई से प्रभावित किया और सन 1909 में वो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सक्रिय सदस्य बन गए। यहाँ उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि उनका जीवन देश और समाज की सेवा हेतु समर्पित होगा। मुंबई के कपड़ा मिल और औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों की दशा देखकर वो विचलित हो गए। बड़ौदा के महाराजा श्रीमंत सयाजी राव गायकवाड़ और कुछ अन्य लोगों के वित्तीय और नैतिक सहयोग से उन्होंने सन 1911 में सोशल सर्विस लीग की स्थापना की, जिसके माध्यम से मजदूरों के लिए रात्रिकालीन विद्यालय खोले गए, पुस्तकालय बनाए गए, चिकित्सा शिविर लगाए गए तथा सहकारी समितियों का निर्माण हुआ। वो समझ गए थे कि केवल आजादी नहीं बल्कि भारत भूमि के उत्थान के लिए समाज के प्रत्येक वर्ग के लोगों का उत्थान आवश्यक है।

समय की नदी आगे बढ़ रही थी और भारत के सामाजिक जीवन में भी अनेक परिवर्तन जन्म ले रहे थे। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था और देश के औद्योगिक क्षेत्र में मजदूरों का असंतोष चरम पर था। नारायण मल्हार जोशी ये जान चुके थे कि जब तक देश के मजदूर संगठित नहीं होंगे, तब तक वो मिल मालिकों और ब्रिटिश सरकार से अपने अधिकार नहीं मांग सकते। इसी सोच के साथ 31 अक्टूबर 1920 को मुंबई में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का ऐतिहासिक प्रथम अधिवेशन हुआ। नारायण मल्हार जोशी इसके मुख्य शिल्पकार थे। उन्होंने लाला लाजपत राय और जोसेफ बैप्टिस्टा के साथ मिलकर इस संगठन की नींव रखी। लाला जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे और नारायण मल्हार जोशी इस संगठन के प्रथम महासचिव चुने गए और उन्होंने सन 1929 तक इस पद पर रहकर भारतीय श्रमिक आंदोलन को दिशा दी। उस दिन केवल एक संस्था का निर्माण नहीं हुआ था, बल्कि बिखरी हुई आशाओं को एक धड़कन मिली थी। मजदूरों के हितों को कानूनी जामा पहनाने के लिए विधायी शक्ति की आवश्यकता थी। इसे देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने सन 1921 में नारायण मल्हार जोशी को केंद्रीय विधानसभा का सदस्य मनोनीत किया। वो सन 1921 से 1947 तक लगभग 26 वर्ष लगातार इस सदन के सदस्य रहे। सदन के भीतर वो श्रमिकों की निर्भीक आवाज बनकर गूंजते रहे। नारायण मल्हार जोशी ने मजदूरों की आवाज को केवल भारत तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने श्रमिकों की आवाज को वैश्विक मंच तक पहुंचाया। सन 1922 में जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का सम्मेलन आयोजित हुआ। नारायण मल्हार जोशी इस सम्मेलन में भारतीय श्रमिकों के आधिकारिक प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुए। इसके बाद वो कई बार अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय के सदस्य चुने गए, जिससे भारतीय श्रमिक आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली। भारत की सीमाओं से निकलकर मजदूरों की आवाज अब वैश्विक मंच तक पहुंच रही थी। केंद्रीय विधानसभा में रहते हुए नारायण मल्हार जोशी ने कई ऐतिहासिक कानून पारित करवाए, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण था भारतीय ट्रेड यूनियन अधिनियम 2026। इस कानून से पहले श्रमिकों के द्वारा संगठन बनाया जाना या अपनी मांगों के लिए हड़ताल करना एक अपराध माना जाता था, लेकिन नारायण मल्हार जोशी के अथक प्रयासों ने श्रम संघों को वो कानूनी मान्यता और सुरक्षा दी जिसने भारतीय श्रम इतिहास का भूगोल बदल दिया। इससे पहले सन 1923 में मजदूर मुआवजा अधिनियम को भी पारित करवाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। परिणाम स्वरूप कार्यस्थल पर दुर्घटना होने पर मजदूरों को मुआवजे का अधिकार प्राप्त हुआ। उनके प्रयास अद्भुत थे, जैसे किसी ने वर्षों से बंद दरवाजों को खोल दिया हो। सबके हिस्से की रोशनी सब तक पहुंच सके, इसी दृढ़ संकल्प के साथ वो लगातार आगे बढ़ते रहे।

समय का चक्र निरंतर घूमता रहा और नारायण मल्हार जोशी की यात्रा नए पड़ावों से होकर गुजरती रही। भारतीय कारखानों, चाय बागानों और कोयला खदानों में काम करने वाले मजदूरों की वास्तविक स्थिति की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने रॉयल कमीशन ऑन लेबर का गठन किया। नारायण मल्हार जोशी को इस उच्च स्तरीय आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया। उन्होंने पूरे भारत का व्यापक दौरा किया और एक ऐतिहासिक रिपोर्ट तैयार करने में मदद की, जिसने आगे चलकर भारत में न्यूनतम मजदूरी और काम के घंटे तय करने की नींव रखी। 1920 के दशक के आखिरी सालों में भारतीय श्रमिक आंदोलन एक नए मोड़ पर खड़ा था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के भीतर एक नई विचारधारा का प्रभाव तेजी से बढ़ने लगा। ये लोग राजनीतिक उद्देश्यों के लिए हड़ताल का समर्थन किया करते थे, जबकि नारायण मल्हार जोशी का मानना था कि श्रमिक संगठनों का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक दांवपेच के बजाय शुद्ध रूप से मजदूरों का सामाजिक और

कल्याण होना चाहिए। वैचारिक मतभेदों की ये आंधी जब तेज हुई तो वर्ष 1929 के नागपुर अधिवेशन में उन्होंने भारत के भावी राष्ट्रपति वीवी गिरी और दीवान चमनलाल जैसे मनीषियों के साथ मिलकर एक अत्यंत साहसिक निर्णय लिया। उन्होंने AITUC से अलग होकर 1930 में इंडियन ट्रेड्स यूनियन फेडरेशन की स्थापना की। उनका लक्ष्य सदैव स्पष्ट था। यही कारण है कि जब मजदूरों की एकजुटता का सवाल आया तो वो अड़े नहीं रहे, बल्कि लचीलापन अपनाते हुए सन 1940 में वो पुनः AITUC में शामिल हुए और इसके महासचिव के रूप में वो फिर से सक्रिय हो गए। कुल मिलाकर अपनी राह पर वो दृढ़ संकल्प के साथ चलते रहे। अपने सिद्धांतों से उन्होंने कभी भी समझौता नहीं किया। राजनीति धारा में वो हमेशा निष्पक्ष रहे और जब कभी मजदूरों के हित की बात आई, उनके कल्याण की बात आई, उन्होंने सब कुछ छोड़कर श्रमिक कल्याण का पक्ष लिया। भारत के भावी संवैधानिक सुधारों पर चर्चा के लिए जब लंदन में प्रथम और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ तो नारायण मल्हार जोशी ने इसमें भारतीय श्रमिक वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हुए भाग लिया। यहां उन्होंने महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ मिलकर वंचित वर्गों के अधिकारों पर गहन विमर्श किया। नारायण मल्हार जोशी ने यहां इस बात की वकालत की कि स्वतंत्र भारत के नए संविधान में प्रत्येक नागरिक को वयस्क मताधिकार मिलना चाहिए तथा श्रमिकों के अधिकारों को मौलिक अधिकारों का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। देश की आजादी के बाद देश के नए औद्योगिक और श्रम कानूनों के निर्माण में वो सरकार के सबसे वरिष्ठ मार्गदर्शक और सलाहकार बने। आजीवन देश और समाज की सेवा करते हुए 30 मई सन 1955 को उन्होंने अंतिम सांस ली। नमन ऐसी महान विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा सवाल है कि नारायण मल्हार जोशी का जन्म कब हुआ था। सवाल एक बार फिर सुन ले, नारायण मल्हार जोशी का जन्म कब हुआ था। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

अभी आप सुन रहे थे स्वराज संस्थान संचालनालय भोपाल का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।

0: हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप में वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में योगासन को वैश्विक खेल विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। गृह मंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में पर्यटन, कृषि, बागवानी, निवेश, खेल, बुनियादी ढांचा, संपर्क सुविधा और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि समान नागरिक संहिता को देश के 3 राज्यों ने पहले ही लागू कर दिया है। हमारी सरकार भी इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। इसके लिए हमने उच्च स्तरीय समिति गठित कर दी है। ये समिति जिला स्तर पर सभी वर्गों से उनकी राय ले रही है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के आर्थिक मामलों की समिति ने मध्य प्रदेश में 4,415 करोड़ रुपए की लागत वाली 2 सड़क निर्माण परियोजनाओं को मंजूरी दी है। केंद्र सरकार की इस महत्वपूर्ण सौगात से प्रदेश की जनजातीय बहुल जिले बैतूल, खंडवा, खरगोन और बड़वानी के समग्र विकास को तेज गति मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अब भोपाल में ईवी कार से ही यात्रा करेंगे। ये ईवी मुख्यमंत्री सुरक्षा से जुड़े सभी मानकों पर खरा उतरने के बाद मुख्यमंत्री के लघु कार किट में कल से शामिल कर ली गई है। और पश्चिमी विक्षोभ के चलते प्रदेश में प्री मानसून की गतिविधियां जारी हैं। अगले 24 घंटों में भी 20 से अधिक जिलों में आंधी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले गिरने की संभावना भी है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।
1: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब प्रस्तुत है सूचनाओं और समाचारों पर केंद्रित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर।
2: गुड मॉर्निंग ग्वालियर।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को तूलिका का नमस्कार। श्रोता साथियों, कहीं मैंने एक बात पढ़ी, मुझे बहुत अच्छी लगी, और जो चीज़ अच्छी लगती है आपको तो पता है कि मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। दरअसल ये जो बात है वो हमारी गलतियों से संबंधित है, और वो बात थी कि गलती यदि एक बार से ज़्यादा रिपीट हो तो वो आपका डिसीज़न है, आपका फ़ैसला है। दो बार से ज़्यादा रिपीट हो तो वो आपकी आदत है, और यदि कोई गलती आप बार बार रिपीट करते हैं तो वो आपका चरित्र है। दरअसल हम मनुष्य हैं, गलतियां हमसे होती हैं। कहते हैं ना कि मनुष्य गलतियों का पुतला होता है, पर जो गलती बार बार होती है वो गलती नहीं रह जाती है, वो ये दिखाती है कि आप कौन हैं, आपका चरित्र क्या है, आपकी पर्सनालिटी क्या है। इसीलिए हमें ये कोशिश करती रहनी चाहिए कि हम गलतियां कम से कम करें, और हर गलती के बाद सीखें कि वो गलती दोबारा नहीं होगी। दरअसल गलतियां जो हम करते हैं ना, वो उसका संबंध हमारे मनोविज्ञान से है, हमारी साइकोलॉजी से है। ये एक साइकिल है जो हमारी आदतों से रिलेट होता है, और इसके पीछे के मुख्य कारण जो हैं वो हैं हमारे अंदर जागरूकता की कमी, मतलब जो हम सेल्फ को महसूस करते हैं उसकी कमी, और दूसरा कारण ये है कि जो हम गलती कर गए हमें पता ही नहीं है कि हमने गलती की, हमने उसका विश्लेषण नहीं किया, जाने दिया उसको ऐसे ही। और जो पुरानी आदतें हमारी हैं, जो कंफर्ट जोन है हमारा गलतियां करने का, वो अब आप कहेंगे गलतियां करने का भी कंफर्ट जोन होता है क्या? बिल्कुल होता है। अब जैसे खाना खा करके प्लेट को वहीं छोड़ देना, या पानी पी करके ग्लास को वहीं छोड़ देना, ये गलती है। आप भले ना माने लेकिन होना ये चाहिए कि ग्लास और प्लेट अपनी आप जा करके किचन के सिंक में रखें, लेकिन अब आपकी आदत नहीं है, या गीला टॉवल आपने बिस्तर पर छोड़ दिया, आपकी आदत नहीं है, ये गलती है, लेकिन आपकी आदत यही बनी हुई है। आपका कंफर्ट जोन है कि आपने आपको टॉवल उठा करके और बालकनी तक या छत तक नहीं जाना उसे फैलाने के लिए, और कोई ना कोई तो फैला ही देगा, लेकिन जो फैला रहा है वो कितना इरिटेट होगा आपकी इस गलती से। तो इस दोहराव से बचने के लिए कुछ तरीके हैं जो हमें करने चाहिए। पहले तो जो गलतियां हमसे हो रही हैं, अक्सर हम उसे नोटिस नहीं करते, उन्हें नोटिस करना शुरू कीजिए। अपने आसपास के लोगों को बोल दीजिए कि यदि हमसे कोई गलती हो तो हमें इंडिकेट करें, और यदि कोई इंडिकेट करता है तो आप ऑफेंड मत होइए, आप उसको बुरा न मानिए, और अपनी गलतियों का खुद ही एनालिसिस कीजिए, विश्लेषण कीजिए, और उसका कारण समझने की कोशिश कीजिए कि ये गलती आपसे हुई क्यों। मान लीजिए आप किसी वाहन से कहीं जा रहे हैं और आपको लेफ़्ट मुड़ना है, आप लेफ़्ट का इंडिकेटर देना भूल गए, अचानक से आप मुड़ गए, ये गलती है और थोड़ी सी गंभीर गलती है। आपने इंडिकेटर क्यों नहीं दिया, इस बात को यदि आप अपने अंदर विश्लेषित नहीं करेंगे तो अगली बार फिर वही गलती करेंगे। ये भी हो सकता है कि आप अपनी धुन में हों, कुछ और सोच रहे हों और गाड़ी ड्राइव कर रहे हों, अचानक आपको लगा कि अरे हमें तो यहाँ मुड़ना है, और आप वहाँ मुड़ गए, आपने ना इंडिकेटर दिया और ना किसी तरह का और संकेत किया, आप मुड़ गए। आपकी वजह से आपका भी एक्सीडेंट हो सकता था, आपके पीछे आने वाले जो व्यक्ति हैं उनका भी एक्सीडेंट हो सकता था। आप इस गलती को विश्लेषित कीजिए, एनालिसिस इसका कीजिए, और सोचिए कि अगली बार जब हम गाड़ी ड्राइव करेंगे तो अपने दिमाग को कॉन्सेंट्रेट रखेंगे ड्राइविंग पर और सड़क पर, सड़क के नियमों को ध्यान में रखते हुए। ये नहीं कि हम ड्राइव तो गाड़ी कर रहे हैं और सोच कुछ और रहे हैं, ऐसा अक्सर होता है, क्योंकि जब भी कोई आदत हमारी मोटर स्किल्स में आ जाती है, हमारी मसल मेमोरी में आ जाती है, तो हम बड़े ईजी हो जाते हैं। ये इजी होना ही अक्सर ऐसी सिचुएशंस में घातक हो जाता है। आत्म जागरूकता
सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए, और ये सेल्फ अवेयरनेस जो है ये माइंडफुलनेस के साथ होना चाहिए। पूरी विचार शक्ति आपकी उसमें जुड़ी होनी चाहिए। बिना सोचे समझे ऑटो पायलट मोड पर हम काम न करें, ऐसे में गलतियां ज़्यादा होती हैं। थोड़ा सा भी हम जागरूक रहेंगे, सेल्फ अवेयर रहेंगे, तो गलतियां होने के चांसेस कम हो जाएंगे। यदि कोई गलती आपसे होती है, बार बार होती है, तो आप उन्हें नोट करना शुरू करें, दिमाग में नहीं, कागज़ कलम पर। दरअसल कागज़ कलम पर लिखने से क्या होता है, थोड़ा सा आप अवेयर होते हैं, उसे लिखते हैं, उतने समय भी आपका दिमाग रजिस्टर करता है कि आप कुछ लिख रहे हैं और जो लिख रहे हैं वो क्या है। आपने उतना विश्लेषण उस चीज़ का कर लिया, उतना समय दे दिया, तो आपका दिमाग आपको अवेयर करेगा हर बार वो काम करते समय। बस इतना सही होता है अपनी गलतियों को या अपनी खूबियों को या अपनी टू डू लिस्ट को लिखने का मतलब। और यदि आपका दिमाग आपको अवेयर कर रहा है तो उसको भी अवॉइड मत कीजिए, उसमें सुधार कीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि आप का दिमाग आपको सचेत करता है। जैसे कुछ लोगों को डिप्रेशन में खाने की आदत होती है, कुछ भी उठाते हैं और खा लेते हैं, उनका दिमाग उस समय भी उन्हें सचेत करता है कि ये तुम्हारे लिए हेल्दी नहीं है, मत खाओ, लेकिन वो दरकिनार करते हैं उस सलाह को और खा लेते हैं। या फिर इसका एक और उदाहरण बहुत अच्छा उदाहरण है, जिन्हें सिगरेट पीने की लत होती है, उनका दिमाग सिगरेट सुलगाते समय उन्हें सचेत करता है कि ये वाली बस करो यार, मत पियो, ये आज ज़्यादा हो गई है, लेकिन तलब इतनी ज़्यादा होती है कि वो उस सिगरेट को सुलगाते हैं और पी जाते हैं। उन्हें जबकि ये मालूम होता है कि ये जो है वो ज़्यादा हो रही है, ये उनके सेहत के लिए हानिकारक है, ये जो दरकिनार कर देने की बात है ये भी नहीं होनी चाहिए। यदि आपका दिमाग आपको संकेत दे रहा है तो उसकी बात सुनिए। बस यदि हम ये सब चीज़ें करते रहेंगे तो गलतियों के इस चक्र से बाहर निकल जाएंगे और फिर गलतियों से कोई आपका चरित्र नहीं नापेगा।

गलती से मिस्टेक करने की वैसे तो कोई उम्र नहीं है और मिस्टेक्स को अपने सुधारने की भी कोई उम्र नहीं है। खैर, आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। एक बहुत अच्छी खबर है हमारे शहर के लिए, वो हम आपको बताते हैं। दरअसल, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें सम्मानजनक आजीविका उपलब्ध कराने के लिए स्मार्ट सिटी जो है वो शहर के मुख्य सरकारी परिसरों में 8 से 10 निर्भया कैफे शुरू करने जा रहा है। आर्थिक रूप से कमज़ोर, ज़रूरतमंद और अत्याचार या प्रताड़ना का सामना कर चुकी महिलाओं को रोज़गार और स्वरोजगार से जोड़ने का उद्देश्य है इसके पीछे। प्रशासन का ये मानना है कि आर्थिक सशक्तिकरण महिलाओं को सामाजिक रूप से भी मजबूत बनाएगा। सरकारी कार्यालयों, अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों में आधुनिक सुविधाओं से लैस कैफे स्थापित किए जाएंगे और इसके लिए टेंडर की प्रक्रिया होगी। दरअसल, अगले 2 माह में इसे अंतिम रूप देने की तैयारी की जा रही है। शुरुआती चरण में ज़िला अस्पताल मुरार, केआरजी कॉलेज, ग्वालियर विकास प्राधिकरण का कार्यालय, कमिश्नर ऑफिस जैसे स्थानों को चिन्हित किया गया है, यहाँ इस तरह के निर्भया कैफे खुलेंगे। इसके बाद दूसरे बड़े अस्पताल, स्कूल और कार्यालयों को भी शामिल किया जाएगा जहाँ लोगों की आने जाने की आवक जावक ज़्यादा है। दरअसल, ये मिनी फूड कैफेज़ होंगे जो करीब 100 से 150 वर्गफीट क्षेत्रफल में बनेंगे। इन कैफेज़ में फ्रिज होना चाहिए, फूड डिस्प्ले यूनिट होनी चाहिए, पेयजल व्यवस्था और आवश्यक सुविधाएं भी सरकार उपलब्ध कराएगी। चाय, कॉफ़ी, नाश्ता, पैकेज्ड पानी, कोल्ड ड्रिंक्स, फास्ट फूड आइटम्स यहाँ मिलेंगे और यदि मांग होगी तो फास्ट फूड में पिज़्ज़ा, बर्गर, सैंडविच और दूसरे स्नैक्स भी रखे जा सकते हैं। दरअसल, 10 लाख रुपए की लागत का अनुमान है हर एक कैफ़े को विकसित करने के लिए और ये योजना हाइब्रिड फाइनेंस मॉडल पर तैयार की जाएगी। विभाग 3 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देगा जबकि जो बाकी 7 लाख रुपए हैं वो संचालक या फर्म को निवेश करने होंगे। इसे संचालित करने वाली संस्था को ये सुनिश्चित करना होगा कि वो इसे लंबे समय तक चलाएंगे। महिला स्वामित्व वाली फर्म या कैफ़े को ही संचालन का अधिकार दिया जाएगा और ये अधिकार 10 सालों के लिए दिया जाएगा। अनुबंध की जो अवधि है वो समाप्त हो जाएगी तो कैफ़े का जो स्थायी ढांचा है वो वापस शासन के अधीन चला जाएगा। दरअसल, ये जो मॉडल है वो दीदी कैफ़े की सफलता से प्रभावित है। कोविड के समय दीदी कैफ़े आयोजित किया जाता था ज़िला पंचायत ग्वालियर के कैंपस में और हमारे श्रोता जो हमें लंबे समय से सुनते हैं, हमने दीदी कैफ़े के संचालकों से आपकी बातचीत भी करवाई थी, यानी उनसे की गई बातचीत आपको सुनवाई थी। आपको दीदी कैफ़े के बारे में मालूम होगा। तो यदि महिलाएं ही इसे संचालित करेंगी और जो क्लाउड किचन संचालित करती हैं जो महिलाएं या घर से टिफ़िन सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा मौका है। इस तरह से वो अपने काम को विस्तार दे सकती हैं और अपनी आमदनी भी बढ़ा सकती हैं और तरह तरह के व्यंजन जो उनकी हाथ की विशेषता है वो दूसरे लोगों तक पहुंचा सकती हैं और इस तरह से उनका जो कैफ़े है वो एक अलग पहचान बना सकता है।

अब ये खाने पीने की बातें हो रही हैं तो आपको भूख लगाई होगी मेरे ख्याल से। आसपास कुछ है तो खाने के लिए भी आप सोचने लगे होंगे। हालांकि ये है ब्रेकफास्ट का समय, आप हो सकता है नाश्ता कर रहे हों। थोड़ा सा सोच समझ के, विचार करके यदि हम भोजन करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। आजकल स्वस्थ रहने के लिए योग या जिम, जुम्बा, एरोबिक्स, इन सबों का ज़माना है और लोग बहुत सचेत हो गए हैं अपने शरीर के प्रति। और जब ये कहने की चेतना जागृत होती है हमारे अंदर कि हमको स्वस्थ रहना है या हमको फिट रहना है, तो हम ये कोशिश करते हैं कि हम जानें कि हमारे शरीर में कितना फैट है, हमारा मोटापा कितना है। तो ये नापने के लिए हम सबसे पहले BMI इंडेक्स की तरफ जाते हैं। ये मोटापा नापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक पैमाना है जिसे BMI कहते हैं, बॉडी मास इंडेक्स। वजन और ऊंचाई के आधार पर यह तय करता है कि कोई व्यक्ति सामान्य है, ओवरवेट है या मोटापे की श्रेणी में आता है। लेकिन अब ये माना जाने लगा है कि ये BMI जो है वो पूरी तरह से सटीक नहीं है। दरअसल ये शरीर में मौजूद मांसपेशियों और वसा यानी फैट के बीच अंतर नहीं करता। मसल्स और फैट दोनों को ये एक जैसा मान लेता है। इसलिए कई बार व्यक्ति BMI के अनुसार तो सामान्य दिखाई देता है लेकिन उसके शरीर में खतरनाक फैट होता है। यदि आपके शरीर में हड्डियों का वजन

0: और मांसपेशियों का वजन ज़्यादा है तो BMI सामान्य है तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि हड्डियों और मांसपेशियों का वज़न कम है, वो वज़न यदि आपका फैट मैनेज कर रहा है और फैट के वज़न से आपका BMI नॉर्मल आता है, तो ये गड़बड़ बात है। यानी शरीर में फैट का होना BMI नहीं बताता। एक रिसर्च की गई जिसमें ये पाया गया कि BMI के आधार पर ओवरवेट माने जाने वाले लगभग आधे लोग क्लिनिकल ओबेसिटी से प्रभावित थे। यानी ये लोग मोटापे के रोग से पीड़ित तो थे, पर BMI के आधार पर इनकी पहचान मोटापे या मोटे लोगों के तौर पर नहीं की गई थी। दरअसल क्लिनिकल ओबेसिटी की स्थिति में शरीर की अतिरिक्त चर्बी के कारण दूसरे अंगों के टिश्यूज़ प्रभावित होते हैं, और ख़ासकर जो चर्बी दूसरे अंगों को प्रभावित करती है वो पेट के आसपास जमा चर्बी होती है। इसीलिए कहते हैं कि कमर का घेरा जो है वो आपका स्वास्थ्य बताता है। तो पेट और कमर पर यदि आपके चर्बी है तो उसे कम करने के प्रयास किए जाने चाहिए। पेट पर जमा चर्बी शरीर की सूजन बढ़ाती है। दरअसल वहाँ जमा चर्बी जो है वो ऐसे रसायन और हार्मोन छोड़ती है जिससे डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारियाँ, हाई कोलेस्ट्रॉल जैसी गंभीर बीमारियाँ विकसित हो सकती हैं हमारे शरीर में, और ये इन सभी बीमारियों को एग्रीवेट भी करती है। यदि आप हार्ट पेशेंट नहीं हैं या ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ ये सब नहीं है, तो पेट और कमर के आसपास जमा चर्बी आपको इन सब बीमारियों की तरफ धकेल सकती है। अब ये भी नहीं है कि BMI ये जो BMI है वो पूरी तरह बेअसर है। मोटापे की जांच का ये शुरुआती उपकरण ज़रूर है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को सही आकलन के लिए BMI के अलावा भी कुछ और जांचें करा लेनी चाहिए, तब थोड़ी सी चिंता करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक छोटा सा संदेश सुनाते हैं, फिर और बातें करेंगे।
1: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
2: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
3: बन गया बजट?
2: हाँ, 5,000 बच गए।
3: तो नई साड़ी ले ले।
2: ना, पिछले महीने तो ली थी।
3: एक और
2: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
3: बढ़िया,
2: जाओ भाई।
4: RBI कहता है,
1: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
0: श्रोताओ, आप में से कितने लोग हैं जो रोज टेम्परेचर का हालचाल लेते रहते हैं? अपने मोबाइल में टाइप करेंगे अपने शहर का टेम्परेचर कितना है, ऐसा करके कुछ टाइप करेंगे और देखेंगे कि कितनी गर्मी है, और फिर उसके हिसाब से आपको गर्मी लगनी शुरू होगी। ठंड के मौसम में यही चीज़ हम वो ठंड के टेम्परेचर के लिए करते हैं और फिर हमें ठंड लगनी शुरू होती है। दरअसल आपने जब भी खोला होगा टेम्परेचर नापने के लिए कोई भी ऐप, तो दो तरह के तापमान बताए जाते हैं, एक्चुअल टेम्परेचर और फील्स लाइक टेम्परेचर। अब इन दोनों में अंतर क्या है? एक्चुअल टेम्परेचर यदि 40 है और फील्स लाइक 43 बता रहा है, तो इन दोनों में क्या अंतर है? वास्तविक तापमान वो होता है जो थर्मामीटर नापता है, और फील्स लाइक तापमान वो बताता है जो मौसम इंसानी शरीर को वास्तव में कितना गर्म या ठंडा महसूस होगा वो होता है। अब उदाहरण लीजिए, यदि थर्मामीटर 40 बता रहा है और हवा में नमी की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो शरीर को ये तापमान 45 डिग्री या उससे भी ज़्यादा महसूस हो सकता है। दरअसल गर्मी के मौसम में हमारा शरीर पसीने के माध्यम से खुद को थोड़ा सा ठंडा रखता है, लेकिन जब हवा में नमी ज़्यादा होती है तो पसीना आसानी से सूखता नहीं है, और हमारे शरीर को जो पसीना सूख के ठंडक मिलती है वो नहीं मिल पाती, तो शरीर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती और ज़्यादा गर्मी महसूस होती है। यदि हवा भी चलती है तो वो भी हमारी गर्मी शरीर की जो है वो कम करती है, क्योंकि हवा से भी पसीना सूखता है। आपने देखा होगा कि कभी-कभी पसीना सूखता रहता है तो आपका शरीर ठंडा रहता है, लेकिन जब बारिशों के बाद हवा में नमी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, शरीर पूरा हमेशा पसीने पसीने रहता है और आपको अंदर से गर्मी महसूस हो रही होती है। ऐसे में आप एसी की तरफ भागते हैं और ज़रा ज़रा घड़ी घड़ी पसीना पोंछते रहते हैं, जिससे आपको थोड़ी सी राहत महसूस हो। बस यही है एक्चुअल टेम्परेचर और फील्स लाइक टेम्परेचर में अंतर।

श्रोता साथियों, मौसम तो ठंडा और गर्म होता रहेगा, मौसम आते रहेंगे और जाते रहेंगे, लेकिन आप स्वस्थ बने रहिए, मस्त बने रहिए और अपने जीवन को सेलिब्रेट करते रहिए। इसी दुआ के साथ इजाज़त दीजिए अपनी दोस्त तूलिका को। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे सूचनाओं और समाचारों पर केंद्रित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर, आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। सुनते हैं शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज हम आपको सुनवा रहे हैं साधना गोरे का शास्त्रीय गायन। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं नारायण प्रसाद शर्मा, हारमोनियम पर इकबाल खान। साधना गोरे से आइए अब सुनते हैं साल गवराली तोड़ी।

अभी आप सुन रहे थे साधना गोरे का गाया राग साल गवराली तोड़ी में ये ख्याल। तबला संगत नारायण प्रसाद शर्मा की थी, हारमोनियम पर थे इकबाल खान। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 10 बजने को है। जिले की चिट्ठी अब भोपाल से होगी।

0: अभी आप सुन रहे थे नाटक रणधीर पहलवान, ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। लीजिए अब सुनिए कटनी जिले की चिट्ठी।
1: प्रस्तुत है
2: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है कटनी जिले की चिट्ठी। आलेख राकेश चतुर्वेदी, वाचन स्वर दीपा सिंह। कटनी जिले में इन दिनों बदले मौसम के कारण लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। अगले 48 घंटे में तेज हवा और आंधी के साथ बूंदाबांदी की संभावना है। जिले में राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष जून माह को मलेरिया निरोधक माह के रूप में मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य मलेरिया संक्रमण काल प्रारंभ होने से पूर्व जन समुदाय में मलेरिया से बचाव रोकथाम संबंधी व्यापक जन जागरूकता फैलाना है, ताकि मलेरिया नियंत्रण और उन्मूलन में आमजन की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की जा सके। इसके लिए मलेरिया जागरूकता रथ भी चलाया जा रहा है। कटनी में भी पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली को आधुनिक प्रभावी तकनीक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में पुलिस द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। पुलिस मुख्यालय से प्राप्त आधुनिक तकनीकी सुविधाओं से युक्त टैबलेट जिले के विभिन्न थानों में पदस्थ विवेचना अधिकारियों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे अनुसंधान कार्यों में तेजी, पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। कटनी में भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हितग्राहियों की ई-केवाईसी किए जाने का अभियान चलाया जा रहा है। भारत सरकार के द्वारा जारी नवीन निर्देश द्वारा पीएम किसान योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु प्रति वर्ष बायोमेट्रिक के माध्यम से ई-केवाईसी की कार्यवाही सभी हितग्राहियों द्वारा कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। कटनी में महिला और बालिकाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए पुलिस दीदी अभियान चलाया गया। पिछले दिनों पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा के निर्देशन और महिला थाना प्रभारी वर्षा सोनकर के मार्गदर्शन में गठित पुलिस दीदी की विशेष टीम ने शहर के प्रमुख सार्वजनिक स्थलों का दौरा किया। टीम ने चौपाटी, मनोरंजन, मेला सहित अन्य भारी भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में सघन भ्रमण कर महिलाओं और बालिकाओं से सीधा संवाद स्थापित किया। पिछले दिनों कटनी में मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता के संबंध में गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक शासकीय तिलक महाविद्यालय कटनी में आयोजित की गई। बैठक में समान नागरिक संहिता के संबंध में अध्ययन और परीक्षण के लिए बनाई गई उच्च स्तरीय समिति के सदस्य और प्रख्यात कानूनविद अनूप नायर उपस्थित रहे। इस दौरान उपस्थित जनों ने केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित समान नागरिक संहिता के बारे में खुलकर अपने विचार व्यक्त किए। कटनी जिले में नागरिक सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। कलेक्टर आशीष तिवारी के निर्देश पर जिले भर में संचालित पटाखा फैक्ट्रियों, विस्फोटक भंडारण मैगजीनों और अमोनियम नाइट्रेट फैक्ट्रियों तथा स्टोर हाउसों की व्यापक जांच और भौतिक सत्यापन अभियान चलाया गया। जिले में योग के प्रति जागरूकता बढ़ाने और आमजन को स्वस्थ जीवन शैली के लिए प्रेरित करने हेतु 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पूर्व 40 दिवसीय निःशुल्क ऑनलाइन योग प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। ये पहल भारत सरकार के आयुष मंत्रालय और मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार संचालित की जा रही है। जिला आयुष अधिकारी डॉ आशीष रेजा ने बताया कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 11 मई से प्रारंभ होकर जिले के 18 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में नियमित रूप से आयोजित किया जा रहा है। प्रतिदिन 8 बजे से 9 बजे तक पंडित खुशीलाल आयुर्वेद चिकित्सालय से योग आयोग के विशेषज्ञों द्वारा ऑनलाइन माध्यम से योग सत्र संचालित किए जा रहे हैं। कटनी में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के आह्वान और कलेक्टर आशीष तिवारी के मार्गदर्शन में 19 मार्च से जिले में जल स्तर को सुधारने और पारंपरिक जल स्रोतों को सहेजने के लिए चलाया जा रहा जलगंगा संवर्धन अभियान 2026 में जिले ने उत्कृष्ट कार्य

किया है। बलराम तालाब की श्रेणी में जलगंगा संवर्धन अभियान के मामले में कटनी प्रदेश के चार अग्रणी जिलों में शामिल है। जिला प्रशासन और ग्रामीणों के साझा प्रयासों से अब तक जिले में 3,284 जल संरक्षण संबंधी कार्य सफलतापूर्वक पूरे किए जा चुके हैं, जिससे पानी को सहेजने और उसके संरक्षण तथा संवर्धन में मदद मिलेगी। कटनी में जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत संचालित मकान सूचीकरण मकान गणना कार्य पूरा हो गया है। इसमें कटनी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए कीर्तिमान स्थापित किया है। अब प्रगणकों द्वारा बनाए गए नजरी नक्शे को ट्रेस का काम किया जा रहा है। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे कटनी जिले की चिट्ठी। आलेख राकेश चतुर्वेदी का था, वाचन स्वर दीपा सिंह का। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।
1: आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। आइए सुनते हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। कार्यक्रम लेकर हाजिर है आपकी दोस्त तूलिका।

सोनू निगम और श्रेया घोषाल के स्वर में अभी आप सुन रहे थे फिल्म दबंग का ये गीत। गीतकार जलीश शेरवानी, संगीतकार साजिद वाजिद और पसंद आप सबकी। आप हैं पिंगावाला चौक गोरियां जलंधर से संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़ और कमल साहनी। फुलचिंचोली तालुका पंढरपुर से जाकिर मुलाणी, सुमैया मुलाणी, सुबान मुलाणी, समीर मुलाणी, सलमा, मुमताज, दिलशाद, नसीर मुलाणी, उनके चाचा चाची और पूरा मुलाणी परिवार। इसी गीत को सुनना चाहते हैं धनौरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और अयान बाबू। कार्यक्रम का अगला गीत आप सबकी पसंद पर है। आप हैं गांव कलाना, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान से विक्रम कड़वासरा, सचिन, सतीश, योगेश, युधव कड़वासरा। चरडोंगरी पिपरिया कबीरधाम से दुर्गाराम साहू, अजय कुमार साहू, जय किशन साहू, कुमारी साहू, श्रीमती इंद्राणी, माया साहू। और आप हैं रजौनी जिला महोबा बुंदेलखंड से उदयभान पाल, जय हिंद पाल, दीक्षा पाल, प्रतीक्षा पाल, विमलेश पाल, दिव्यांश बघेल और उनके परिवार के सभी सदस्य। आप सब सुनिए अपनी पसंद पर अलका याग्निक और सोनू निगम का गाया फिल्म धड़कन का ये गीत। गीतकार समीर और संगीतकार हैं नदीम श्रवण।

0: ए भाई,
1: सड़क पर चलते समय अपने वाहन की गति नियंत्रित रखें। किसी भी प्रकार का स्टंट करने की कतई कोशिश न करें। हो सकता है आप कुशल चालक हों, लेकिन दुर्घटना सिर्फ हमारी गलती से नहीं होती, दूसरों की लापरवाही भी हादसों का कारण होती है। दाहिने या बाएं मुड़ते समय इंडिकेटर का प्रयोग अवश्य करें। खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों की सुरक्षा का भी ध्यान रखें।
0: ए भाई दर

आइए अब आपको सुनवाते हैं अपने इन दोस्तों की पसंद। आप हैं सौदागर संतर मुरार से गुड्डू मिश्रा, गिरीश मिश्रा और निशा मिश्रा, संदरपुर आंतरिक ग्वालियर से कालीचरण यादव, उर्मिला देवी यादव, दीपक यादव और चांदनी यादव, ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निखत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान

अब्बासी, अरजान अब्बासी और अब्बान अब्बासी, करणवीर हाउस कैंचिया बठिंडा पंजाब से प्रेम सिंह जौड़ा, मनजिंदर कौर, मनजीत कौर जौड़ा, करणवीर करण, दीपिंदर वरिंदर, कुलदीप सिम्मू एकम दमन अभिजोत, और आप हैं खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, राजकुमार बोडाना, और सुदामन नगर खंडवा से लक्ष्मी, नंदिनी, रोहित, रितु, मुकेश और जगताप। आप सब सुनिए अपनी पसंद पर सोनू निगम और अलका याग्निक का गाया, समीर का लिखा और हिमेश रेशमिया का संगीतबद्ध किया ये गीत। फिल्म का नाम है दिल मांगे मोर।

फरमाइशी फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से। आइए अब आपको सुनवाते हैं हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद। आप हैं बीड शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री मेहत्रे, अंजलि करवा, बाला साहेब करवा, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय टबूल, पी वी कुलथे। ग्राम लोहेडी, जिला महोबाव बुंदेलखंड से जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र, अरविंद, रागिनी, रिया, रेणु, दिव्यांशी, आराधना, रोनिका, चंद्रेश, गोहर और सुनील पाठक। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से छन्नूलाल श्रीवास, पुष्पा श्रीवास, योगिता श्रीवास, अंजू, अनीता, रजन साहू, हेमंत नामदेव और धर्मदास वाधवानी। कुंभारगली श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, रोहिणी दले, ऋषिकेश दले, जीविका दले और पुनावले पुणे से अजय सोनवने, करिश्मा सोनवने, अविका सोनवने और विशाखा सोनवने। आप सब सुनिए अपनी पसंद पर सोनू निगम और अलका याग्निक का गाया, सुधाकर शर्मा का लिखा और हिमेश रेशमिया का संगीतबद्ध किया ये गीत। फिल्म का नाम है दुल्हन हम ले जाएंगे।

कार्यक्रम का ये अगला गीत आप सबकी पसंद पर। आप हैं पत्रोड़ा से मंगल जनागल, रही रोशनी जनागल, अंकुर जनागल, इंदु, सुनील जनागल, ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, फरदीन, सुहान, अरजान और अब्बान अब्बासी, MLB रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना, पप्पी, किरण खुराना, लव्या, आरव, मेघा, साक्षी, आशीष, अनुज, विशु, छोटू और पप्पी खुराना। इसी गीत को सुनना चाहते हैं काटा रोड वाशिम महाराष्ट्र से विठल सरोशे, सुषमा सरोशे, परिधि सरोशे और मायरा सरोशे। आप सब सुनिए अपनी पसंद पर। सोनू निगम और सौम्या राव का गाया, अब्बास टायरवाला का लिखा और संदीप चौटा का संगीतबद्ध किया ये गीत। फिल्म का नाम है दम।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आइए कार्यक्रम का अगला गीत आप सबकी पसंद पर सुनते हैं। आप हैं साउथ एक्सटेंशन नई दिल्ली से गुरमीत सिंह मीता। खारिया डाड़ी सिरसा हरियाणा से सतवीर सिंह बिजारनिया, देवेंद्र राजपाल, अभिषेक, योगेश, पूजा, आरजू और नव्या बिजारनिया। डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी, सोनम अदीबा, दानिश अंसारी। गोलाबाजार बक्सर से शदानंद आर्य, अभियानंद आर्य, परमानंद आर्य। सारिमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी, आसमा खातून अंसारी। और बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, सुरीत रेशम साहू। आइए कार्यक्रम का अगला गीत आप सबकी ही पसंद पर सुनवाते हैं।

फिल्म का नाम है दस। गीत पंछी जालौन भी का, संगीत विशाल शेखर का और आवाज़ें सोनू निगम और सुनिधि चौहान की।

और उनके बहुत सारे साथी। गुलाम रोड, हर गोविंद नगर, नवाशहर, पंजाब से सुरेंद्र संधू, अनीता संधू, रोहित संधू, रितेश संधू, शिखा संधू, प्रतीक्षा संधू और मैक्स। आप सब सुनिए अपनी पसंद पर सोनू निगम और श्रेया घोषाल का गाया, समीर का लिखा और शंकर एहसान लॉय का संगीतबद्ध किया ये गीत। फिल्म का नाम है हे बेबी।

खमरिया छत्तीसगढ़ से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री कुमारी और प्रतीक कुमार, छत्रपति संभाजीनगर से महेश इंग्ले, संध्या इंग्ले, स्वराज विराज, ऑरेंज सिटी नागपुर से विट्ठल जाधव, अनसुईया जाधव, पवन राजे जाधव, एसएम जावेद, शगुफ्ता अंजुम और नजमुल होदा, गुमला झारखंड से हैं आप। इस गीत को सुनना चाहते हैं कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गरवी और हिमाक्ष। आप सब सुनिए अपनी पसंद पर।

और आइए अब कार्यक्रम के अंत में पूरी करते हैं आप सबकी फरमाइश। आप हैं बठिंडा रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, लक्की नारंग, तानिया नारंग और उनके परिवार के सभी सदस्य। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन, कृष्णा, पीहू स्वर्णकार और बहरामपुर टेमा से तिलोक चंद वर्मा, भागवत वर्मा, अभिषेक।

अभिषेक, सीमा, अमित वर्मा, सचिन, मास्टर समर, राज आर्यन, आरोही, ऐशिका, श्वेता वर्मा, आप सब सुनिए अपनी पसंद पर सोनू निगम और महालक्ष्मी अय्यर का गाया, देव कोहली का लिखा और विशाल शेखर का संगीतबद्ध किया फिल्म कर्म का ये गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का विशेष कार्यक्रम गीत सागर। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। इस दौरान ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, औषधि उद्योग, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने देशवासियों से नियमित रूप से योग करने का आग्रह किया है। एक संस्कृत श्लोक साझा करते हुए उन्होंने कहा कि योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाकर संतुलित, स्वस्थ और ऊर्जावान जीवन जिया जा सकता है। केंद्रीय कैबिनेट ने मध्य प्रदेश के लिए दो महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं की स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि ये परियोजनाएं बैतूल, खंडवा, खरगोन, बड़वानी जिले के विकास में मील का पत्थर साबित होंगी। इनके माध्यम से राज्य में इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव आज राज्य संग्रहालय में भोपाल मेट्रो परियोजना और उच्च शिक्षा विभाग के संबंध में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। भारत भवन में भारतीय नृत्य की विविध शैलियों पर केंद्रित नृत्य समारोह 5 जून से प्रारंभ होगा। 3 दिवसीय इस आयोजन में प्रतिदिन शाम 6 बजे से कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे, जिसमें प्रवेश निःशुल्क है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते प्रदेश में प्री मानसून की गतिविधियां जारी हैं। अगले 24 घंटों के लिए 20 से अधिक जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग के अनुसार कहीं कहीं बिजली गिरने की भी संभावना है। और भारत ने सिर्फ फुटबॉल महिला चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। 5 बार के विजेता भारत का शनिवार को फाइनल में बांग्लादेश से सामना होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है फोन इन कार्यक्रम बात आपकी, गीत हमारे।
2: श्रोताओं नमस्ते, मैं हूँ नीतिका वर्मा, लेकर हाजिर हूँ प्रोग्राम बात आपकी, गीत हमारे। जब से मनुष्य ने पहिए का आविष्कार किया है, उसकी प्रगति थमी नहीं है। ये पहिया ऐसा चला कि आज तक नहीं थमा है। इसने जीवन के कई नए आयाम को खोज और आविष्कार के माध्यम से सुलभ बनाया है। तो श्रोताओं, आज बात करेंगे साइकिल की। ये आपके जीवन में क्या परिचय देती है और आपके जीवन में इसका क्या महत्व है? शुरू करते हैं हमारे पहले श्रोता के साथ जुड़कर।
3: प्रणाम मैम, नमस्कार आपको करता हूँ। मैं संतोष कुमार राव बात कर रहा था, उमरिया मध्य प्रदेश से।
2: जी संतोष जी, कैसे हैं?
3: मैडम बहुत अच्छे हैं, लगातार आपके प्रसारण सुनते हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के। बहुत ही अच्छे अच्छे कार्यक्रम लेकर के आप आते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है मैडम आपसे बातें करते हुए हमें।
2: और हमें भी बहुत खुशी होती है जब हमारे श्रोता हमारे साथ जुड़ते हैं और इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, है ना?
3: तो
2: संतोष जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पहला फोन कॉल आपका है और जानना चाहते हैं कि साइकिल जो है वो आपके जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है।
3: बिल्कुल, उमंगों का खास एक सुकून भरा एहसास जो दिलाता है वो साइकिल होती है। हम लोग बचपन से लेकर के अभी तक जो शौक रहा है हमारा, अब तो चल खास करके टू व्हीलर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो साइकिलें होती है उससे हमारी शारीरिक मानसिक जो ऊर्जा शक्ति होती है उसका निर्माण होता है। और साइकिल चलाने से हमारी जो पैर की कसरत है वो भी पूरी होती है और इसे बहुत ज्यादा हमें सुकून भी मिलता है मैडम जी।
2: तो आप साइकिल को सुकून का एक जरिया मानते हैं?
3: बिल्कुल मैम, खास करके हम जब युवा रहे हैं, बताएं आपसे अभी भी हम युवा ही हैं और हम लोग जब स्कूले जाते हैं साइकिलों से तो बहुत ही अच्छा लगता है।
2: चलिए साइकिल चलाते रहिए, तो आपके जो युवावस्था है ये एक लंबे समय तक तो जरूर बरकरार रहेगी। संतोष जी, इसी उम्मीद के साथ मैं आपका बहुत धन्यवाद करते हैं और आपने बहुत अच्छी बातें की, इस बात का बहुत बहुत शुक्रिया।
3: बिल्कुल मैम, और आपके प्रसारण लगातार हम तक पहुँच रहे हैं न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन के साथ साथ DTH पर भी। आपका जो कार्यक्रम जाता है ना आकाशवाणी मध्य प्रदेश का, बहुत ही अच्छा लगता है मैडम जी ऐसे कार्यक्रम को।
2: जी जी जी जी, साथ में वेव्स OTT ऐप जो है उसके भी 2 वर्ष हो गए हैं हमारे, और इस पे भी आप प्रसारण सुनिए तो आपको भी बहुत आनंद आएगा।
3: बिल्कुल मैम, और साथ में फेसबुक पर भी जो कमेंट मतलब जाते हैं आकाशवाणी भोपाल के, तो बहुत ही अच्छे लगते हैं मैडम जी।
2: आप बहुत सक्रिय श्रोता लग रहे हैं हमारे संतोष जी।
3: बिल्कुल बिल्कुल मैम, लगातार पत्रचार भी हम लोग करते थे, आकाश भी पदाधिकारी हैं, जो है उनके निर्देशन में बहुत सारे कार्यक्रमों का निर्माण होता रहा है और बहुत ही अच्छे अच्छे कार्यक्रमों का संचालन भी अभी किया जाता है।
2: अच्छा, तो एक चीज ये बताइए कि आपने कहा कि आप पत्र लिखा करते थे, तो वो लिखा करते थे को लिखा करूंगा बोलिए और लिखना शुरू कीजिए।
3: आकाशवाणी भोपाल और आकाशवाणी मध्य प्रदेश तक जरूर पहुंचेगा कार्यक्रम मन भावन और कार्यक्रमों के लिए। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, नमस्कार।
2: जी जी नमस्कार।

0: हेलो
1: जी, नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: आपका परिचय दीजिए।
0: हम रजनी सोनी बोल रहे हैं दीदी, हम बालाघाट जिला से बोल रहे थे
1: जी। साइकिल चलाना जानती हैं?
0: नहीं,
1: लेकिन साइकिल का महत्व है आपके जीवन में, साइकिल आपके लिए कितनी उपयोगी है ये बताएं।
0: अब देखो दीदी, अब हम बच्चे वाले हो गए, पहले हम पढ़ते थे तो चलाते थे, अब क्या है हमारे बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं।
1: तो बच्चों को साइकिल इनाम में दी कभी?
0: अरे अब देखो, बच्चे अपने पढ़ रहे हैं तो अपन तो उनके लिए लेते थे ना साइकिल, स्कूल जाते थे प्राइवेट स्कूल, तो पहले क्या है बस का साधन नहीं, तो 4-5 किलोमीटर में बच्चे चलाते जाते थे, हमारे तीनों बच्चे ने पढ़े हैं।
1: हाँ, तो देखिए जब हम वाहन चलाना सीखते हैं ना तो सबसे पहले हमें साइकिल सीखनी पड़ती है।
0: हमारे यहाँ गाड़ी वाड़ी सब है, बाकी वो कहता है साइकिल चलाने से स्वस्थ रहते हैं,
1: क्योंकि
0: वो साइकिल चलाने और शौक लगती है उसको, तो ऐसे व्यायाम टाइप का। हाँ, तो इसलिए वो गाड़ी भी है, पर वो कहता है साइकिल से बहुत स्वस्थ रहते हैं करके वो साइकिल भी फिर अब से फिर से खरीदे हैं। साइकिल के बच्चों ने पढ़े तो हमने उनको बेच दिया जब उन बड़े बड़े हो गए थे।
1: तो अभी दोबारा साइकिल खरीदी उन्होंने
0: जी। अब वो क्या है थोड़ा सा बोलते हैं गाड़ी गाड़ी में अच्छा नहीं लगता है, तो साइकिल में थोड़ा सा अपना इधर उधर आस पास घर के थोड़ा सा घूम लेते हैं।
1: हाँ चलिए, तो साइकिल वो अपने व्यायाम के तौर पर ले रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है जी। नमस्ते।

0: हेलो आकाशवाणी मध्य प्रदेश,
1: आपका परिचय बता दीजिए।
0: मुन्ना सोनी गुरु नानक स्कूल के पास दमोह मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ मैडम।
1: जी बहुत स्वागत है आपका।
0: नमस्कार मैडम, कैसी हैं आप मैडम?
1: जी हम बहुत अच्छे हैं। मुन्ना सोनी जी, हम जानना चाहते हैं कि स्वास्थ्य की दृष्टि से साइकिल आपके लिए कितनी उपयोगी है, बताएं।
0: मैडम कम से कम 33 साल हो गया है मुझे साइकिल चलाते हुए।
1: जी
0: और आज भी जो है मैं साइकिल चलाता हूँ। वो सबसे बड़ी चीज, साइकिल चलाने से बहुत से फायदे हैं।
1: हाँ हाँ,
0: जैसे हाथ पैर में आपके लिए कभी दर्द नहीं रहेगा।
1: हाँ,
0: कमर में दर्द नहीं रहेगा।
1: हाँ,
0: और स्वास्थ्य भी अपना बहुत बढ़िया रहेगा।
1: हाँ,
0: और दूसरी चीज क्या है कि आजकल क्या है कि जरा जरा से काम के लिए बच्चे जो है बाइक से या मोटरसाइकिल से मार्केट चले जाते हैं, वो अपने लिए जो है साइकिल से आसपास के अपने काम निपटाना चाहिए।
1: हाँ बिल्कुल सही,
0: उसमें स्वास्थ्य भी अपना बढ़िया रहेगा।
1: जी जी जी, इसमें काफी कुछ आपकी, देखिए सांस भी आपकी अच्छी हो जाती होगी इससे, क्योंकि इसमें काफी बल लगता है।
0: बढ़िया फिट रहते हैं।
1: हाँ शारीरिक बल लगता है तो बहुत अच्छी बात है। और पैरों की कमर की तो आप बता ही रहे हैं।

0: कि इससे आपको काफी
1: पूरा दिन तरोताजा महसूस करते हैं अपने लिए हम।
0: चलिए बहुत अच्छा लगा मुन्ना सोनी जी, आपने साइकिल के इतने इतने अच्छे फायदे गिनवाए।
1: जी मैडम नमस्कार, थैंक यू मैडम।
0: नमस्कार।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नमस्कार।
1: हाँ, आप कौन बोल रही मैम?
0: जी, मैं नीतिका वर्मा बोल रही हूँ।
1: हम जानकी गुप्ता हूँ, ग्राम भगवंत नगर मजला जिला टीकमगढ़
0: जी।
1: बंदे से ट्राई कर रहे हैं, 10 मिनट हो गए ट्राई कर।
0: हाँ हाँ, हो जाता है, बहुत लोग बातें करते हैं, 10:30 का इसका वक्त होता है। तो जानकी गुप्ता जी, आज हम बात करना चाहते हैं साइकिल पर। तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि पर्यावरण की दृष्टि से साइकिल आपके लिए कितनी उपयोगी है?
1: मैडम बहुत उपयोगी है, ना पेट्रोल लगना, ना डीजल लगना है, ना उसका धुआं आने, कुछ भी नहीं आने। अगर चला ली तो अपन कहीं जाते हैं साइकिल से।
0: तो आपके घर
1: जब हम स्कूल जाते थे तो साइकिल से जाते थे, जब इतनी गाड़ी तो चलती नहीं थी।
0: हाँ, सही बात है, अधिकतम लोग तो साइकिल से ही स्कूल जाया करते थे।
1: हाँ, अब तो ऐसी गाड़ी चल गई थी, अभी स्कूटी चल गई, बच्चा स्कूटी से जाते हैं, लेकिन हम लोग तो साइकिल से जाते थे, कम से कम 6 किलोमीटर दूर। अगर साइकिल खराब हुई तो पैदल भी जाते।
0: सही बात है। तो जानकी गुप्ता जी, आज भी आपके यहाँ साइकिल है या नहीं?
1: हाँ है मैम, हमारे यहाँ साइकिल भी है, मोटरसाइकिल भी है।
0: और उसका उपयोग कौन करता है?
1: मेरे पति तो है नहीं, मेरे बच्चा है और बच्ची है।
0: अच्छा, साइकिल चलाते हैं वो लोग।
1: हाँ, साइकिल ऐसे कहीं जाते हैं साइकिल से चले जाते। लड़की पहले चलाती, 9वां में पढ़ती थी तो साइकिल से जाती थी। हम गांव में रह रहा इस समय।
0: हाँ,
1: तो वो कम से कम काफी दिन से उसने साइकिल चलाई, तो थोड़ी बहुत चला दी, भूल सी गई भी। अब कल लगती मम्मी हम भूल गए साइकिल चला। मंदिर गई थी वहाँ, साथ तो चलाती गई थी, एक लड़की के साथ गई थी, दोनों जने चला के गई।
0: जानकी गुप्ता जी, आप अपनी बेटिया से कहिए कि वो साइकिल का अभ्यास करे, क्योंकि साइकिल चलाना, तैरना, ये कुछ ऐसी विधाएं हैं जो इंसान एक बार सीख ले तो वो भूलता नहीं है। हाँ, है ना। तो बस थोड़ा सा अभ्यास करेगी तो उसको आत्मविश्वास आ जाएगा उसमें कि मैं साइकिल चला रही हूँ और मेरे से बनती है। तो चलिए, पर्यावरण की दृष्टि से ये बहुत उपयोगी है साइकिल आज, क्योंकि देखिए बिना गाड़ी के तो हमारा काम हो नहीं रहा है, और पर्यावरण की मांग भी है, है ना। अभी 5 जून को हम पर्यावरण दिवस भी मनाएंगे। जाहिर बात है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा जो प्रदूषण जो होता है वो धुएं से हो रहा है,
1: धुएं से होता है,
0: है ना। तो जहाँ संभव हो सके वहाँ हमें बचत करनी चाहिए, धुएं कम निकलें इस बात पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो सबका एक प्रयास जो है वो रहेगा, तभी ये काम सार्थक हो पाएगा।
1: हाँ मैम
0: जी, जानकी गुप्ता जी, आपसे बात करके अच्छा लगा। नमस्कार।

0: हाँ नमस्ते मैडम, मैं पिंडरी जिला मंडला से सुमत रिटायर शिक्षक सुमत कुमार जैन बोल रहा हूँ। मैडम
1: आपसे जानना चाहेंगे कि जब हम देख रहे हैं कि आज के परिप्रेक्ष्य में जहाँ पर ईंधन की कमी हो रही है और वैसे भी जीवाश्म ईंधन जो है वो एक न एक दिन तो खत्म होगा ही
0: होगा, वो तो निश्चित है।
1: हाँ, तो ऐसे में जब संकट की
0: होगी मैडम, साइकिल से तो बताए ना मैं कि साइकिल स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। आपको अगर शुगर है या बीपी है तो साइकिल आपको बहुत रोकथाम कर देती है, और साइकिल आपकी सस्ती भी है, और साइकिल आपकी कोई मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत बढ़िया है। साइकिल से अपना स्वास्थ्य भी सुधरता है और मेंटेनेंस की भी उतनी आवश्यकता नहीं पड़ती, किसी प्रकार की कोई परेशानी रख रखाव से लेकर हर चीज की पूरी समस्याएं हल कर देती है मैडम।
1: जी जी,
0: 20 साल साइकिल चलाया हूँ मैडम मैं तथा, और नदी पहाड़ सब थे, साइकिल सब जगह चल जाती है, नदी पहाड़ कहीं भी चला लूँ साइकिल बहुत सुलभ है।
1: हाँ, और छोटे मोटे नाले पड़े हैं तो हाथ में उठा करके भी साइकिल पार कर लेते हैं,
0: कंधे में रख करके ले जा लूँ चल जाती है।
1: चाह रहे थे क्योंकि देखिए आज के परिप्रेक्ष्य में जहाँ ईंधन बचाना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है, तो ऐसे में
0: मेरा नाती है मैडम, ये भी बहुत साइकिल चलाता है, लीजिए इससे थोड़ा बात कर लीजिए।
1: बिल्कुल।
2: नमस्ते मैम।
1: नमस्ते, आपका नाम क्या है?
2: मेरा नाम कबीर जैन है।
1: और कबीर, साइकिल चलाते हैं आप?
2: हाँ यस मैम।
1: और कैसा लगता है साइकिल चलाना?
2: अच्छा लगता है।
1: अच्छा, तो साइकिल से आप कहाँ कहाँ जाते हैं?
2: स्कूल, शॉप और साइकिलिंग में चल जाते हैं।
1: और मम्मी कोई सामान लाने के लिए कहती हैं तो साइकिल से जाके जल्दी से लाके देते हैं?
2: हाँ,
1: है ना। चलिए, बहुत अच्छा लगा कबीर, ये शौक हमेशा बनाए रखिए।

0: कुमार बोल रहा हूँ, मंदसौर से।
1: हाँ भैया।
2: सुरेश जी,
0: हाँ
2: हम ये जानना चाहते थे कि भाई जो छोटे बच्चे होते हैं, है ना, स्कूल में जो 10वीं 11वीं कर लेते हैं या फिर जब जैसे ही कॉलेज में जाते हैं तो वो जिद करने लगते हैं घर में कि हमें गाड़ी खरीद के दी जाए। देखिए, ज़रूरत के लिए अगर हम खरीद रहे हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन एक स्टेटस की बात जब बच्चे करने लगते हैं कि क्योंकि वो लोग गाड़ी से आते हैं तो हम साइकिल से क्यों जाएं, भले ही उनके घर से 2-3 किलोमीटर पे ही विद्यालय है या कॉलेज है, लेकिन तब भी वो कहते हैं कि नहीं हमें गाड़ी चाहिए क्योंकि बाकी लोगों के पास गाड़ी है, तो वो तुलनात्मक दृष्टि से जब वो बोलते हैं तो वो कितना सही बोलते हैं?
0: वो तुलना नहीं करिए, अगर पास में स्कूल है तो अपन को भाई पास पैदल चले जाओ, साइकिल से चला जाओ, मतलब।
2: हाँ हाँ हाँ,
0: उनका कहना मानना चाहिए, आजकल बच्चों को भी, माता पिता का भी भाई।
2: हाँ हाँ बिल्कुल सही,
0: मेरा सुझाव ये आपसे मतलब है।
2: हाँ।
0: बच्चों को माता पिता जगह कहना मानना चाहिए, पास में का स्कूल बोले पैदल चले जाए, साइकिल पे चले जाए, साइकिल क्या है तो मतलब।
2: हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, ऐसा है ना कि साइकिल अगर आप चलाएंगे तो स्वस्थ भी रहेंगे, पेट्रोल से पैसे भी बचेंगे,
0: अपना खून का दौरा भी चलेगा और कसरत हो जाएगी, सुस्ती नहीं आएगी शरीर में।
2: और सही बात तो ये भी है ना सुरेश कुमार जी कि आर्थिक दृष्टि से भी इस पर बहुत बड़ा असर पड़ता है, है ना, एक हाँ बड़ी धनराशि जो है वो घर से खर्च करनी पड़ती है उसे लेने के लिए,
0: मतलब। और पेट्रोल अगर जहाँ गाड़ी, पेट्रोल नहीं गाड़ी, वो रखनी पड़ती है।
2: हाँ।
0: साइकिल तो अपन कहा भी पैदल भी ले आ सकते, चला भी सकते, मतलब उसका कोई चार्ज भी नहीं लगता है।
2: हाँ चलिए,
0: मेरा विचार ये दीदी क्या।
2: चलिए बहुत अच्छा लगा, आपने इतने अच्छे विचार हमें दिए हैं सुरेश कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपने फोन किया।
0: धन्यवाद मैडम।

0: मैं जिला सागर तहसील बंडा से भोले लोधी बात कर रहा हूँ।
1: जी जी, बहुत स्वागत है भोले लोधी जी आपका। कि बच्चे जो हैं वो आज साइकिल जब चलाते हैं
0: जी,
1: तो उनकी खुशी जो है इनाम के तौर पर जब हम उन्हें देते हैं तो वो बड़े खुश रहते हैं, और लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं है ना, तो वो उनको ये लगता है कि अब हमें गाड़ी चलानी चाहिए, साइकिल नहीं चलानी चाहिए। वो देखा देखी में भी ऐसा कहते हैं। तो ये देखा देखी वाली जो बात है साइकिल ना चलाने की, वो कहाँ तक उचित है ना। तो लेकिन साइकिल जो है वो एक स्टेटस सिंबल लोग बाग बना लेते हैं कि इस हम अगर गाड़ी चला रहे हैं तो हम बहुत संपन्न और इस प्रकार से अपने आप को समझते हैं, और साइकिल चलाने को आज कई लोग जो है हीन भावना से देखते हैं। तो ये कहाँ तक उचित है?
0: मैम वैसे साइकिल तो ठीक है, वैसे पर्यावरण से भी बच्चे माने बचा है, पेट्रोल बचता है, सही है।
1: हाँ। जी
0: साइकिल का उपयोग ज्यादातर करने चाहिए। साइकिल तो बहुत अच्छी है, पहले आदमी बोलते थे साइकिल से काम होता था, बहुत अच्छा लगता था, जहाँ जहाँ जाती थी। साइकिल तो सही है मैम, लेकिन बच्चों को नहीं देना चाहिए, छोटे बच्चे हैं उनको नहीं देना चाहिए, रोड से सड़क से चलाना चाहिए।
1: नहीं नहीं, गाड़ी नहीं देना चाहिए, साइकिल तो खैर ऐसा है कि जब बहुत छोटे रहते हैं तो वो अपने घर के सामने आसपास चलाते हैं, तो
0: ये तो है, चलाते हैं घर के आसपास। हाँ,
1: नहीं हमारा तो प्रश्न खाली ये था कि जो बनावटी दिखावटी जो दुनिया है उस पर दिखाने के लिए जो बच्चे जिद करते हैं ना कि नहीं अब हम साइकिल नहीं चलाएंगे, ज़रूरत नहीं है उन्हें बड़े वाहन की, लेकिन तब भी वो जिद करके जो है वो स्कूटी और मोटरसाइकिल वगैरह खरीदने की जिद करने लगते हैं, उसकी हम बात कर रहे थे।
0: दो मिनट का रोड कहाँ कर देता है अपन के लिए, रोड नहीं करना चाहिए।
1: बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके भोले लोधी जी, और आप जैसे सक्रिय श्रोता जो हैं, सुधी श्रोता जो हैं, कृतज्ञ हैं कि वो हमारे लिए इतने अच्छे विचार देते हैं और हमारे रेडियो के साथ में हमेशा जुड़े रहना पसंद करते हैं, ये हमें बड़ा अच्छा लगता है। तो चलिए, बहुत धन्यवाद, आपने बात की।

0: हेलो
1: हेलो, नमस्ते मैम
0: नमस्ते, परिचय दे दीजिए।
1: जी। लक्ष्मण सिंह चंदेल, ग्राम बोतराई, तहसील पथरिया, जिला दमोह से बात कर रहा हूँ।
0: आज विश्व साइकिल दिवस है, इसी पर आज हम बात कर रहे हैं।
1: अच्छा मैम
0: जी, तो हम ये जानना चाहते हैं कि इनाम के तौर पर कभी साइकिल मिली है, या आपने किसी को दी है, या साइकिल जब हमें कभी कोई मिल जाए कभी बतौर इनाम, है ना। कभी कभी दोस्त भी आपस में एक दूसरे से कहते थे, जब छोटे छोटे होते हैं ना, तो एक साइकिल चला रहा है, दूसरे के पास नहीं है, तो वो कहता है अच्छा मैं एक राउंड मारने के लिए मुझे दे दे, है ना। फिर वो जो खुशी मिलती है ना जब उसे मिल जाती है साइकिल, तो वो
1: देखिए मैम ऐसा है, साइकिल तो मैम हम अभी भी चलाते हैं।
0: हाँ हाँ
1: जी जी बिल्कुल, और खेत पे जाते हैं तो साइकिल से ही जाते हैं मैम। और कई बार ऐसा होता है जैसे आप बता रही हैं मैम,
0: हाँ हाँ
1: कुछ मित्र लोग भी मांग लेते, क्या बताया हम एक राउंड लगा के आ रहे हैं,
0: हाँ हाँ
1: बाद में आपकी वापस कर दे
0: तो वही हम कह रहे हैं कि इनाम के तौर पर भी कभी कभी हमें जब साइकिल मिलती है ना, या पहली बार जब कभी आपको साइकिल मिली होगी, तो आप कितने प्रसन्न हुए थे और क्या आपका अनुभव रहा था, ये बताइए, कुछ याद है तो।
1: बात तो जब हम मतलब सीख रहे थे चलाबो में,
0: हाँ,
1: तो हम यही विनती करते भगवान से, हम पे साइकिल बनने लगे, हम नारियल फोड़ जो बहुत बहुत मतलब बनने लगी थी। पर कैची, पहले कैची सीखते मैम,
0: हाँ हाँ हाँ,
1: तो कैची के बाद में फिर डंडा, फिर सीख पे मतलब ऐसे सीख पाए थे।
0: हाँ, क्योंकि छोटी साइकिलें बहुत कम बनती थी, बड़ी साइकिल होती थी तो कैची चलानी ही पड़ती थी, क्योंकि सीट तक तो
1: बिल्कुल
0: हाँ पैर नहीं पहुँचते थे।
1: भी जैसे अब जगदीश रथ यात्रा हो अभी आ रही है जो मैम,
0: हाँ हाँ,
1: इसके लिए हम लोग पथरिया जा रहे थे, कोई चलो कोई तीन जने चलेंगे, आपको टेबल चलाएंगे, कहीं आधी रास्ता में तुम चलाना, आधे में हम चलाएंगे।
0: चलिए, कितना अच्छा लगता है ना, साइकिल के पुराने दिन भी याद कर लो तो बड़ी खुशी होती है ना। चलिए, लक्ष्मण सिंह चंदेल जी, आपसे बात करके बहुत खुशी हुई, और साइकिल चला करके आप यूं ही खुश रहा कीजिए। चलिए, नमस्कार,
1: धन्यवाद।

0: हेलो
1: जी, नमस्कार
0: जी। नमस्कार,
1: परिचय दे दीजिए आपका।
0: जी मेरा नाम है देवेंद्र कुमार साहू।
1: जी
0: मैं कटनी से बोल रहा हूँ।
1: जी जी,
0: प्रदेश कटनी से।
1: जी जी जी, बहुत स्वागत है आपका।
0: मैं एक्चुअली मैम आर्मी से हूँ।
1: आर्मी में हैं तो आप लोग क्या साइकिल चलाते हैं?
0: जी साइकिलिंग करते हैं मैम।
1: अच्छा, तो साइकिल का कितना महत्व है आर्मी में?
0: साइकिलिंग एक्चुअली मैम हम लोग क्या है, जैसे ड्यूटी एरिया थोड़ा सा दूर है तो क्या है, हम लोग या तो बाइक रखते हैं या तो साइकिल वगैरह रख लेते हैं।
1: अच्छा अच्छा,
0: हाँ
1: जी। तो देवेंद्र कुमार साहू जी, ये जानना चाहेंगे कि आजकल तो बहुत एडवांस साइकिलें आने लगी हैं, तो अच्छी साइकिलें भी आ चुकी हैं, लेकिन तब भी लोगों का रुझान जो है वो साइकिल की तरफ नहीं है। तो साइकिल की तरफ रुझान जो लोगों का बढ़े, इसके लिए आप क्या कहेंगे?
0: आजकल क्या है, रूटीन भी लोगों का ऐसा हो गया है कि पैदल चलना नहीं चाहते, है ना?
1: जी जी जी।
0: तो अगर साइकिल से अगर जाते हैं तो बहुत ही पेसिंग करना है, थोड़ा सा दूर है 2-3 किलोमीटर, तो साइकिल से अपना काम हो जाएगा।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, है ना। और साथ साथ में हम तो ये कहते हैं कि साइकिल के प्रति रुझान यदि वो बढ़ा लें तो व्यायाम भी होगा, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी वो बहुत अच्छा होगा। हाँ, और पेट्रोल बचेगा, पर्यावरण की दृष्टि से बहुत अच्छा। जी जी जी जी, बहुत धन्यवाद देवेंद्र कुमार।

0: तो श्रोताओं, साइकिल कितनी उपयोगी है इस विषय पर श्रोताओं ने अपने विचार दिए। आज साइकिल चलाना कई लोग पसंद नहीं करते, वक्त की कमी की बात कहते हैं तो कभी दूरी की। लेकिन मित्रों, पर्यावरण की दृष्टि से आज के परिप्रेक्ष्य में साइकिल को अपनाना जरूरत बन गई है। आज एडवांस साइकिल मार्केट में उपलब्ध है, गियर होते हैं, उसमें बैटरी भी होती है। ये सारी सुविधाओं को यदि आप अपनाएंगे तो आपको आसानी भी रहेगी और आज के परिप्रेक्ष्य में साइकिल देश हित में साबित होगी। चाहते थे लोगों में साइकिल के प्रति जागरूकता बढ़े, तो आप कार्यक्रम समेटने की अनुमति दीजिए नीतिका वर्मा को। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे फोन इन प्रोग्राम बात आपकी गीत हमारे। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। समय है इस घंटे की खास खबरों का।
2: ब्रिटेन के विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों के मंत्री यवेद कपूर दो दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कपूर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। वो आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ भी बैठक करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और दमन का दौरा करेंगे। वे गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली, औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी सूरत में 200 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक आयोजित की जा रही है। दो दिनों तक चलने वाली इस बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि समान नागरिक संहिता को देश के 3 राज्यों ने पहले ही लागू कर दिया है। हमारी सरकार भी इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। इसके लिए गठित एक उच्च स्तरीय समिति जिला स्तर पर सभी वर्गों से उनकी राय ले रही है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते प्रदेश में प्री मॉनसून की गतिविधियां जारी है। अगले 24 घंटों के लिए 20 से अधिक जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग के अनुसार कहीं कहीं बिजली गिरने की भी आशंका है। और भारतीय पहलवान आज से मंगोलिया में शुरू हो रही 4 दिवसीय ओपन रैंकिंग सीरीज प्रतियोगिता में पुरुष फ्री स्टाइल, महिला कुश्ती और ग्रीको रोमन कुश्ती स्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत कार्यक्रम आपकी फरमाइश। सबसे पहले सुनते हैं प्यार का मौसम फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। गीत लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने, संगीत आरडी बर्मन का है और इस गीत को सुनना चाहा है पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजूरिया, गीता रानी जाजूरिया, गगनदीप बेबी आरजू जाजूरिया, महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन, मिथिलेश, तारनी, सूरज, ज्योति और बाबू रेयांश ठाकुर, छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार और झावेंद्र कुमार वर्मा। और इसी गीत को सुनना चाहा है डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये, भिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन ने।

अगले गीत की फरमाइश हमें मिली है कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार की। नाम है मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता। इसी गीत को पसंद किया है गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधड़े, आरती जोंधड़े, नेपाल पैलेस सागर से ये हमारे श्रोता हैं, तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका, रॉबिन और सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला, ठेकेदार नसीम बेगम, आयशा हदिया, अस्मा सालिया, शोएब खान, पोतरा मुस्तावा खान, राउफ भाई, शाहिद भाई और गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। हमारे ये श्रोता सुनना चाहते हैं बरसात की एक रात फिल्म का गीत, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ें। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत आर डी बर्मन का है।

तेरे मेरे सपने इस फिल्म का गीत अब आपके लिए पेश कर रहे हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। गीत लिखा है नीरज ने और धुन तैयार की है SD वर्मन ने, और इस गीत को सुनना चाहा है औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश, राशि राजेश, और इसी गीत को पसंद किया है हुलास राम कटरे, नानेश्वरी कटरे। ये हमारे श्रोता है करियादंड बालाघाट के, और सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा ने लिख भेजी है हमें इस गीत की फरमाइश। तो सुनते हैं हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद तेरे मेरे सपने फिल्म से।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में अब आपको सुनवाने जा रहे हैं आनंद बख्शी का लिखा ये गीत, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के साथ साथियों की आवाज़ है। फिल्म का नाम है जीने की राह और इस गीत को पसंद किया है लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू, सरोजनी और कुंती साहू, कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय और दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी और प्रांजल राय ने, जयबराज प्लॉट राजकोट से ये पत्र हमारे पास आया है मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जासमीन और प्रयागराज भट्ट का, और देवरी भाटापारा से ही इस गीत को पसंद करने वाले हमारे श्रोता है गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विन वर्मा और गणेश मिस्त्री।

और कार्यक्रम के अंत में सुनवाते हैं हम दोनों फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में। गीत साहिर लुधियानवी ने लिखा है और संगीत जयदेव का है। इस गीत को पसंद किया है बनिया पारा धमतरी से रामचंद माखीजा, काफिर भाई, श्रीमती सविता, बेबी रचाती और पूरा माखीजा परिवार। साथ ही साथ इसे पसंद किया है इस्लामपुर सनावत से मोहम्मद सादिक, मोहम्मद शाकिर, मुश्ताक अहमद, बेबी मंतसा, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। और बेरड़ी से ये हमारे श्रोता ने पत्र भेजा है हुकुम करमकर, सुनीता करमकर, हार्दिक करमकर, प्राची और तनु करमकर ने। इन सभी श्रोताओं की पसंद पर सुनते हैं हम दोनों फिल्म का ये गीत।

आप सुन रहे हैं आपकी आकाशवाणी, ये प्रसारण हो रहा है आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत अनपढ़ फिल्म से हमने लिया है, जिसे गाया लता मंगेशकर ने। राजा मेहंदी अली खान ने इस गीत को लिखा, संगीत मदन मोहन का।

हम दोनों फिल्में अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले को। गीत लिखा था साहिल लुधियानवी ने, संगीत जयदेव का था। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। हम कुछ और फिल्मी नगमे आपको सुनवाएंगे आज दोपहर 2:30 बजे। कार्यक्रम होगा आपकी फरमाइश, सुनना ना भूलें।

0: मीडिया वेव 182.3 मीटर्स और डीटीएच के ऑडियो चैनल, साथ ही साथ न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। दोपहर के 2:10 होने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता हो रही है। 5 दिन की भारत यात्रा पर आई रोड्रिगेज के साथ विदेश, अर्थव्यवस्था और विज्ञान मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी है। इस बातचीत में ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, फार्मास्यूटिकल और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए रास्ते तलाशे जाएंगे। भारतीय सार्वजनिक उपक्रम पहले से ही वेनेजुएला के ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण निवेश कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और दमन का दौरा करेंगे। सूरत में वे सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और 200 बिस्तरों वाले ESIC अस्पताल का उद्घाटन भी करेंगे। इसके अलावा श्री मोदी शाम को दमन में करीब 3,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, जिनमें स्वास्थ्य, पर्यटन और हवाई संपर्क से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव शनिवार को पश्चिम बंगाल जाएंगे और रुकी हुई रेल परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। वे मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ नबान सभागार में उच्च स्तरीय बैठक करेंगे, जिसमें पूर्वी रेलवे, दक्षिण पूर्वी रेलवे और मेट्रो रेलवे के महाप्रबंधक भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में NDA सरकार के 12 साल पूरे होने के मौके पर रायसेन जिले की प्रेमा मेहरा ने अपनी कहानी साझा की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि
1: मैं सन 2017 से ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी। आजीविका मिशन से जुड़ने से पहले मेरे घर की परिस्थिति बहुत ही बेकार थी, मगर आजीविका मिशन से जुड़ने के बाद मैंने अपनी बचत जमा करना सीखा। इसके अलावा ग्रामीण आजीविका मिशन ने मुझे भी काम दिया। मैंने CRP का काम करा। इसके अलावा मैं बैंक सखी का काम भी करती थी और आज मैं प्रधान NGO में बाड़ी ब्लॉक में आजीविका सहायक के रूप में कार्य कर रही हूँ। मेरी मासिक आय 18,000 रुपये है और मैं खुश होकर कह सकती हूँ कि मैं एक लखपति दीदी हूँ।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने

ने काफिले में इलेक्ट्रिक वाहन को शामिल कर लिया है। कल उन्होंने मुख्यमंत्री निवास से स्टेट हैंगर तक पहली बार ईवी से यात्रा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईंधन बचत के संदेश को अमल में लाते हुए वे अब भोपाल में नियमित रूप से इलेक्ट्रिक वाहन से ही चलेंगे। उन्होंने कहा कि ईवी से वायु प्रदूषण नहीं होता, रख रखाव सस्ता है और ये आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ भविष्य की दिशा में एक अहम कदम है। प्रदेश सरकार ने ग्रामीण नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए स्वामित्व अधिकार अभिलेखों के पंजीयन पर लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी और पंजीयन शुल्क पूरी तरह से माफ कर दिया है। 3,800 करोड़ रुपये का यह पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी। प्रदेश में अब तक 68 लाख से अधिक अधिकार अभिलेख तैयार किए जा चुके हैं और लगभग 98% ड्रोन सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है। भोपाल के बरकतुल्ला विश्वविद्यालय का नाम बदलकर वागदेवी भोजपाल विश्वविद्यालय करने की तैयारी एक कदम और आगे बढ़ गई है। कल विश्वविद्यालय की कार्य परिषद ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। अब यह राज्यपाल मंगूभाई पटेल के पास भेज दिया गया है। हालांकि कार्य परिषद सदस्य डॉ. ताहिरा अब्बासी ने इसका विरोध करते हुए कहा कि यह नाम स्वतंत्रता सेनानी बरकतुल्ला भोपाली की स्मृति से जुड़ा है और इसे बदला जाना उचित नहीं है। नाम परिवर्तन के लिए अभी विधानसभा में संशोधन विधेयक पारित कराना और राज्यपाल की मंजूरी लेना जरूरी होगा। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियां तेज हो गई हैं। आज सुबह भोपाल, रायसेन, सीहोर और नर्मदापुरम में बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 39 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जबकि नीमच, श्योपुर, मुरैना, टीकमगढ़ और छतरपुर में ओलावृष्टि की चेतावनी भी है। वहीं कल रतलाम 42 डिग्री के साथ प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा। मानसून इस बार सामान्य से देरी से यानी 20 जून के बाद प्रदेश में दाखिल हो सकता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नीमच के ग्राम खातीखेड़ा में आयोजित जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर में कलेक्टर ने ग्रामीणों से रूबरू होकर समस्याओं के निराकरण के निर्देश दिए। जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून को मुख्य आयोजन गैरिसन ग्राउंड ग्वारीघाट स्थित आयुर्वेदिक कॉलेज मैदान पर किया जाएगा। शिवपुरी में इफ्को कंपनी की डीएपी रैक के माध्यम से 1,370 मीट्रिक टन डीएपी उपलब्ध हुई है, जिसका ई विकास प्रणाली से वितरण किया जाएगा। आगरमालवा में कल 2 नवीन वाहनों को पुलिस के बेड़े में शामिल किया गया। इस मौके पर एसपी दिलीप कुमार सोनी ने कहा कि इससे जिले में नियमित गश्त, विशेष अभियान एवं आपात स्थितियों में पुलिस की त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता मजबूत होगी। झाबुआ में जलगंगा संवर्धन अभियान के दूसरे चरण में जल स्रोत सेवा समागम के तहत प्रस्फुटन ग्राम भोयरा में सुरक्षित जल समृद्ध कल विषय पर जल चौपाल का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता, ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार और निवेश प्रमुख मुद्दे। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उत्तर पूर्वी परिषद की बैठक शिलांग में जारी। पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे का विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा। दिग्गज फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी का निधन। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर सैन्य कार्रवाई के विरोध में एकजुट। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने प्रस्ताव पारित किया। केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून शुरू और पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप अहमदाबाद में शुरू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ व्यापक चर्चा की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा, ऑटोमोबाइल आदि क्षेत्रों में सहयोग के नए रास्ते तलाशे। मंत्रालय ने कहा कि दोनों नेताओं ने आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने तथा वैश्विक दक्षिण के हितों को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। सुश्री रोड्रिगेज कल 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। उनके साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था और वित्त, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है। इससे पहले सुश्री रोड्रिगेज ने विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स और

ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़े कई स्थलों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं का जायजा लेना तथा सहयोग के अवसरों का पता लगाना है। भारत ऊर्जा और निवेश के क्षेत्रों में वेनेजुएला का एक महत्वपूर्ण साझेदार रहा है। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भी आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगी। सुश्री कूपर आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगी। वे दो दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनकी यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। दो दिन की बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और दमन की यात्रा पर रहेंगे। वे गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। उत्तर पूर्वी परिषद NEC का 73वां पूर्ण सत्र मेघालय के शिलंग में चल रहा है। गृहमंत्री अमित शाह सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं। ये पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक है। बैठक में पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे के विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा हो रही है। बैठक

0: मजूमदार, गृह सचिव गोविंद मोहन और मंत्रालय के सचिव संजय जाजू उपस्थित हैं। इसके अलावा मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड तथा सिक्किम के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हैं। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने बैठक को महत्वपूर्ण बताया।
1: ये बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है नॉर्थ ईस्ट के लिए। इसके द्वारा है बहुत सारे स्कीम के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पर डिसाइड होता है। और 2014 के बाद तो नॉर्थ ईस्ट का जो भी फंड है, डेवलपमेंट फंड है, इसके द्वारा बहुत सारे योजना शुरू हो चुका है, काम हो रहा है।
0: उत्तर पूर्वी परिषद पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए सर्वोच्च क्षेत्रीय योजना निकाय के रूप में कार्य करती है। ये क्षेत्र में समन्वित विकास को बढ़ावा देने और सहकारी संघवाद को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितेन्द्र प्रसाद ने कहा है कि वैश्विक व्यवधानों और आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत वैश्विक बाजार में अन्य देशों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। श्री प्रसाद ने नई दिल्ली में ग्लोबल बिजनेस रिसर्च कॉन्फ्रेंस GBRC के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने हाल ही में कई देशों के साथ सम्पन्न हुए मुक्त व्यापार समझौतों की सराहना भी की। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान द्वारा आयोजित GBRC का उद्देश्य वैश्विक व्यापार से जुड़े विषयों और चुनौतियों पर शोध के लिए चर्चा का अवसर प्रदान करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गुजरात पुलिस ने राज्य में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन डेल्टा हंट की शुरुआत की है। इसके तहत पिछले 24 वर्षों में गुजरात में अवैध रूप से रह रहे 424 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 782 से अधिक संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ जारी है। ये अभियान राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माने जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ शुरू किया गया था। गांधीनगर में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि राज्य की सुरक्षा को खतरे में डालने वाले प्रत्येक घुसपैठिए का पता लगाया जाएगा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उन्हें बांग्लादेश वापस भेज दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासियों को आश्रय, रोजगार या सहायता प्रदान करके कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
2: 6,200 से ज्यादा लोगों की तहकीकात की जा रही है, इनमें से 362 लोग अभी तक बांग्लादेशी पाए गए हैं। साथ ही जिन लोगों ने उनको रहने के लिए घर दिया होगा और जिन्होंने उनको नौकरी दी है लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजे होंगे, उन पे भी एक कड़े कदम उठाने के लिए एक पूरी टीम इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। गुजरात पुलिस घर घर और गांव गांव तक ये तहकीकात चालू रखेगी।
0: बिहार के मुजफ्फरपुर में एक निजी अस्पताल में भीषण आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए हैं। ये घटना कल रात ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में हुई। गंभीर मरीजों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। मुजफ्फरपुर के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटना की जांच जारी है।
3: ICU 14 फ्लोर पर है, उसी में आग लगने की बात है शॉर्ट सर्किट से। कुल 13 से 15 लोग भर्ती थे, लेकिन 3 लोगों की मृत्यु कंफर्म है, बाकी लोग अन्य जगह भेजा गया अलग अलग अस्पताल में इलाज के लिए। तो मृत्यु का आंकड़ा बढ़ सकता है हालांकि, लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, हम लोग जाँच कर रहे हैं।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मालवीय नगर अग्निकांड के घायलों से मिलने आज साकेत के निजी अस्पताल पहुंची। मुख्यमंत्री ने घायलों तथा उनके परिजनों से बातचीत की और अधिकारियों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए। श्रीमती गुप्ता ने प्रत्येक मृतक के परिजन को 10-10 लाख रुपये और गंभीर रूप से घायलों को 5-5 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि घायलों के चिकित्सा खर्च की व्यवस्था की जाएगी। मालवीय नगर में कल एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मृत्यु हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक हैं। वयोवृद्ध निर्माता और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के पूर्व अध्यक्ष पहलाज निहलानी का आज मुंबई में निधन हो गया। वे 76 वर्ष के थे। 10 जनवरी 1950 को जन्मे निहलानी ने 1982 में आई फिल्म हथकड़ी से निर्माता के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। उन्हें 1986 में आई फिल्म इल्जाम से अभिनेता गोविंदा को पहला बड़ा ब्रेक देने का श्रेय दिया जाता है। जनवरी 2015 में निहलानी को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का अध्यक्ष

0: किया गया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने सख्त नए दिशा निर्देश लागू किए, जिनके तहत ए रेटिंग वाली फिल्मों में भी कुछ अपशब्दों पर प्रतिबंध लगा दिया गया और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने या हिंसा दर्शाने वाली सामग्री को सीमित करने का प्रयास किया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ आगे की सैन्य कार्रवाई से रोकने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है। ये चौथी बार है जब प्रतिनिधि सभा ने ट्रंप की युद्ध संबंधी शक्तियों को सीमित करने की कोशिश की है। आलोचकों का कहना है कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को अमरीकी संसद की मंजूरी मौसम विभाग ने आज केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगमन की पुष्टि की है। मॉनसून 3 दिन देर से आया है। 1 जून से केरलम में मॉनसून के आने की संभावना थी। विभाग ने 9 जून तक केरलम और माहे में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम से हमारी संवाददाता ने बताया है कि कई जिलों में तेज बारिश हो रही है।
1: केरलम के 6 जिलों में आज कुछ जगहों पर तेज बारिश की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के कई हिस्सों में बारिश हो रही है और आज केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के पहुंचने की संभावना है। केरलम में कई जगहों पर रात से अब तक लगभग 5 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। केरलम से स्मिथ एम पलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
0: मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के दौरान उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी भारी वर्षा का अनुमान लगाया है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों के दौरान लक्षद्वीप, तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी इसी तरह की स्थिति का अनुमान व्यक्त किया है। दिन के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कुछ स्थानों पर आंधी की प्रबल संभावना है। गुजरात के अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के 1st संस्करण का शुभारंभ हुआ, जो वैश्विक खेलों में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को इस भव्य आयोजन में वर्चुअल रूप से शामिल होकर अपनी शुभकामनाएं देंगे। पूरे विश्व से योग प्रेमी और एथलीट प्रतियोगिता के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि चैंपियनशिप का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहुखेल प्रतियोगिताओं को योग में शामिल करना है।
2: वर्ल्ड योगासन के तत्वाधान में योगासन भारत द्वारा आयोजित इस ऐतिहासिक आयोजन का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिता में योग को शामिल करने का मार्ग प्रशस्त करना है। यह पहल वैश्विक स्तर पर योग और कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ साथ योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में बढ़ावा देने का एक प्रयास है। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: इस बीच प्रधानमंत्री ने देशवासियों से नियमित रूप से योग करने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एक संस्कृत श्लोक साझा करते हुए उन्होंने कहा कि योग के नियमित अभ्यास से शरीर स्वस्थ और मन शांत रहता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाकर संतुलित, स्वस्थ और ऊर्जावान जीवन जिया जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और लाओस के बीच गहरे सभ्यतागत संबंध हैं और ये बौद्ध धर्म तथा रामायण की साझा विरासत में दिखाई देते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में लाओस के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री थोंग सावन फोम विहाने से भेंट की। इस दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि इस वर्ष दोनों देश राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, जो द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में दोपहर के कारोबार में आज गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 149 अंक गिरकर 74,197 पर, जबकि निफ्टी 34 अंक फिसलकर 30,372 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता, ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश प्रमुख मुद्दे। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उत्तर पूर्वी परिषद की बैठक शिलांग में जारी। पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे का विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा। दिग्गज फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी

0: रूहानी का निधन। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर सैन्य कार्रवाई के विरोध में एकजुट, अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने प्रस्ताव पारित किया। केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून शुरू और अहमदाबाद में पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश सुनने वाले सभी श्रोताओं को छाया पाठक का नमस्कार। आपकी पसंद का पहला गीत हम लेकर हाजिर हैं हीरो पंती फिल्म से। मुस्तफा जहीद ने इस फिल्म को गाया है। कौशर मुनीर की शब्द रचना, संगीत मुस्तफा जहीद का। सुना चाहा है बठिंडा पंजाब से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी जेएस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार ने। पटेल नगर मलोट पंजाब से पत्राया। रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी, गगनदीप और बेबी आरजू जाजोरिया का।

अगला गीत हमने लिया सत्यमेव जयते फिल्म से। इसे सुनना चाहा है कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी दुबिहा नेवादा गाजीपुर से पतराया प्रतीक राय, रोशनी प्रांजल का। इसी गीत की फरमाइश भेजी आनंद कुमार कामले, रेखा राखी पारस तपस्या और करिश्मा कामले ने। सत्यमेव जयते के इस फिल्म के इस गीत को गाया है जरा के खान ने। तनिष्क बागची का गीत और संगीत है, तो आइए सुनते हैं ये गाना।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं आपकी फरमाइश कार्यक्रम का अगला गीत सुना जा है ताज मोहम्मद अंसारी गुलाब साविर राही महराज जहां आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ये फरमाइश करता है आनंद कुमार कामले रेखा कामले राखी और करिश्मा गौरी नगर इंदौर से सपना संगीता रोड इंदौर से ही पत्र है लाल फतेह चंदानी लीला फतेह चंदानी संगीता सुनीता पिंकेश साक्षी मनन और तानिया का इन सभी श्रोताओं ने सुना चाहा है उदित नारायण और पूर्णिमा का गाया हुआ समीर का लिखा आनंद बख्शी का संगीतबद्ध किया माफ कीजिए आनंद मिलिंद का संगीतबद्ध किया हीरो नंबर 1 फिल्म का गीत

गीत संगीत और गायक कलाकार हैं करण औजला। फिल्म का नाम बैड न्यूज़। इस गीत को सुनना चाहा बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ से रामचंद माखीजा काफिर शंकरलाल राहुल कुमार सविता स्वाति एवं पूरा माखीजा परिवार। औरंगाबाद से पत्राया राजेश साबले राजदीप राजेश राजी राशि और शीतल राजेश का।

0: एक लड़की थी दीवानी सी,
1: एक लड़के पे वो मरती थी। अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं आपकी फरमाइश का, मोहब्बतें फिल्म से, जिसे गाया लता मंगेशकर, उदित नारायण और साथियों ने। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत जतिन ललित का है। सुनना चाहा है नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नूपुर, ऋषिका, रॉबिन। आदर्श नगर मलोट पंजाब से पत्र आया राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश और सौरभ शर्मा का। तो आइए आपको सुनवाते हैं इन सभी श्रोताओं की पसंद का, मोहब्बतें फिल्म का गाना।

कार्यक्रम का अंतिम गीत तुम मिले फिल्म से है, आवाज़ है के की। सईद कादरी के बोल हैं, संगीत प्रीतम का है। सुना चाहा है प्रमिलागंज आलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से, बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया, शोभा, राहुल, ज्योति, अतुल, प्रियांश और ऋषि वर्मा ने। भाटापारा दत्रेंगी छत्तीसगढ़ से पत्राया, द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक, झावेंद्र कुमार। यहीं से डोमन ठाकुर, सुमन, मिथिलेश, सूरज, ज्योति और रियांश का।

0: केके की आवाज़ में गाए तुम मिले फिल्म के इस गाने के साथ ही आपकी फरमाइश यहीं समाप्त करने की छाया पाठक को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता हो रही है। 5 दिन की भारत यात्रा पर आई रॉड्रिगेज के साथ विदेश, अर्थव्यवस्था और विज्ञान मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और दमन का दौरा करेंगे। सूरत में वे सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और 200 बिस्तरों वाले ESIC अस्पताल का उद्घाटन भी करेंगे। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव शनिवार को पश्चिम बंगाल जाएंगे और रुकी हुई रेल परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। वे मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ नबान सभागार में उच्च स्तरीय बैठक करेंगे, जिसमें पूर्वी रेलवे, दक्षिण पूर्वी रेलवे और मेट्रो रेलवे के महाप्रबंधक भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने काफिले में इलेक्ट्रिक वाहन को शामिल कर लिया है। कल उन्होंने मुख्यमंत्री निवास से स्टेट हैंगर तक पहली बार EV से यात्रा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईंधन बचत के संदेश को अमल में लाते हुए वे अब भोपाल में नियमित रूप से इलेक्ट्रिक वाहन से ही चलेंगे। प्रदेश सरकार ने ग्रामीण नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए स्वामित्व अधिकार अभिलेखों के पंजीयन पर लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी और पंजीयन शुल्क को पूरी तरह से माफ कर दिया है। 3,800 करोड़ रुपए का यह पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी। और प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियां तेज हो गई हैं। आज सुबह भोपाल, रायसेन, सीहोर और नर्मदापुरम में बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 39 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। आइए आपको जानकारी दे दें आज शाम प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। शाम 5:02 पर युववाणी कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति रहेगा। फिल्म संगीत का आनंद आप उठा सकते हैं आज शाम 5:33 और शाम 6:30 पर। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुन सकते हैं शाम 6:00। आकाशवाणी भोपाल से ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम होगा 7:21 पर, जिसमें आज आप सुन सकते हैं ग्रीष्मकालीन अवकाश में बच्चों के समय का सदुपयोग, इस पर सामयिक चर्चा। इसके अलावा बुंदेली समाचार और लोकगीत। समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष स्वास्थ्य सेवा, इसका प्रसारण होगा आज रात 8:00। कुछ और फिल्मी नगमे हम आपको सुनाएंगे 8:35 पर और रात 9:30। प्रादेशिक लोक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम रात 10:00 हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। ये थे आज शाम प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। इस समय दोपहर के 3:42 हुए हैं। अब मीडियम वेव पर हमारा ट्रांसमिशन कुछ देर के लिए बंद होता है। शाम 5:00 से आप हमारे कार्यक्रम पुनः मीडियम वेव 188.32 पर सुन सकेंगे। इस बीच कार्यक्रम DTH पर जारी है। आप सुन रहे हैं DTH का प्रसारण।

लीजिए अब सुनिए लोक संगीत, कलाकार है संगीता उपाध्याय। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति है। पहले सुनते हैं ईश्वरी चौघड़िया।

लोक संगीत में अभी आप सुन रहे थे संगीता उपाध्याय के गाए लोक संगीत। आप सुन रहे हैं डीटीएच का प्रसारण। लीजिए अब सुनिए सुगम संगीत। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति है। कलाकार है नंद कुमार जैन। पहले सुनते हैं इनका गाया ये भजन।

सुगम संगीत में अभी आप सुन रहे थे नंद कुमार जैन को। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति था। आप सुन रहे हैं डीटीएच का प्रसारण। लीजिए अब सुनिए चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत रॉकी और रानी की प्रेम कहानी फिल्म से है। अरिजीत सिंह, जोनिता गांधी और रणवीर सिंह की आवाज़ें हैं। अमिताभ भट्टाचार्य के बोल हैं, संगीत प्रीतम का।

डीटीएच पर आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। अगला गीत सिटी लाइट्स फिल्म से है, अरिजीत सिंह की आवाज़ है। रश्मि सिंह ने इस गीत को लिखा, संगीत जीत गांगुली का।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता हो रही है। 5 दिन की यह भारत यात्रा पर आई रोड्रिगेज के साथ विदेश, अर्थव्यवस्था और विज्ञान मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और दमन का दौरा करेंगे। सूरत में वे सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और 200 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल का उद्घाटन भी करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज सुबह नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत वेनेजुएला संबंधों के प्रति उनकी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता का भारत सम्मान करता है। विदेश मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने काफिले में इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल कर लिया है। कल उन्होंने मुख्यमंत्री निवास से स्टेट हैंगर तक पहली बार ईवी से यात्रा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के ईंधन बचत के संदेश को अमल में लाते हुए वे अब भोपाल में नियमित रूप से इलेक्ट्रिक वाहन से ही चलेंगे। प्रदेश सरकार ने ग्रामीण नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए स्वामित्व अधिकार अभिलेखों के पंजीयन पर लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी और पंजीयन शुल्क को पूरी तरह से माफ कर दिया है। 3,800 करोड़ रुपए का यह पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी। और मौसम में प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियां तेज हो गई हैं। आज सुबह भोपाल, रायसेन, सीहोर और नर्मदापुरम में बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 39 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: संदेश टू सोल्जर्स।

0: भारत के वीर सैनिक सीमाओं की रक्षा और देश की सुरक्षा में सदैव अपने कर्तव्य समर्पण और देश सेवा में निष्ठा से तत्पर रहते ही हैं। साथ ही ग्रीन इनिशिएटिव से लेकर मिशन लाइफ तक जंगल पहाड़ नदी और आकाश की भी हिफाजत में जुटे हैं। प्रोटेक्टिंग द नेशन मीन्स प्रोटेक्टिंग नेचर, यानी देश की रक्षा प्रकृति की रक्षा। इंडियन आर्मी के ग्रीन इनिशिएटिव और मिशन लाइफ से कैंटोनमेंट बन रहे हैं जीरो वेस्ट जोन, सोलर पावर से चल रहे हैं कैंप और प्लांटेशन ड्राइव से हर सोल्जर बन रहा है एक इको वॉरियर। ये है एक वेल ऑर्गेनाइज्ड डिसिप्लिन्ड मिशन जिसके लिए हमारी सेना जानी जाती है। और इस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को ये इनिशिएटिव और भी सशक्त और भी स्पेशल बन रहा है। भारत की धरती सलाम कर रही है अपने सपूतों को, अपने सैनिकों को। 102.6 देश के नंबर 1 रेडियो आपके अपने आकाशवाणी रेनबो पर आज का विशेष संदेश टू सोल्जर्स भारतीय सेना के ग्रीन इनिशिएटिव और मिशन लाइफ को समर्पित है, जिसे बड़े दिल से बनाया है टीम रेनबो ने। और आज का ये स्पेशल एपिसोड आप सुन रहे हैं शाहिद के साथ, और हमारे ओबी टीम मेंबर हैं वैभव श्रीवास्तव। और हमारी रेनबो टीम पहुंची हुई है इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आर्मी कैंप दिल्ली में। तो प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं कमांडेंट गौरांग जैन के संदेश से।
1: तो आज मौजूद है आर्मी हेडक्वार्टर्स कैंप में और हम बात करने वाले हैं यहाँ के कमांडेंट कर्नल गौरांग जैन से। सर, वेलकम टू द शो।
2: थैंक यू, और आपका यहाँ कैंप में आने के लिए और एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने के लिए धन्यवाद।
1: सर, जब लोग आर्मी के बारे में सोचते हैं, हम बात करते हैं इंडियन आर्मी की खासकर, तो हमारे जहन में आता है डिसिप्लिन, ड्रिल्स, मिलिट्री ऑपरेशंस, कोवर्ट ऑपरेशंस और ये सब चीजें। तो सर, बॉर्डर्स को सिक्योर करने से लेकर पर्यावरण को सिक्योर करने तक ये बदलाव की शुरुआत कैसे हुई, प्लीज हमें बताइए।
2: देखिए, जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो ये सिर्फ बॉर्डर की हिफाजत के बारे में नहीं है, इसमें हमारी मिट्टी, जल, वायु सभी इस सुरक्षा के उसमें आते हैं। ये पर्यावरण संरक्षक आज सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक ये हमारे आवश्यकता बन चुकी है।

0: यह सिर्फ हमारे देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व इस समस्या से जूझ रहा है। फौज का और पर्यावरण का हमेशा से एक अटूट रिश्ता रहा है। आप जानते हैं कि कैंटोनमेंट हमेशा से ही हरे भरे मिलेंगे आपको, और जो हमारे सैनिक हैं इनमें साफ सफाई रखना, पेड़ पौधे लगाना, ये उनके DNA में है। लेकिन आज सिर्फ साफ सफाई से या पेड़ पौधे लगाने से नहीं होगा, हमें एक पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनानी पड़ेगी और हमें कल्चरली अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए हमने मिशन ग्रीन के तहत हमारा डीकार्बनाइजेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अपक्षित मुक्त सैन्य भारत अभियान, जैसे कि जीरो वेस्ट इकोसिस्टम्स को हम बोलते हैं, वो चलाया जा रहा है और ताकि हम आने वाली पीढ़ी को इसको सुरक्षित कर सकें।
1: सर, क्या जीरो वेस्ट मॉडल एक्चुअल में मुमकिन है? क्या इसके बारे में आप थोड़ा विस्तार से हमें बता सकते हैं प्लीज?
0: जी हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है और इसके लिए बस हमें थोड़ा माइंडसेट चेंज करने की जरूरत होती है। जीरो वेस्ट मॉडल के लिए कुछ मापदंड होते हैं, जैसे कि कोई भी वेस्ट हमारा लैंडफिल में ना जाए, वेस्ट को सोर्स पे ही 100% हम सेग्रीगेट करें, जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको 100% हम इन हाउस कंपोस्ट कर सकें, कोई भी वेस्ट हम ओपन बर्निंग में ना करें या इंसिनरेशन ना करा जाए इत्यादि। जैसे मैंने बताया कि अगर ये अपनाना है तो हमें सबसे पहले अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, वेस्ट को वेस्ट ना समझें बल्कि उसको हम रिसोर्स समझें। जिस दिन हमने वेस्ट को रिसोर्स समझ लिया, हम उसको फेंकेंगे नहीं, क्योंकि रिसोर्स को हम रखते हैं और वेस्ट को हम फेंकते हैं। जैसे कि अगर आप कोई भी सामान आप देखेंगे कि उसको हमने रिसोर्स की तरह समझ के रखा है, तो या तो वो खुद ही हम यूज कर सकते हैं या कोई और, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो वो रिसाइकल होके कहीं ना कहीं किसी के इस्तेमाल में आ ही जाएगा।
1: सर, इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स कैंप किस प्रकार से जीरो वेस्ट में तब्दील किया गया, क्या इस पूरी प्रक्रिया के बारे में आप हमें समझा सकते हैं प्लीज?
0: जी बिल्कुल, आज जैसा आप जानते हैं पहले जितना भी वेस्ट होता था ये इकट्ठा होकर म्यूनिसिपैलिटी लैंडफिल्स में जाया जाता था, जो फिर कूड़े का पहाड़ बन गया। सो इसके लिए हमने जीरो वेस्ट के लिए सिस्टम तैयार किया। गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अनुसार वेस्ट को सोर्स पे ही 4 तरीके से हम सेग्रीगेट करते हैं, जैसे ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट, स्पेशल केयर वेस्ट और सैनिटरी वेस्ट। इसके अलावा हमने कोलैबोरेट किया है कई NGO से या संस्थाओं से, जो कि रिसाइकल हमें इन साइंटिफिक तरीके से इसको कर सके। इसके अलावा कई उपकरण भी लगाए गए हैं। तो सब करने से इसका नतीजा ये हो रहा है कि जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है वो अब 100% हम इन हाउस यानी कि कैंप में ही कंपोस्ट कर रहे हैं या फिर उसको हम बायोगैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, जैसे कि आपका किचन का वेस्ट हो गया या हॉर्टिकल्चर वेस्ट। जो ड्राई वेस्ट है जैसे पेपर वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, उनको हम इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करने के बाद इन संस्थाओं को देते हैं जो वहां पे इनको रिसाइकिल करके कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स में तब्दील करते हैं, और इसी तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का करते हैं। इसके अलावा अवेयरनेस के लिए हमने कुछ रैक्स लगाए गए जिसको हम वॉल ऑफ काइंडनेस कहते हैं, ताकि जो सामान काम का है लेकिन शायद मेरे काम का नहीं है उसको रीयूज करने के लिए लोग अपना वहां पे उसको डोनेट करते हैं, जैसे किताब, बुक्स, शूज, बच्चों के खिलौने, बर्तन, वो डोनेट करते हैं और जिसको जरूरत है वो उसको वहां से ले लेता है। सो इन सब छोटी लेकिन महत्वपूर्ण जो हमने चीजें शुरू करी हैं यहाँ पे, इससे पिछले कुछ ही महीने में सिर्फ कैंप ने करीब 50 टन से भी ज्यादा वेस्ट को रिसाइकिल कर दिया गया है और लैंडफिल जाने से बचाया गया है, और इसी तरीके से बाकी कई यूनिट और हमारे स्टेशन अब जीरो वेस्ट में इस तरीके से तब्दील हो रहे हैं।
1: कहना होगा कि इनिशिएटिव्स वाकई कमाल के हैं और आई होप कि आर्मी से इंस्पिरेशन लेके बाकी लोग भी इनिशिएटिव्स करें। सर, क्या ये अभियान कैंप को साफ रखने और कचरे को लैंडफिल में जाने से रोकने के लिए है या इसको और आगे बढ़ाने के लिए, आपने क्या सोचा है या क्या कदम उठाए हैं?
0: देखिए, साफ सफाई रखना और लैंडफिल में कचरा ना जाने के लिए ये एक छोटा सा पार्ट है ओवरऑल जब हम पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं, तो क्योंकि इसमें और भी कई चीज शामिल हो जाती है, जैसे कि हमारे नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व करना। आपको पता है नेचुरल रिसोर्स एक लिमिटेड क्वांटिटी में है, चाहे हम पानी की बात करें चाहे हम फ्यूल की बात करें, तो उनको कंजर्व करना। इसके अलावा अवेयरनेस कैंपेन करना, वृक्ष लगाना, ये भी सारा हमारे पूरे पर्यावरण की तरफ आता है और इन सब चीजों पे भी हम काफी काम कर रहे हैं। अगर मैं एनर्जी कंजर्वेशन पे आऊं, सबसे पहले फ्यूल कंजर्वेशन, तो उसमें ईवाइजेशन यानी कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। कैंप में ही आज की डेट में 25 से ज्यादा व्हीकल हमारे इलेक्ट्रिक हो रखे हैं, जिसमें हमारे सैनिक यहाँ पे ऑफिस में जा रहे हैं। सोलराइजेशन का काफी काम चल रहा है जिससे कि बिजली की खपत कम हो रही है। मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि जो हमारा थल सेना भवन बन रहा है वो GRE 4 कंप्लाइंट है और एक इको फ्रेंडली मटेरियल से बनाया जा रहा है, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंजर्व करने के लिए करीब 100 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, सेंसर लाइट्स लगाई जा रही हैं, और वाटर कंजर्व करने के लिए वहां पे इंटीग्रेटेड एसटीपी प्लांट, अनेकों वाटर रिसाइकलिंग पिट्स लगा रहे हैं, और यही पानी इस्तेमाल किया जाएगा वहां के एबोरिकल्चर को मेंटेन करने के लिए। इसके अलावा वहां पे मेगा कंपोस्ट प्लांट्स लगाए जा रहे हैं।

0: हैं जो कि करीब 1500 केजी तक का कंपोस्ट एक दिन में वहाँ पे कर सकते हैं। सो जब हम बात करते हैं पर्यावरण संरक्षक की, तो वो सिर्फ एक पहलू वेस्ट मैनेजमेंट नहीं है, बल्कि पूरा एक होलिस्टिक अप्रोच आती है जो कि एज एन आर्मी और एज अ कैंप हम इसको अपना रहे हैं।
1: आपने एक बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया, होलिस्टिक अप्रोच। मैं पूछूंगा कि इन सभी इनिशिएटिव्स का अल्टीमेट गोल क्या है आपके हिसाब से?
0: देखिए, अल्टीमेट गोल तो यही है कि हम पर्यावरण को किस तरीके से सुरक्षित कर सके, लेकिन साथ में कैसे हम एक डीप रूटेड कल्चरल चेंज यानी कि सांस्कृतिक बदलाव ला सके। हमारे जो जवान हैं, हमारे सैनिक हैं, ये देश के हर प्रांत से आते हैं और यहाँ से उसके बाद वो देश के हर जगह यानी कि बॉर्डर एरिया से लेकर बड़े शहर तक तैनात होते हैं। अगर हम यहाँ पे एक ग्रीन सिस्टम को इंस्टीट्यूशनलाइज करते हैं तो ये हमारे एक ग्रीन एम्बेसडर्स का काम करेंगे। यहाँ पे एक जीरो वेस्ट इकोसिस्टम में है, डेली उठ के ये अपने वेस्ट को सोर्स पे ही सेग्रीगेट कर रहे हैं, प्लांटेशन ड्राइव में हिस्सा ले रहे हैं, एक पेड़ माँ के नाम के जैसे अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। तो जब ये वो यहाँ पे इस चीज को हिस्सा ले रहे हैं तो ये अब एक इनकी जीवन शैली और एक इनकी आदत बन चुकी है। जब यहाँ से ये पोस्टिंग जाएंगे कहीं पे भी तो ये अपना माइंडसेट लेके जाएंगे और वहां पे ये सोसाइटी में इस चीज को रेप्लिकेट करेंगे और एक कल्चरल चेंज डेवलप करेंगे।
1: सर, पूछना चाहूंगा कि वाकई एक अद्भुत विजन है और हमें पूरी उम्मीद है कि पर्यावरण संरक्षण में इसमें काफी मदद मिलेगी। एंड आई होप कि ये जो इनिशिएटिव्स हैं ये रंग लाएं और जैसा आपने कहा कि एक माइंडसेट चेंज हो, ना सिर्फ फौजियों का, सोल्जर्स का, बल्कि पूरे देश का इसके थ्रू।
0: जी, यही हमारा इसके ऊपर कोशिश है, चाहे वो आर्मी हेडक्वार्टर कैंप है और या फिर पूरे इंडियन आर्मी इसके ऊपर लगी हुई है, और मुझे यकीन है कि हमें इसमें और आगे बढ़ावा मिलेगा और सोसाइटी में चेंज आएगा। मैं चाहूंगा कि आप जो हमने यहाँ पे ये चेंजेस ला रहे हैं, जो जीरो वेस्ट कैंप है, जैसे कि ये इंडियन आर्मी का ये पहला जीरो वेस्ट यूनिट है, तो मैं चाहूंगा कि आप इसको जाके देखें और ग्राउंड पे, और हमारे मेजर अजीत मोरे हैं जो इसके प्रोजेक्ट ऑफिसर हैं, तो ये आपको एक बार ग्राउंड पे पूरा इसको दिखाएंगे।
1: कमांडेंट साहब, हमसे बात करने के लिए, ग्रीन इनिशिएटिव्स के बारे में बताने के लिए और हमेशा की तरह एक सोल्जर होने के नाते हमें प्रेरणा देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: थैंक यू, इट्स अ प्लेजर टू होस्ट यू।
2: जय हिंद। तो आगे बढ़ते हुए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: देश की मिट्टी को देश के सैनिकों का सलाम है दिल से। इस गीत के बाद अब हम आज के हमारे संदेश टू सोल्जर के स्पेशल एपिसोड में आगे बढ़ते हैं और इस ग्रीन इनिशिएटिव के बारे में बात करते हैं इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स आर्मी कैंप के प्रोजेक्ट ऑफिसर मेजर अजीत मोरे से।
1: हम मौजूद हैं इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स एमओडी आर्मी कैंप के एनवायरमेंट प्रोटेक्शन जोन में और हमारे साथ फिलहाल हैं प्रोजेक्ट ऑफिसर मेजर अजीत मोरे। सर, स्वागत है शो में। हमें इस ग्रीन इनिशिएटिव के बारे में बताइए कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर किस तरीके के इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं।
2: धन्यवाद, मैं फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ। तो मैं बहुत ही गर्व के साथ आपको कहना चाहूंगा, ये हमारे पूरे भारतीय सेना का पहला जीरो वेस्ट कैंप है। भारतीय सेना की हर एक यूनिट, हर एक इकाई जहाँ भी मौजूद है वो इसी तरीके से इस चीज को इम्प्लीमेंट कर रही है। जब गवर्नमेंट के गाइडलाइंस मिले थे तो उसके अनुसार हम यहाँ पे वेस्ट को मैनेज कर रहे हैं, जैसे कि ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट, सैनिटरी वेस्ट और स्पेशल केयर वेस्ट, इसको हम यहाँ पे सेग्रीगेट करते हैं। मतलब मुद्दा यह है कि वेस्ट को उसके सोर्स पे ही 100% रिसाइकल किया जाए। साथ ही साथ में जब ऑर्गेनिक वेस्ट या वेट वेस्ट की हम बात करते हैं तो इसमें हम एरोबिक्स लगाए हैं, जिसको एरोबिक से हम खाद बनाते हैं और साथ में बायोगैस लगाया गया है। बायोगैस कंपोस्टिंग सिस्टम से हम इसको कुकिंग हाउस में इस्तेमाल करते हैं। ड्राई वेस्ट में प्लास्टिक वेस्ट, पेपर वेस्ट, ई वेस्ट और टेक्सटाइल वेस्ट लगाया गया है, तो इसके द्वारा भी हम इसको रिसाइकल्स को आगे देते हैं। एक बात मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा, वेस्ट इज नॉट अ वेस्ट, इट इंडिफिनिट रिसोर्सेस। इसको मैं एग्जांपल के तरीके से आपको समझाना चाहूंगा। समझ लो मैंने किसी भी दुकान से आज चिप्स का पैकेट खरीद लिया, चिप्स मैंने खा लिया, रैपर फेंक दिया, तो रैपर मेरे लिए तो वेस्ट है। साथ ही साथ में मैंने केला खरीद लिया, केला खा लिया और उसका छिलका फेंक दिया, दोनों चीजें मेरे लिए वेस्ट है। अगर मेरे जैसे किसी समझदार इंसान ने उसको दोनों को इकट्ठा करके फेंक दिया, वो प्लास्टिक कभी भी डिकम्पोज नहीं होगा, वो धरती की हानि पहुंचाएगा। वो केला भी मैंने कहीं और फेंक दिया, कोई उस पे फिसलेगा, गिरेगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर कोई समझदार इंसान है, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है, प्लास्टिक को मेरे प्लास्टिक वेस्ट में डाल दिया और उसको रिसाइकल कर दिया और उसको ब्यूटीफुल इक्विपमेंट्स में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। वही केले के छिलकों को हमने खाद के एरोबिक्स में डाल दिया और उससे हमने खाद बनाई जो नेचर को आगे प्रोटेक्ट करती है। तो मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा, वेस्ट इज द ओनली वेस्ट इफ यू वेस्ट इट।
1: थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए।
2: धन्यवाद।
0: हमने सुना कैसे पूरी डिटेल में मेजर अजीत मोरे ने ग्रीन इनिशिएटिव और मिशन लाइफ के बारे में बताया। अब हम आगे बढ़ेंगे और एक एक करके जानते हैं पूरे मिशन के बारे में। तो सबसे पहले बात एरोबिन कंपोस्टिंग की, जिसके बारे में बता रहे हैं हवलदार राजकुमार।
1: तो बात चल रही थी आर्मी के ग्रीन इनिशिएटिव्स की। हम यहाँ फिलहाल मौजूद हैं एरोबिन कंपोस्टिंग सिस्टम के पास और हमारे साथ मौजूद हैं हवलदार राजकुमार जी। सर, हमें एरोबिन कंपोस्टिंग सिस्टम के बारे में प्लीज बताइए।
3: मैं आपको ऑर्गेनिक यानी के बेड बेस्ड के बारे में बताऊंगा। किचन और हॉर्टिकल्चर को मैनेज बेस्ड करने के लिए हमने कुक हाउस में एरोबिन सिस्टम और बायोगैस प्लांट को इंस्टॉल किया है। एरोबिन के अंदर हम वेजिटेबल बेस्ड, फ्रूट बेस्ड, सूखी पत्तियां और बिना पका हुआ किचन वेस्ट को डालते हैं, जो कि 20 से 30 दिन में रिसाइकल होकर खाद बन जाती है। इस खाद को हम एरोबिन से निकालते हैं, जो कि 2 से 3 दिन सूखने के बाद इसको हम एक अच्छी क्वालिटी में खाद दर्शाई गई है। पूरी तरह से खाद तैयार होने के बाद इस तरह से खाद निकलती है, इसको आप पैकिंग भी कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी पूरी तरह से पर्यावरण फ्रेंडली है, क्योंकि इसमें ना ही बिजली और ना ही किसी केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। कैंप में अब तक सिर्फ कुछ ही महीनों के अंदर इसे हमने 750 केजी खाद को तैयार किया है।

0: कुमार जी, इसकी कैपेसिटी कितनी है और कितने दिन में खाद बन जाती है?
1: इसकी कैपेसिटी 400 केजी की होती है। इसे हर दिन 20 से 25 केजी वेस्ट डाला जाता है, जो कि 20 से 25 दिन के अंदर कंपोस्ट यानी कि खाद तैयार हो जाती है।
0: साहब, एक और बात बताएं हमें, ये जो एरोबिन कंपोस्टिंग सिस्टम है, इसको इस्तेमाल में लाने के लिए और क्या मिलाया जाता है?
1: इसको ड्राई रखने के लिए इसके अंदर सूखी पत्ती डाली जाती है। इसके अंदर किसी भी केमिकल की जरूरत नहीं है, ये बायोलॉजिकल काम करता है।
0: सर, आपने हमें एरोबिन कंपोस्टिंग सिस्टम के बारे में इतनी जानकारी दी, हमें बताया कि किस तरीके से खाद बनती है और बिना केमिकल्स को यूज किए बनती है। ये ग्रीन इनिशिएटिव है, मेड इन इंडिया इनिशिएटिव है। साथ ही साथ आप देखिए कि अगर इस तरीके के सिस्टम्स पूरे देश में इंस्टॉल किए जाएं, आर्मी से सीख ली जाए किस तरीके से हम वेट वेस्ट को, जैसा कि हमें प्रोजेक्ट ऑफिसर ने बताया था कि हम किस तरीके से वेस्ट को वेस्ट ना रखकर उसको एक एसेट में तब्दील कर सकते हैं, इसे कहते हैं वाकई वेस्ट से एक एसेट बनाना। थैंक यू सो मच।
2: अभी हमने जाना एरोबिन कंपोस्टिंग के बारे में। श्रोताओं, अब हम आगे बढ़ेंगे और अब जानेंगे हम कि कैसे बायोगैस प्लांट लगा करके हमारी आर्मी कैंप में किचन मेंटेन किया जा रहा है, और इस बारे में डिटेल में बता रहे हैं हमें हवलदार राजकुमार।
0: भारत में नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल तो दशकों और न जाने कितने वर्षों से होता आया है, लेकिन जिस तरीके से आर्मी इसे इस्तेमाल करती है और जिस तरीके से इसके नए प्रोसेसेस को सबके सामने रखा जाता है, ये वाकई अद्भुत है, अद्वितीय है। अभी फिलहाल हम आर्मी के ग्रीन इनिशिएटिव्स की एक और बात करते हैं, जहां पर हम फिलहाल बायोगैस मशीन और बायोमेथनाइजेशन प्रोसेस की बात कर रहे हैं। इसके बारे में हमें और बताएंगे हवलदार राजकुमार जी। सर प्लीज,
1: एलपीजी की खपत को कम करने के लिए हमने कुक हाउस में बायोगैस प्लांट को इंस्टॉल कर रखा है। इसके अंदर हम मेस में बचा हुआ खाना जैसे कि पानी गर्म, दूध उबालना, अंडे उबालना इत्यादि कामों में इस्तेमाल करते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी, बायोगैस को अपनाना बल्कि आत्मनिर्भरता बनना ही नहीं बल्कि अपनी धरती को हरा भरा रखने में भी हम अपना योगदान दे सकते हैं। इसलिए वेस्टेज को फेंके ना, उससे ऊर्जा बनाए।
0: तो बायोगैस इनिशिएटिव एक और ग्रीन इनिशिएटिव है इंडियन आर्मी का, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से कचरा यानी वेस्ट को इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इस तरीके के इनिशिएटिव से आप क्या कर सकते हैं या हम क्या कर सकते हैं या हमारा देश क्या कर सकता है, वो ये है कि हम इस तरीके के इनिशिएटिव से वेस्ट को कम करके उन सभी एसेट्स को अपने पास इस्तेमाल कर सकते हैं, उन सभी रिसोर्सेज की बाहरी खपत को कम करके अपने ही आसपास की चीजों को इस्तेमाल करके रिसोर्सफुल बनकर हम वो सभी एसेट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो रिसोर्सेज प्रोड्यूस कर सकते हैं। आइए इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से जानते हैं। हवलदार राजकुमार जी, हमें प्लीज बताइए कि इसमें एक दिन में कितना वेट वेस्ट डाला जाता है और इससे कितनी गैस उत्पन्न होती है?
1: जी हाँ, ये प्लांट की कैपेसिटी पर निर्भर करता है। हमारे पास जो प्लांट लगे हुए हैं, इसमें एक दिन में 20 से 22 केजी वेस्ट डाला जाता है, जो कि 3 से 4 गैस को प्रोड्यूस करके इसको हम इस्तेमाल में ला सकते हैं।
0: इसको इस्तेमाल करने से कितने एलपीजी की बचत होती है, कितने सिलेंडर्स की बचत होती है, अगर आप हमें बता पाएं?
1: ये भी प्लांट की कैपेसिटी पर निर्भर करता है। हमारे कुक हाउस में जो प्लांट लगे हैं, इसमें हर एक प्लांट से एक महीने में 4 से 5 एलपीजी सिलेंडर की बचत होती है।
0: और सर, इसको कितनी मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, इसमें क्या क्या चीजें लगती हैं, अगर आप हमें बताएं?
1: जी, सबसे इसकी खासियत यही है कि प्लांट को मेंटेनेंस करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती। हमारे पास प्लांट लगा हुआ है तकरीबन 6 महीने से लगा हुआ, अभी तक इसकी कोई भी मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ी।
0: बायोगैस प्लांट है इंडियन आर्मी का एक और ग्रीन इनिशिएटिव, जिसमें हम वेस्ट से बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं। एलपीजी सिलेंडर्स, 4 से 5 सिलेंडर्स की खपत जितनी होती है, उतना हमें प्रोड्यूस यहां से इस मशीन से मिलता है।
2: तो आगे बढ़ते हुए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: देश पर जान न्यौछावर करने वाले हमारे जवान सरहद और देश के भीतर ही नहीं बल्कि पर्यावरण के लिए भी जी जान से मेहनत कर रहे हैं। आइए अब हम जानते हैं यूज्ड कुकिंग ऑयल को कैसे फिर से इस्तेमाल में लाया जा रहा है और इस बारे में जानकारी दे रहे हैं सूबेदार मेजर वरिंदर कुमार।
1: यूज कुकिंग ऑयल के बारे में हम सब जानते हैं, इस ऑयल को अगर बार बार इस्तेमाल किया जाए तो ये सीरियस इंजरी सीरियस हार्म दे सकता है ह्यूमन बॉडी को। इंडियन आर्मी के ग्रीन इनिशिएटिव्स में एक जबरदस्त ग्रीन इनिशिएटिव है किस तरीके से यूज कुकिंग ऑयल को इस्तेमाल किया जाए, घर घर से इकट्ठा किया जाए। इसके लिए हमारे साथ हैं सूबेदार मेजर वरिंदर कुमार जी। सर हमें प्लीज इस ग्रीन इनिशिएटिव के बारे में प्लीज बताइए।
2: सर जैसे कि FSA की गाइडलाइन के अनुसार जो भी हमारा कुकिंग ऑयल है उसको हम बार बार यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि इससे काफी सेहत के ऊपर भी असर डालता है, इसे कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती हैं। तो इसी को देखते हुए हमने इसको अलग करके जो भी हमारा कुकिंग ऑयल जो था इसको यूज्ड है उसको हम अलग करके किसी रिकॉग्नाइज संस्था को देते हैं ताकि उसकी रिसाइकल कर इसका बायोडीजल या सोप बनाया जा सके। इसको कलेक्शन करने के लिए हमने अलग अलग इसके लिए ड्रम्स जो केन्स रखे हुए हैं ताकि उसको सही तरीके से उसको डिस्पोज कर सके और इसको हम आगे डिस्पोज ऑफ कर सके। सर
1: थैंक यू सर हमें यूज कुकिंग ऑयल के बारे में बताने के लिए धन्यवाद।
2: धन्यवाद सर।
0: अभी तक हम जान रहे थे वेट वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में कि कैसे गीला कचरा रिसाइकल किया जा रहा है या अगर यूं कहें कि ये कचरा अपसाइकल किया जा रहा है। अब बहुत अहम और हमारी जिंदगी पर असर डालने वाला प्लास्टिक वेस्ट, इसे कैसे अपसाइकल करके फिर से यूजेबल बनाया जा सके जबकि प्लास्टिक के बारे में आम धारणा है कि ये कभी खत्म नहीं होता, इसकी जानकारी दे रहे हैं हवलदार अब्बास।
1: इंडियन आर्मी के ग्रीन इनिशिएटिव्स को हम आगे ले जा रहे हैं। फिलहाल हमने वेट वेस्ट की बात की, हमने यूज कुकिंग ऑयल की बात की, अब हम बात करेंगे प्लास्टिक वेस्ट की, अब हम बात करेंगे ड्राई वेस्ट की। हमारे साथ हैं हवलदार अब्बास जी। सर हमें प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में प्लीज बताइए कैसे ये कचरा इकट्ठा किया जाता है, किस किस तरीके से कैटेगराइज किया जाता है, कैसे आप इसको यहाँ पर रखते हैं और उसके बाद क्या होता है प्लीज।
3: सभी को मेरा जय हिंद। प्लास्टिक आज के गंभीर विषय बन चुका है, हमारी कोशिश यही है कि प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल किया जाए। फिर भी जो प्लास्टिक जनरेट होकर हमारे पास आता है उसको सही से डिस्पोज कैसे करें, इसके लिए हमारे कैंप की तरफ से कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं जिसके दौरान हमारे ब्लॉक्स लिविंग एरियाज कैंटीन एरियाज में हमने प्लास्टिक कलेक्शन पॉइंट्स को इंस्टॉल किया गया है। वहां से ये प्लास्टिक सेग्रीगेट होके हमारे इस मेन कलेक्शन पॉइंट पे लाया जाता है। इसमें प्लास्टिक के बोतल, पैकिंग मटेरियल, दूध की पन्नियां, नमकीन पैकेट्स, यहां से ये सारा मटेरियल वेस्टेज मटेरियल मान्यता प्राप्त एजेंसीज में भेजा जाता है रिसाइकलिंग के लिए। इससे वहां पे फर्नीचर बनाया जाता है जैसे टेबल चेयर बेंच कबर्ड, इसमें डेली यूज होने वाले प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं और इनका इस्तेमाल हम पब्लिक प्लेस पे किया जाता है ताकि लोगों को मोटिवेशन और अवेयरनेस मिले। जैकेट ग्लेशियर्स में डिप्लॉय हमारे सोल्जर्स द्वारा इकट्ठे किए गए हुए प्लास्टिक मटेरियल के वेस्टेज से बनाई गई है जो दर्शाती है कि आर्मी न खिलिप रागिस्तानों में बल्कि ग्लेशियर्स में पर्यावरण को बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर रही है।
1: हवलदार अब्बास जी मुझे ये भी बताइए कि रिसाइकल प्लास्टिक फर्नीचर नॉर्मल फर्नीचर के मुकाबले कैसा होता है, अगर एक नॉर्मल फर्नीचर की बात की जाए और ये जो रिसाइकल प्लास्टिक फर्नीचर है इसकी बात की जाए दोनों का कंपैरिजन कैसा है, कितना

0: मजबूत है, हम सभी लिसनर्स को बताइए।
1: ये नॉर्मल फर्नीचर से बहुत ज्यादा अच्छा है, ये मजबूत है, धूप बारिश इस पे कोई असर नहीं पड़ता है और ये देखने में भी अट्रैक्टिव है और साथ में कंफर्टेबल भी है।
0: सर, क्या ये रिसाइकल प्रोडक्ट्स आम लोग भी खरीद सकते हैं, इसके बारे में अगर आप बता पाए?
1: जी हाँ बिल्कुल, ये आप खरीद भी सकते हो और प्लास्टिक के बदले इसको ले भी सकते हो।
0: सर, हर आइटम पर कुछ प्लास्टिक नंबर लिखे हुए हैं, इसका मतलब क्या है अगर आप हमें बता पाए?
1: जी, ये जो मार्क 80 kg का लिखा है ये दर्शाता है कि 80 kg प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल से इस बेंच को बनाया गया है। ये चीज भी दर्शाती है कि 80 kg वेस्ट को फैलने से रोका गया है।
0: Absolutely, 80 kg वेस्ट, आप सोचिए 80 kg वेस्ट कितना ज्यादा होता है। उस वेस्ट को इकट्ठा करना, उसको रिसाइकल करना, उसको प्रोसेस करना और उसके बाद ये मजबूत फर्नीचर, ये मजबूत बेंच, ये सब चीजें बनाना, कितनी अहम चीज है ये, कितना मजबूत इनिशिएटिव है, कितना फ्यूचर ओरिएंटेड है और कितना ज्यादा सस्टेनेबल है। सर, पब्लिक वेस्ट या प्लास्टिक वेस्ट की अगर बात की जाए, किस प्रकार के प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं, कितनी चीजें हैं
1: इसमें? डिफरेंट तकरीबन 28 आइटम्स बनाए जाते हैं, जिसमें आप टेबल, कबर्ड, तो बहुत सारी चीजें बनाई जाती है।
0: हमें प्लास्टिक वेस्ट के बारे में बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू सो मच सर।

0: तो इसी तरह कंधों से कंधे मिलाकर हम अपनी धरती को स्वच्छ और बेहतर बना सकते हैं और प्लास्टिक जैसे खतरनाक वेस्ट को भी अपसाइकल कर रहे हैं। अब बात करते हैं पेपर वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में, और इस बारे में बता रहे हैं हमें नायब सूबेदार कुलदीप राज।
1: ड्राई वेस्ट में ही हमने पहले प्लास्टिक वेस्ट की बात की, अब हम बात करेंगे पेपर वेस्ट की। किस तरीके से पेपर्स को इकट्ठा किया जाता है, कैसे वेस्ट पेपर्स को यहाँ पर लाया जाता है और उसके बाद उसको श्रेड किया जाता है, इस पूरे प्रोसेस के बारे में हमें बताएंगे कुलदीप राज जी। सर प्लीज हमें इस पूरे प्रोसेस के बारे में समझाएं।
2: जय हिंद। पेपर का इस्तेमाल पूरे कैंप में कम से कम किया जाता है, जिससे पेपर और समय दोनों की बचत होती है और एनवायरमेंट में भी फायदा मिलता है, जिससे पेपर का इस्तेमाल कम होता है और पेड़ पौधे कटने से बचते हैं। जो भी पेपर वेस्ट होता है, जैसे कि शटल पेपर, गत्ता, किताबें, रजिस्टर इत्यादि, प्लास्टिक वेस्ट की तरह मान्यता प्राप्त एजेंसी को दिया जाता है और जिससे पेपर, किताबें, डायरी इत्यादि बनाए जाते हैं, जिसे इस्तेमाल में लाया जाता है। रीयूज करने से रिसोर्सेज की कमी और सर्कुलर इकोनॉमी में बढ़ावा मिलता है।
1: तो किस तरीके से डिजिटल इंडिया का एक्चुअल एग्जीक्यूशन यहां पर चल रहा है, तो जैसा कि आपने देखा इंडियन आर्मी की ग्रीन इनिशिएटिव्स में एक और है प्लास्टिक वेस्ट और वेट वेस्ट के अलावा पेपर वेस्ट को किस तरीके से रिसाइकल और अपसाइकल किया जाता है, कैसे मान्यता प्राप्त एजेंसीज तक ये सारे पेपर्स पहुंचते हैं। डिजिटल इंडिया की प्रॉपर एग्जीक्यूशन तो आर्मी हेडक्वार्टर्स कैंप में की जा रही है। डिजिटलाइजेशन के बाद पेपर वेस्टेज या पेपर यूसेज कहें बहुत कम हो चुका है, डिजिटल चीजों का, डिजिटल माध्यम का उपयोग ज्यादा होता है, लेकिन जितने भी पेपर्स इस्तेमाल होते हैं जो जरूरी होते हैं उनको भी रिसाइकल किया जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ।
0: एक और वेस्ट जो हमारी जिंदगी का एक अभिन्न अंग बन चुका है और वो है ई वेस्ट या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जिससे हमारे मोबाइल, टैबलेट्स, चार्जर्स, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स और भी कितने ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जिसमें शामिल हैं। और ये ई वेस्ट भी हमारी धरती के लिए और हमारे पर्यावरण के लिए बेहद खतरनाक साबित हो रहा है। और इस ई वेस्ट को कैसे अपसाइकल किया जा रहा है, बता रहे हैं हवलदार अशफाक अहमद।
1: ड्राई वेस्ट की ग्रीन इनिशिएटिव्स की बात करते करते अब हम आ चुके हैं एक स्पेशल कैटेगरी वेस्ट की तरफ, जो की है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट यानी ई वेस्ट। बेहद जरूरी चीज जो हम सभी के घरों में मिलती है, छोटे छोटे प्लास्टिक के टुकड़े, वायर्स, प्लग्स, आप सभी ने देखा होगा, क्या वो सब चीजें ई वेस्ट का हिस्सा है? आइए जानते हैं हवलदार अशफाक अहमद जी से। सर स्वागत है शो में। जितनी भी चीजें हमारे घरों में मिलती हैं, क्या वो सब ई वेस्ट में आती हैं?
3: जय हिंद। हाँ बिल्कुल, वो सारी ई वेस्ट में आती हैं। ई वेस्ट एक अत्यंत गंभीर समस्या बन चुकी है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, ई वेस्ट की समस्या भी बढ़ती जा रही है। इसके लिए कैंटोनमेंट, RWS और ऑफिस एरियाज में ई वेस्ट कलेक्शन पॉइंट्स को एस्टेब्लिश किया गया है, जो कि स्पेशल केयर वेस्ट के अंतर्गत आते हैं। इसमें न सिर्फ ऑफिस एरिया के इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बल्कि जवान अपने घरों से भी बैटरी, चार्जर, बल्ब जैसे इत्यादि लाके इसमें डाल सकते हैं। जो आप ई वेस्ट बॉक्स है, इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है ये जवानों ने अपने घरों से लाके इसमें डाला हुआ है। इस ई वेस्ट को मान्यता प्राप्त एजेंसीज के सेग्रीगेशन प्लांट्स में भेजा जाता है, जहां पर उन्हें साइंटिफिक तरीके से रिसाइकल करके उनमें से सिल्वर, कॉपर, अल्मीनियम जैसे एलिमेंट को निकाल के दोबारा से उपयोग में लाया जाता है।
1: बिल्कुल, मतलब ग्रीन

मेटल्स को हार्वेस्ट किया जाता है, इस सभी ई वेस्ट का उपयोग करके हम इन ग्रीन मेटल्स को निकालते हैं, इनको बनाते हैं और उसके बाद इसका दोबारा से इस्तेमाल होता है। ग्रेट इनिशिएटिव, एक्सलेंट इनिशिएटिव। सोचिए कितना ज्यादा कचरा हम घरों से, बाकी जितनी भी चीजें हैं वहां से इकट्ठा करके यहां पर लाते हैं और उसके बाद इससे कुछ और उपयोगी, कुछ यूजफुल बनाते हैं। एक्सलेंट इनिशिएटिव आई वुड से।

0: ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए हमारी इंडियन आर्मी कन्वेंशनल फ्यूल को नहीं बल्कि हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले व्हीकल्स का इस्तेमाल कर रही है। इसके बारे में बता रहे हैं हवलदार आशीष जी।
1: जय हिंद, मैं हवलदार आशीष। एनर्जी कंजर्वेशन वेस्ट मैनेजमेंट की तरह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। ग्रीन इनिशिएटिव्स को प्रमोट करने के लिए और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स और सोलराइजेशन यानी सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारतीय सेना में सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट और पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। ऑलरेडी इनमें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स और हाइड्रोजन व्हीकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। आज हमारे पास आर्मी हेडक्वार्टर कैंप में 25 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का एक फ्लीट है जिनका इस्तेमाल डिपार्टमेंटल ट्रांसपोर्ट और इंटरनल मोमेंट्स के लिए किया जा रहा है। एक इलेक्ट्रिक कार्स का एक फ्लीट है, साथ ही हाइड्रोजन बस और इलेक्ट्रिक बसेस का एक फ्लीट नजर आ रहा होगा, साथ एक इलेक्ट्रिक रिक्शा रखा हुआ है। इनके चार्जिंग पॉइंट्स लगे हुए हैं जहां पे इन व्हीकल्स को चार्ज किया जाता है। एक व्हीकल को फुली चार्ज होने में 4 से 5 घंटे का समय लगता है और एक फुली चार्ज्ड व्हीकल तकरीबन 300 किलोमीटर की एवरेज देता है। ऐसा करने से हम मंथली तकरीबन 4000 लीटर और ईयरली 48000 लीटर तक तेल की बचत कर रहे हैं। इन इनिशिएटिव्स को और इन व्हीकल्स को यूज करके हम न सिर्फ अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज को बचा रहे हैं बल्कि अपने एनवायरनमेंट को भी साफ सुथरा रख रहे हैं।
0: संदेश टू सोल्जर्स के आज के हमारे ग्रीन इनिशिएटिव मिशन लाइफ स्पेशल एपिसोड में आगे बढ़ते हैं और अब बहुत ही इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव के बारे में जानते हैं जो इमोशनली भी बहुत रिलेवेंट है और वो है वॉल ऑफ काइंडनेस। ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें पुराने कपड़े, किताबें और यूनिफॉर्म शामिल हैं। हमारे फौजी भी अपनी यूनिफॉर्म के साथ भी इमोशनली अटैच्ड होते ही हैं। तो कैसे डिग्निफाइड वे में इन्हें डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है, बता रहे हैं हवलदार विनोद कुमार और राइफलमैन दिनेश कुमार।
2: लेडीज एंड जेंटलमैन, देवियों और सज्जनों, आर्मी और ह्यूमैनिटी, ये दोनों शब्द हम सिनोनिम्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडियन आर्मी के ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स इतने हैं जिन्हें गिनवाया जाए तो शायद ये दिन ये रात सब कम पड़ जाए। हम ग्रीन इनिशिएटिव्स की बात करने आए थे लेकिन यहाँ पर इनिशिएटिव्स के साथ साथ जो पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है उसी के साथ साथ एक ऐसा इनिशिएटिव भी है जो काइंडनेस को और ज्यादा दर्शाता है। कैबिनेट है ये 155 किलो प्लास्टिक को इस्तेमाल करके बना है। सोचिए 155 किलो प्लास्टिक अब सड़कों में या कचरे के डिब्बों के आसपास नहीं बिखरा हुआ है, उसको इस्तेमाल करके ये शेल्फ बनाया गया है। ये अपने आप में एक जबरदस्त ग्रीन इनिशिएटिव है जिसके बारे में हम पहले से बात कर चुके हैं और इसके साथ साथ ही दिस इज एक्चुअली अ वॉल ऑफ काइंडनेस व्हिच मींस डोनेट व्हाट यू कैन टेक व्हाट यू नीड, मतलब अपनी मर्जी से आप डोनेट कर सकते हैं और जो भी जरूरत है वो आप यहां से ले जा सकते हैं। अमेजिंग इनिशिएटिव, ऐसा एक काम जो इंडियन आर्मी ही सोच सकती थी। इंडियन आर्मी

0: जो कपड़े जूते किताबें जहाँ यूनिफॉर्म वो सब इधर डोनेट करते हैं, बुक्स की शेल्फ है और यूनिफॉर्म की कपड़ों की जिस अलमीरा में ये डोनेट करके जाते हैं और जहाँ से जरूरतमंद लोग जहाँ से उठा के बिना किसी हिचकिचाहट के ले जाते हैं। और बेसिकली हमारा उद्देश्य है कि चैरिटी नहीं बल्कि डिग्निटी के साथ जहाँ से सामान ले जा सके। बाकी अभी तक डेटा के अनुसार 10 टन से 12 टन तक कपड़े जहाँ से डोनेट हुए थे और काफी सारा सामान जरूरतमंद लोगों को दिया जा चुका है।
1: सो वॉल ऑफ काइंडनेस के साथ साथ एक और शेल्फ है जिसमें ट्राई सर्विसेज यानी आर्मी नेवी और एयरफोर्स की यूनिफॉर्म्स हैं, क्या इसके बारे में और बता सकते हैं?
0: देखिए अभी आपने सारे रैक्स देख लिए, अभी ये लास्ट में मैं बताता हूँ यूनिफॉर्म रैक्स। इसमें हम तीनों सेनाओं के यूनिफॉर्म रखते हैं, आर्मी नेवी एयरफोर्स। देखिए फौजी आदमी के लिए सबसे बड़ा प्राइड होता है उसकी यूनिफॉर्म, ये हमारे इमोशन को टच करती है और दूसरा ये हमारा प्राइड है। हम चाहते हैं इसका सही तरीके से डिस्पोज ऑफ किया जाए, इसलिए हम इसे रिस्पेक्टफुल तरीके से इनको जहां रखते हैं तीनों सेना की यूनिफॉर्म को।
2: बता रहे हैं राइफलमैन दिनेश कुमार।
0: वॉल ऑफ काइंडनेस में अभी तक कपड़े यूनिफॉर्म इसके अलावा जहां पर बुक्स भी हैं। अभी हाल फिलहाल में एग्जाम खत्म हुए थे, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक जिन लोगों ने अपने एग्जाम खत्म किए उनके बुक्स जहां पर काफी डोनेट की गई हैं और ये सभी डोनेट सामान जरूरतमंद लोगों के काम आएगा। और इसके अलावा अब जहां और भी बहुत सारी बुक्स हैं जैसे जेई नीट सीरियस और SSB सभी तरह की बुकें आपको देखने को जहां मिल जाएंगी। और इसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि हमारे यहां पर जितने भी फोर्सेस हैं आर्मी नेवी एयरफोर्स के जो अफसर जवान वो अपने बच्चों के खिलौने किताबें ये सब जहां पर डोनेट करते हैं।
2: हमारे फौजी भाई कई बार डिफिकल्ट टेरेन्स में पोस्टेड होते हैं जहां इलेक्ट्रिसिटी इजीली अवेलेबल नहीं होती है। ऐसे में हमारी आर्मी ने सोलर एनर्जी का प्रयोग कर डेवलप किए हैं सोलर हट्स और सोलर सिक्योरिटी चेक पोस्ट जिसमें सोलर पावर से चलने वाले कई तरह के डिवाइसेस प्रयोग में लाए जाते हैं। आइए जानते हैं आर्मी के इस इनिशिएटिव के बारे में।
3: जब हम सस्टेनेबल ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं तो सबको पता है सन इज द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, तो हम नेचुरल सनलाइट को इस्तेमाल करके सोलर हट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जिसको हमने बहुत सारी पब्लिक प्लेसेस में लगाया जिससे आने वाले कम्प्यूटर्स इसका बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। यह पूरा सोलर पावर्ड है जिसमें 4 फैंस की सुविधा दी गई है, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, वायरलेस चार्जिंग पॉइंट और साथ ही साथ में अगर हम चाहे तो रिकॉर्डिंग CCTV रिकॉर्डिंग की भी इसमें क्षमता है। सोलर हट तो आपने देख लिया, अभी आपके सामने दर्शाई गई है सोलर संतरी पोस्ट। जैसे कि हम सभी जानते हैं आर्मी देश के विभिन्न विभिन्न भागों में डिप्लॉयड है, जैसे जब भी आर्मी रिमोट एरिया में डिप्लॉयड होती है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज होती है, तो उस समस्या को दूर करने के लिए हमने इस इलेक्ट्रिसिटी सिक्योरिटी चेक पोस्ट को बनाया गया है। जैसे इसके अंदर एक फैन की सुविधा दी गई है जो गर्म और ठंडी हवा भी देता है, साथ ही साथ में इसमें मोबाइल चार्जिंग पॉइंट और एक इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट की भी सुविधा दी गई है। ये एक मोबाइल संतरी पोस्ट है जिसको यहां से लेकर हम किसी भी जगह पे डिप्लॉय कर सकते हैं।
1: इंडियन आर्मी देश की सुरक्षा के साथ साथ पर्यावरण की सुरक्षा भी कर रही है। आज हमने ग्रीन इनिशिएटिव्स देखे जो इंडियन आर्मी ले रही है, किस तरीके से ई वेस्ट, वेट वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, पेपर वेस्ट, हर तरीके से कैसे इंडियन आर्मी हमारे पर्यावरण को बचा रही है, फ्यूचर को बचा रही है। यहाँ पर हेडक्वार्टर कैंप आर्मी में आके हमने सब जाना किस तरीके से आर्मी ये बेहतरीन इनिशिएटिव्स कर रही है और लगातार हमारे फ्यूचर को सेफगार्ड करके सस्टेनेबल तरीके से बेहतर बना रही है। हम इस वक्त प्रोजेक्ट इंचार्ज मेजर अजीत मोरे के साथ हैं। सर, कंक्लूडिंग रिमार्क्स में आप क्या कहेंगे, ये ग्रीन इनिशिएटिव्स कितने जरूरी हैं, किस तरीके से आर्मी पूरे देश के सामने इस प्रेरणा को रख रही है?
3: थैंक यू वैभव, मैं आपको एक कहना चाहूंगा, जो हमारी सोच है वेस्ट मैनेजमेंट यहाँ तक ही सीमित नहीं है बल्कि पर्यावरण सुरक्षा में है, हम इसको कल्चरल चेंजेस लाना चाहते हैं। जिस प्रोडक्ट पे हम अभी बैठे हैं ये अपसाइकल प्रोडक्ट, हमने एक चौथा पहलू भी इसमें जोड़ दिया है। साथ में आपको कहना चाहूंगा जब वेस्ट मैनेजमेंट या पर्यावरण संरक्षण की बातें आती है तो इसमें तीन बेसिक ह्यूमन टच पॉइंट्स, एक है इंडिविजुअल, एक है कम्युनिटी और तीसरा है अथॉरिटी, जिसमें आप लोकल बॉडीज होगी, आपके स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो जब तक ये इंडिविजुअल के अंदर से नहीं आएगा तब तक हमारा एरिया या हमारा पर्यावरण साफ नहीं होगा, ये आपको मैं जोर देकर कहना चाहूंगा। हमारे देश का हर एक सिटीजन, हर एक बंदा एक पर्यावरण योद्धा है और जब तक उसके अंदर से ये आएगा तभी हम हमारे देश के या हमारे गवर्नमेंट के स्वच्छ भारत अभियान को पूरा कर पाएंगे। तो कल हम 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस को मना रहे हैं, तो ये हमारे गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है स्वच्छ भारत अभियान, मिशन लाइफ अभियान, इसको सफल बनाने के लिए हम सब देशवासी मिलकर इसको योगदान दें। जय हिंद।
2: तो आगे बढ़ते हुए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

देश की रक्षा और प्रकृति की रक्षा दोनों एक साथ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर सेना का संदेश है। 102.6 आकाशवाणी रेनबो पर आज का संदेश टू सोल्जर्स भारतीय सेना के ग्रीन इनिशिएटिव और मिशन लाइफ को समर्पित था, जिसमें जीरो वेस्ट जोन से लेकर सोलराइजेशन, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट से ई वेस्ट मैनेजमेंट, साथ ही ऑर्गेनिक वेस्ट का साइंटिफिक मैनेजमेंट और बायोगैस के अलावा हमने जाना कि एरोबिन कंपोस्टिंग क्या है और कैसे इससे खाद बनाई जाती है, और ये भी कि वॉल ऑफ काइंडनेस के माध्यम से पुराने कपड़े, जूते, किताबें, बच्चों के खिलौने डोनेट करके रीयूज कॉन्सेप्ट को प्रमोट किया जा रहा है। हम आशा करेंगे कि इंडियन आर्मी के अपनी धरती और प्रकृति के प्रति इस जज्बे से हम भी प्रेरणा लेकर अपना योगदान अवश्य देंगे और इसे बेहतर, स्वच्छ और स्वस्थ बनाने की कोशिश करते रहेंगे। आज के संदेश टू सोल्जर्स के इस स्पेशल शो की प्रस्तुतकर्ता थी राजलक्ष्मी और मेरे सहयोगी थे ओबी पर वैभव श्रीवास्तव, और आप सुन रहे हैं मेरी आवाज। मेरा नाम है शाहिद। जय हिंद।

से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेंबो पर रात 9 बजे। रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेंबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर।

0: साथी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन, साथी डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए नए अवसरों पर विचार किया। केंद्र सरकार ने आज वर्ष 2026 के लिए 29वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कारों की घोषणा की। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने बताया कि ई गवर्नेंस के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को कुल 17 पुरस्कार दिए जाएंगे, जिसमें 10 स्वर्ण पुरस्कार, 6 रजत पुरस्कार तथा 1 ज्यूरी पुरस्कार शामिल है। मेरा युवा भारत को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई है। इस अभियान ने एक सप्ताह में ऑनलाइन क्विज में भाग लेने वाले सबसे अधिक उपयोगकर्ताओं का खिताब हासिल किया है। इसमें 3,90,000 से अधिक प्रतिभागियों ने क्विज को पूरा किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन की प्रतिभाशाली बेटी सुश्री दीक्षा की कला को वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में स्थान मिलने पर बधाई दी है। दीक्षा ने केवल 22 मिनट में 8 मिलीमीटर आकार की चने की दाल के 12 दानों पर ज्योतिर्लिंगों की पेंटिंग बनाकर असाधारण कला का प्रदर्शन कर विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है। और राज्य शासन की स्थानांतरण नीति 2026-27 के तहत जनजाति कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग ने स्थानांतरण आवेदनों के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। जारी आदेश के अनुसार स्वैच्छिक स्थानांतरण के आवेदन 3 जून से 8 जून तक EHRMS पोर्टल पर ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

मीडियम वेव डीटीएच के ऑडियो चैनल साथी न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल, आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। लीजिए प्रस्तुत है, थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा, कृपया प्रतीक्षा करें। मीडियम वेव डीटीएच के ऑडियो चैनल साथी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। लीजिए प्रस्तुत है युवा साथियों का नियमित कार्यक्रम युवाणी। आज के युवाणी आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति है।

0: नमस्कार दोस्तों, आज की इस खूबसूरत शाम में हम लेकर आए हैं ढेर सारी बातें, मुस्कान और कुछ खास पल। आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम युववाणी, और मैं हूं आज का आपका रेडियो दोस्त अनमोल।
1: और मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अंकिता। उम्मीद है आप सभी का दिन अच्छा गुजरा होगा। अब वक्त है थोड़ी सी राहत का और कुछ प्यार भरी बातों का और शानदार संगीत का।
0: बिल्कुल, दिन भर की भाग दौड़ के बाद शाम का ये समय अपनेपन और सुकून का होता है, और हम चाहते हैं कि आपकी ये शाम और भी खूबसूरत बन जाए।
1: तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम को आज के दो प्रश्नों के साथ। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलचर जीव कौन है? और आज का दूसरा प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है?
0: साथियों, इनके जवाब हम आपको बताएंगे कार्यक्रम के अंत में, लेकिन उससे पहले इस शाम को और भी सुरीला बनाते हैं एक खूबसूरत गीत के साथ, जिसे आवाज दी है अरिजीत सिंह और आशीष कौर ने, और जिसे लिया गया है फिल्म केसरी से।

0: है ना, पहले मौसम कितने अच्छे हुआ करते थे, पेड़ों की वो ठंडी ठंडी छाव, साफ हवा और बारिश की वो खुशबू।
1: लेकिन अब सब धीरे धीरे बदलता जा रहा है। हर जगह प्रदूषण, प्लास्टिक और कटते हुए पेड़ दिखाई देते हैं।
0: और सबसे हैरानी की बात ये है कि इंसान खुद ही प्रकृति को नुकसान पहुंचाता है और फिर उसी खराब माहौल की शिकायत भी करता है।
1: हाँ और क्या, हम खुद के स्वार्थ में भूल जाते हैं कि प्रकृति नहीं रहेगी तो जीवन भी मुश्किल हो जाएगा।
0: अब आज गर्मी हर साल बढ़ रही है, बारिश का मौसम भी बदलता जा रहा है, ये सब कहीं ना कहीं पर्यावरण के बिगड़ने का असर है।
1: पर पेड़ लगाकर, पानी बचाकर और प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करके हम अपने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए बदलाव भी ला सकते हैं।
0: बिल्कुल, प्रकृति सिर्फ हमारी जरूरत नहीं, हमारी जिम्मेदारी भी है।
1: और दोस्तों, आज से हम सब मिलकर एक छोटी सी कोशिश जरूर करेंगे ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी साफ और सुंदर वातावरण मिल सके।
0: साथियों, इसी वादे के साथ अब कार्यक्रम में जोड़ते हैं ये गीत, जिसे लिया गया है फिल्म मेट्रो इन दिनों से और जिसे आवाज दी है अरिजीत सिंह ने।

दोस्तों, प्रेरक व्यक्तित्व के अंतर्गत हम हर बार एक आइडियल पर्सनालिटी के बारे में आपसे बात करने आते हैं और उनके जीवन से जुड़े महान कार्यों को जानकर उससे प्रेरित होकर

0: उनको याद करने का एक छोटा सा प्रयास करते हैं।
1: जी हाँ दोस्तों, और आज हम आपसे बात करने आए हैं राजकुमारी अमृत कौर के बारे में। आजादी की राह, सेवा की चाह, अमृत कौर की यही पहचान है।
0: इनका जन्म 2 फरवरी 1889 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता कपूरथला पंजाब के राजा थे और इनकी प्राथमिक से लेकर उच्च स्तरीय शिक्षा भी इंग्लैंड से पूरी हुई थी।
1: लेकिन संपन्न परिवार से होने के बाद भी अमृत कौर ने अपना जीवन सादगी से जीना चाहा। देश को स्वतंत्र कराने, सामाजिक विकास करने के लिए उन्होंने कई सारे कार्य किए।
0: वे बाल विवाह और पर्दा प्रथा के सख्त खिलाफ थी और उनका कहना था कि शिक्षा को भी निःशुल्क और अनिवार्य बनाना चाहिए।
1: महिलाओं की दयनीय स्थिति को देखकर ही उन्होंने 1927 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना की। उन्होंने ऑल इंडिया विमेन एजुकेशन फंड एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया था।
0: इस तरह अपने राजनीतिक करियर के दौरान राजकुमारी अमृत कौर ने कई बड़े पदों पर काम किया। 1947 में भारत की आज़ादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें देश की पहली स्वास्थ्य मंत्री भी बनाया।
1: इतना ही नहीं, 1950 में उन्हें विश्व स्वास्थ्य संगठन का अध्यक्ष भी बनाया गया। ये सम्मान हासिल करने वाली वे पहली एशियाई महिला थी और इस तरह सेवा, समानता और स्वास्थ्य ही अमृत कौर का संकल्प बन गया।
0: आज़ादी की राह पर उन्होंने 16 वर्षों तक गांधी जी के सचिव के रूप में भी काम किया। 1930 में दांडी मार्च और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्हें जेल भी जाना पड़ा और इस तरह लोगों को जागरूक करने और देश को स्वतंत्र कराने के लिए अमृत कौर जीवन पर्यंत प्रयास करती रही।
1: साथियों, 2 अक्टूबर 1964 का दिन भले ही अमृत कौर के जीवन का आखिरी दिन रहा हो, लेकिन उनके सराहनीय कार्य और उनके योगदान को आज भी उतना ही याद किया जाता है।
0: इन्हीं बातों के साथ आइए दोस्तों, अब सुनते हैं कार्यक्रम के अगले गीत को। उरी फिल्म से शांतनु सुदामे और शाश्वत सचदेव की आवाज में।

0: अंकिता, आज मैं बहुत खुश हूँ।
1: क्यों?
0: क्योंकि आज मैंने अपनी लाइफ की फर्स्ट जॉब से फर्स्ट सैलरी जो ली है।
1: अरे वाह अनमोल, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर आज तो तुम्हें सेल्फ इंडिपेंडेंट होने की फीलिंग आ रही होगी।
0: बिल्कुल सही कहा अंकिता, खुद की मदद करके किस व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता। छोटी छोटी जरूरतों से लेकर बड़ी बड़ी आवश्यकताओं तक जब आप अपने परिवार पर निर्भर नहीं होते बल्कि दूसरों का सहारा बनते हैं, तब ये फीलिंग ही कुछ और होती है।
1: सही कहा अनमोल, आज के टाइम पर हर व्यक्ति एक्टिव है। वो अपने अधिकार, अपने कर्तव्य के लिए जागरूक भी है। किसी कार्य को करने से क्या फायदा क्या नुकसान है, सरकार की कौन कौन सी योजनाएं अस्तित्व में है और इससे जुड़कर किस तरह हम अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं और रोजगार भी किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं, इन सभी बातों का ध्यान आज हमारे देश का नागरिक रखता है।
0: आज वो खुद की सहायता के लिए पूरी तरह तैयार है। बिना किसी सहारे के स्वसहायता से व्यक्ति स्वावलंबन की ओर बढ़ता जा रहा है। इतना ही नहीं, आज की जागरूक होती महिलाएं भी घर के साथ साथ बाहर निकलकर अपने कौशल को बढ़ाना चाहती हैं।
1: और दोस्तों, इस राह में सरकार के कई प्रयास जैसे रोजगार योजना, कौशल विकास, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और स्टार्टअप इंडिया जैसे कई सारे विकास के कार्य भी जारी हैं।
0: तो दोस्तों, अगर आप भी खुद की मदद करना चाहते हैं और अपने साथ दूसरों को जागरूक कर परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं, तो स्वावलंबी बनने की ओर कदम बढ़ाना बहुत जरूरी है।
1: और उम्मीद है आप सभी इस क्षेत्र में एक छोटा सा प्रयास जरूर करेंगे। इन्हीं बातों के साथ आइए अब सुनते हैं आतिफ असलम की आवाज में बजरंगी भाईजान फिल्म से इस गीत को।

0: दोस्तों बातें तो अभी और भी हो सकती थी, लेकिन घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि अलविदा कहने का समय हो चला है।
1: लेकिन उससे पहले हम आपको बताएंगे कार्यक्रम की शुरुआत में पूछे गए प्रश्न के उत्तर को। दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न था, भारत का राष्ट्रीय जलचर जीव कौन सा है? इसका उत्तर है गंगा डॉल्फिन।
0: और साथियों आज का हमारा दूसरा प्रश्न था, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? जिसका उत्तर है प्रशांत महासागर। साथियों उम्मीद है आज की ये शाम, हमारी बातें और संगीत के ये पल आपके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान जरूर छोड़ गए होंगे।
1: जिंदगी की भागदौड़ में कभी कभी कुछ पल अपने लिए चुरा लेना भी जरूरी होता है, और हमें खुशी है कि आपने उन पलों में युववाणी को शामिल किया।
0: साथियों हम फिर लौटेंगे नई शाम, नई धुन और नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप सुन रहे थे आपकी रेडियो दोस्त अनमोल द्विवेदी
1: और आपकी रेडियो दोस्त अंकिता को।
0: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों का नियमित कार्यक्रम युववाणी। आज की युववाणी आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति थी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।

0: मैं विनय उपाध्याय। आकाशवाणी की यात्रा के 9 दशक पूरे हो रहे हैं। ये सूचना निश्चित रूप से हम जैसे लोगों के लिए बहुत ही खुशी की सूचना है। हम भी आकाशवाणी की इस यात्रा में एक आवाज के रूप में हम सफर रहे हैं। कहते हैं कि नदियों का गुमुख बहुत छोटा होता है। एक छोटी सी झील के रूप में कोई नदी निकलती है अपने अमृत कुंड से और अपनी यात्रा में अनेक कूल किनारों को तय करते हुए एक समंदर में जाकर मिल जाती है। आकाशवाणी के साथ भी ऐसा ही है। दरअसल आवाजों का एक भरा पूरा घर ही आकाशवाणी है। और कितनी सारी आवाजें, वो आवाजें जो भरोसा बनकर आकाशवाणी के स्टूडियो से श्रोताओं तक पहुंचती रही है। श्रोता और आकाशवाणी के बीच में दरअसल एक विश्वास तैर कर इन 90 वर्षों में जाता रहा है। आकाशवाणी के इस अवधि को पूरा करने के अवसर पर मैं अपनी आंतरिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस निहित उद्देश्य को लेकर सूचना, शिक्षा और मनोरंजन, इन 3 पदों को साथ में लेकर आकाशवाणी ने जो अपनी यात्रा शुरू की थी वो नए उत्कर्ष पर पहुंचे। सभी आकाशवाणी से जुड़े साथियों और श्रोताओं को एक बार फिर हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू, दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन, वेटर ने फेंका स्पिन, 4,000 का आया बिल, रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल, रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट, डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
4: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
5: हर लेन देन अब है आसान।
6: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत, और फिल्म संगीत में हम सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं फिल्म अमर अकबर एंथोनी का एक गीत। आवाज़ें हैं किशोर कुमार, मुकेश, मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर और साथियों की। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। सुनते हैं ये गीत।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म नसीब से, आवाज़ हैं लता मंगेशकर और साथियों की, आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, सुनते हैं ये गीत।

फिल्म नसीब के बाद अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म क्रांति का। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर, किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, नितिन मुकेश और साथियों की। संतोष आनंद ने इस गाने को लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, सुनिए।

आखिर में अब हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म शान का एक गीत। आवाज़ें किशोर कुमार, आशा भोसले, उषा मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी हैं। अनुन बख्शी ने इस गाने को लिखा है, आर डी बर्मन का संगीत।

इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।

0: कवि हेमंत देवलेकर।
1: आकाशवाणी की दुनिया जहां संगीत है, नाटक है, समाचार है, समाज सुधार और शिक्षा के कार्यक्रमों का प्रसारण है, हम सब रचनाकार अलग अलग क्षेत्रों के सर्जक आकाशवाणी के प्रति हार्दिक आभारी हैं कि आकाशवाणी ने हम सबको ये मौका दिया कि हम अपनी अपनी आवाजें आकाशवाणी के माध्यम से देश में समाज जनों के बीच में प्रसारित कर पाएं। आकाशवाणी आकाश की तरह अजर रहे, अमर रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। लीजिए प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और दमन का दौरा करेंगे। सूरत में वे सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और 200 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल का उद्घाटन भी करेंगे। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण विमान ईंधन ATF की कीमतों में आई असामान्य बढ़ोतरी का बोझ यात्रियों पर न पड़े, इसके लिए केंद्र सरकार ने 10,000 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता देने का फैसला किया है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने आज स्वास्थ्य और आयुष विभाग को 19 जून के विश्व सिकल सेल दिवस के मद्देनजर उन्मूलन गतिविधियां तेज करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में स्क्रीनिंग, दवा वितरण और जनजागरूकता कार्यक्रमों की विशेष निगरानी जरूरी है। इंदौर में 6 जून को भारत लैटिन अमेरिका एवं कैरेबियन व्यापार एवं निवेश फोरम 2026 का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मौजूदगी में होने वाले इस फोरम में लैटिन अमेरिका के 15 देशों के राजदूत और 350 से अधिक उद्योग प्रतिनिधि

0: शामिल होंगे। केंद्र सरकार ने प्रदेश के निमाड़ अंचल को बड़ी सौगात देते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 347B के उन्नयन और चौड़ीकरण को मंजूरी दी है। इस परियोजना पर 4,415 करोड़ रुपये खर्च होंगे और इससे बैतूल, खंडवा, खरगोन और बड़वानी जिलों में सड़क की स्थिति सुधरेगी। और प्री मानसून बारिश और आंधी तूफान को देखते हुए मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने अपने सभी मैदानी अधिकारियों और कर्मचारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश
1: और मैं हूं अजीत। स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है गांव गणेश धाम परसुली जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धर्मंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी ने। लिखते हैं,
2: है काम आदमी का दूसरे के काम आना।
1: क्या बात है काम आदमी का दूसरे के काम आना। धन्यवाद आप सबका इतने सुंदर विचार को भेजने के लिए। अब आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है ग्राम ममना सरीला जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा जी का।
2: और अगला संदेश मिला है महाराष्ट्र से प्रथमेश हेड़के जी का। उन्होंने लिखा है, मुझे NCERT का उमंग प्रोग्राम बहुत पसंद है, हर दिन, हर बार, हर रोज सुनता हूँ।
1: बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्यारे संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी का।
2: इलाहाबाद से रेशमा नाज डोम और बेबी अंसारी डोम।
1: आप सबको हमारा आभार संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं संदेश जरूर भेजिए क्योंकि इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी। साथियों इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं पृथ्वी के प्रमुख मरुस्थलों की। कल हमारी चर्चा का विषय था गोभी का शीत मरुस्थल।
2: इन कड़ियों में हमने विशेष रूप से ये जाना था कि मरुस्थल या मरुभूम कहलाने के लिए किसी क्षेत्र में रेत ही रेत हो या बहुत गर्मी हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
1: जी हाँ श्रोताओं, मरुभूमि या मरुस्थल की परिभाषा उस क्षेत्र की निर्जलता या अति अल्प वृष्टि पर निर्भर करती है। तो विमलेश जी, आज हम किस शीत मरुस्थल की चर्चा करने जा रहे हैं? मेरे विचार से क्यों ना भारत के शीत मरुस्थलों की चर्चा की जाए।
2: अजीत जी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं सोच रही थी कि आज हम भारत के शीत मरुस्थल की चर्चा करते हैं जो लद्दाख में है। आपको याद है NCERT की ओर से मीडिया प्रशिक्षण कार्यक्रम में हम भी वहां जा चुके हैं।
1: जी हाँ, हमने उस इलाके को देखा भी है।
2: जी बिल्कुल, मुझे भी याद है। तो श्रोताओं, आज हम चर्चा करेंगे लद्दाख के शीत मरुस्थल की। इसे कोल्ड डेजर्ट भी कहते हैं। जैसा कि हमने सुना था, मरुस्थल का अर्थ सिर्फ रेत नहीं होता, बल्कि वो जगह मरुस्थल कहलाती है जहां वर्षा बहुत कम होती है। तो श्रोता, आपको बता दें कि लद्दाख में सालाना वर्षा बहुत कम होती है, लगभग 50 से 100 मिलीमीटर के लगभग।
1: लेकिन विमलेश जी, ऐसा क्यों है? मेरा मतलब है कि वहाँ यानी लद्दाख में इतनी कम वर्षा क्यों होती है?
2: अजीत जी, इसका कारण यह है कि लद्दाख का क्षेत्र हिमालय पर्वत की रेन शेडो यानी वर्षा छाया में स्थित है। हिमालय पर्वत यहाँ आने वाली वर्षा को रोकता है। अजीत जी, मुझे तो ये भी याद है कि वहाँ जाने पर हमें शुरू में सांस लेने में भी थोड़ी कठिनाई हुई थी।
1: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि वहाँ की हवा अधिक ऊंचाई के कारण बहुत पतली होती है और ऑक्सीजन कम मात्रा में मिलती है। इसलिए पहली बार जाने वालों को कुछ विशेष सलाह दी जाती है। बताइए क्या सलाह दी जाती है?
2: जी, वहाँ पहली बार जाने वाले लोगों को सलाह दी जाती है कि तेज न चलें, ज्यादा ऊंची चढ़ाई न चढ़ें और भारी शारीरिक काम जैसे ट्रैकिंग वगैरह एकदम से उत्साह में आकर न करें।
1: जी,
2: पहले वहाँ के वातावरण में अपने शरीर को अनुकूलित करें और फिर धीरे धीरे सामान्य गति में आए।
1: जी बिल्कुल सही। श्रोताओं, यहाँ का तापमान सर्दियों में -20 डिग्री सेल्सियस या इससे भी नीचे जा सकता है।
2: जी,
1: लेकिन गर्मियों के दिनों में धूप तेज लगती है।
2: जी,
1: लद्दाख का अर्थ ही है ऊंचे दर्रों वाली भूमि। श्रोताओं एक बात और आपको बता दें कि यह दुनिया के सबसे ऊंचे मोटरेबल मार्गों में गिना जाता है।
2: अब बात करते हैं यहाँ पाए जाने वाले जीवों की, खास तौर से यहाँ याक, स्नो लेपर्ड, हिमालयी भेड़िया और नीली भेड़ पाई जाती है। और हाँ, लद्दाख की झीलें पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं, जैसे पेंगोंग झील। श्रोताओं, और अब जानते हैं यहाँ के लोग कैसे रहते हैं और क्या खाते हैं। अजीत जी, अब आपकी बारी।
1: तो विमलेश जी, यहाँ के मुख्य भोजन हैं स्कू और थुकपा।
2: जी,
1: ये गेहूं के आटे से बना होता है। पावा भी यहाँ बहुत लोकप्रिय है, जो जौ के सत्तू से बनाया जाता है। यहाँ की प्रसिद्ध मिठाई खुबानी से बनती है। यहाँ लोग अपने घर मोटी मिट्टी और पत्थरों से बनाते हैं ताकि घरों में गर्मी बनी रहे। जहाँ तक खेती की बात है, यहाँ विशेष रूप से जौ और मटर जैसी फसलें उगाई जाती हैं।
2: अजीत जी, एक और रोचक बात श्रोताओं से साझा करना चाहती हूँ।
1: हाँ जरूर कीजिए।
2: वो ये कि लद्दाख में एक पेड़ बहुत अधिक पाया जाता है जिसे विलो कहा जाता है।
1: जी,
2: इनकी लकड़ी हल्की, मजबूत और लचीली होती है। इसी लकड़ी से क्रिकेट के बल्ले बनाए जाते हैं। दुनिया भर में इस लकड़ी की बहुत मांग है, इसलिए लद्दाख में इसकी खेती भी की जाती है।
1: जी, ये तो आपने बड़ी रोचक जानकारी हमें दी। विमलेश जी, आपको याद है जब हम वहाँ गए थे मैग्नेटिक हिल?
2: बिल्कुल याद है।
1: जहाँ यदि वाहनों को बंद भी कर दिया जाए या न्यूट्रल गियर में भी रखा जाए तो वो खिसकने लगते हैं।
2: बिल्कुल।
1: क्या रहस्य है इसका, जरा श्रोताओं को बताइए।
2: जी जी, ये जगह लेह कारगिल मार्ग पर स्थित है। हमने भी तो इसका अनुभव किया था।
1: हाँ?
2: लोग अक्सर सोचते हैं कि वहाँ पहाड़ियों में कोई चुंबकीय शक्ति है जो वाहनों को खींचती है, लेकिन सच्चाई ये है कि वैज्ञानिकों के अनुसार वास्तव में वाहन वहाँ अपने आप नहीं चलते। ये एक दृष्टि भ्रम या ऑप्टिकल इल्यूजन है।
1: जी श्रोताओ, दरअसल बात यह है कि वहाँ की सड़क की बनावट ही ऐसी है कि जो सड़क हल्की ढलान पर नीचे जा रही होती है वो आंखों को ऊपर ऊपर जाती दिखाई पड़ती है। इसी दृष्टि भ्रम से ऐसा लगता है कि वाहन अपने आप सरक रहे हैं। एक बात और आपको बता दें कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर गुरुद्वारा पत्थर साहिब है, जो एक दर्शनीय स्थान है।
2: श्रोताओं, लद्दाख को लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है। यहाँ बौद्ध संस्कृति, मठ, प्रार्थना चक्र और रंग बिरंगे खूबसूरत झंडे देखे जा सकते हैं। और तो और, सिंधु घाटी की सभ्यता को पालने वाली सिंधु नदी लद्दाख से ही गुजरती है। श्रोताओं, इस नदी को देखना भी हमारे लिए कभी न भूलने वाला अनुभव था।
1: जी, सुंदर नीला आकाश, रात में असंख्य चमकते हुए तारे,
2: जी,
1: रेत, बर्फ, सूखे पहाड़, झीलें और वहाँ की आध्यात्मिक संस्कृति। जब हम इन सारी बातों को देखते हैं तो हमें क्या लगता है विमलेश जी?
2: कि भारत के शीत मरुस्थल लद्दाख में हमें एक साथ मिलते हैं।
1: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी भारत के प्रसिद्ध शीत मरुस्थल लद्दाख की।
2: जी,
1: आशा है कि आपको ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। तो अब सुनिए आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से प्रश्न है,
2: लद्दाख में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने वाले उस पेड़ का नाम बताइए जिससे क्रिकेट के बल्ले या बैट बनाए जाते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: लद्दाख में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने वाले उस पेड़ का नाम बताइए जिससे क्रिकेट के बल्ले या बैट बनाए जाते हैं। भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर, और आप हमारे ईमेल पर भी अपने संदेश या प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता नोट कर लीजिए। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। और हाँ,
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: और श्रोताओ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतर यानी ऑडियो बुक्स सुनना चाहते हैं तो इन्हें आप NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल या दीक्षा पर सुन सकते हैं। दीक्षा पोर्टल पर आप पढ़ पाएंगे ढेर सारी शैक्षिक सामग्री और सुन व देख पाएंगे हमारे ऑडियो वीडियो कार्यक्रम भी।
2: जी, और अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है
1: भारत अर्थात इंडिया।
2: कक्षा 6 की समाज की अध्ययन की पाठ्य पुस्तक पर आधारित इस कार्यक्रम में रोचक ढंग से भारत देश के विभिन्न नामों के बारे में बताया गया है और उन नामों के पीछे की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का भी सप्रसंग विवरण किया गया है।
3: भारत अर्थात इंडिया।
4: दोस्तों, एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं दिल्ली के अंबेडकर स्टेडियम, जहां हो रहा है भारत और बांग्लादेश के बीच क्रिकेट मैच।
5: Wonderful shot. The scoop shot. It gets through. It's a big one. It's a huge boundary. Goes wide through the offside. He's got him. That's it. India win.
4: अनुष्का भीड़ की बातों को ध्यान से सुन रही थी। वो सोचने लगी,
6: हमारे देश के इतने सारे नाम, कोई इंडिया कहता है, कोई भारत कहता है, तो कोई हिंदुस्तान भी कहता है।
4: दोस्तों, अनुष्का का कौतूहल स्वाभाविक था। क्या आपने भी कभी इस प्रकार से सोचा? अगर सोचा तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं सोचा तो चलिए आज इस मनोरंजक और रोचक सच्चाई से पर्दा उठाते हैं। अनुष्का अपने स्कूल गई, लेकिन ये बात उसके दिमाग से नहीं गई थी। उसने ये बात अपनी सहेली जिशा से साझा की। तय ये हुआ कि वो अपने हिस्ट्री के अध्यापक से बात करेंगे। वो बात ध्यान से सुनते हैं और बोलने का मौका भी देते हैं।
6: सर, क्या हम अंदर आ सकते हैं?
7: कौन? ओ, अनुष्का, जिशा,
6: सर।
7: तुम दोनों आ जाओ अंदर आ जाओ शाबाश।
6: क्या अभी आपके पास समय होगा?
7: तुम लोग बिल्कुल ठीक समय पर आए हो।
6: सर, उस दिन हम क्रिकेट मैच देखने गए थे।
7: हाँ, वो बांग्लादेश और भारत का?
6: जी वही। सर, उस दिन लोग वहाँ कुछ बातें कर रहे थे।
7: अच्छा।
6: सर, कोई कहता था कि इंडिया जीतेगा, तो कोई कहता कि भारत ने मैच जीता।
7: और
6: कोई कहता था कि हिंदुस्तान की टीम ने कमाल कर दिया। और
7: हाँ, बोलो।
6: सर, हमारी पुस्तक में देश का नाम भारतवर्ष भी तो है।
7: बिल्कुल।
6: लेकिन सर, दूसरे देशों के इतने सारे नाम तो नहीं होते। बांग्लादेश, पाकिस्तान, जापान, अमेरिका, इंग्लैंड जैसे देशों के नाम तो एक ही है। फिर हमारे देश के इतने ढेर सारे नाम क्यों हैं?
7: बहुत अच्छा सवाल। देखो बच्चों, आज का भारत एक आधुनिक राष्ट्र है, लेकिन ये आज से 500, 2000 या 5000 वर्ष पहले ऐसा नहीं था।
6: 5000 वर्ष पहले?
7: हाँ, इसके लिए हमें हजारों वर्ष पहले के इतिहास में जाना होगा।
6: जी, लेकिन हमें हजारों वर्ष पहले की जानकारी कैसे मिलेगी?
7: अच्छा ये बताओ, तुमने ऋग्वेद का नाम सुना है?
6: जी सर, सुना तो है। ये एक प्राचीन ग्रंथ है।
7: प्राचीन ही नहीं, ऋग्वेद भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है।
6: अच्छा।
7: इस ग्रंथ से हमें अपने देश के बारे में बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिल जाती हैं।
6: जैसे?
7: जैसे इस ग्रंथ के अनुसार हमारे देश के उत्तर पश्चिम भाग में एक वैदिक समूह निवास करता था।
6: वैदिक समूह?
7: हाँ, वैदिक समूह। इस समूह के ऋषियों और मुनियों द्वारा वैदिक ऋचाओं की रचना हुई। इस वैदिक समूह का नाम भरत था।
6: भरत? भरत नाम तो हमने सुना है।
7: अच्छा, भाई भरत नाम से बाद में बहुत से राजाओं को भी जाना गया।
6: ओ, भरत। अच्छा, तो ये बात है।
7: हाँ।
6: तो क्या इसी भरत नाम से देश का नाम भारत पड़ा?
7: बिल्कुल ठीक कहा तुमने अनुष्का, इसी नाम से देश का नाम भारत पड़ा, जिसे बाद में भारतवर्ष भी कहा जाने लगा। ये वैदिक समूह भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में यानी सिंधु घाटी क्षेत्र में निवास करता था। ऋग्वेद में इस भाग को सप्त सैंधव अर्थात सात नदियों की भूमि कहा गया है।
6: अच्छा।
7: हाँ, सैंधव शब्द सिंधु शब्द से आया है।
6: मैंने पढ़ा था कि सिंधु का मतलब होता है नदी।
7: बिल्कुल सही, इसका तात्पर्य सिंधु नदी से ही है। अच्छा, ये तो बात हुई ऋग्वेद की। अब सिंधु के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात।
6: वो क्या सर?
7: वो ये कि छठी शताब्दी पूर्व एक फारसी सम्राट ने सैनिक अभियान किया और सिंधु नदी के इलाके पर नियंत्रण कर लिया। अपने लेखों और शिलालेखों में फारसियों ने भारत के सिंधु इलाके को हिद, हिदु या हिंदू कहा है।
6: फारसियों ने सिंधु को हिद, हिदु या हिंदू कहा है।

0: भला ऐसा क्यों?
1: ऐसा इसलिए क्योंकि फारसी भाषा में सिंधु शब्द का रूपांतरण हिंदू होता है।
2: अच्छा।
1: हाँ, क्योंकि स अक्षर उनकी भाषा में है ही नहीं।
0: है ही नहीं?
1: हाँ।
0: ऐसा कैसे?
1: ऐसा है, स की जगह उन्होंने ह का प्रयोग किया।
0: ओ।
1: हाँ, हिंदू। तो सिंधु रूपांतरित होकर बन गया
2: हिंदू।
1: शाबाश। लेकिन यहाँ ये जानना बहुत जरूरी है कि हिंदू शब्द से उनका तात्पर्य हिंदू धर्म से नहीं था।
0: तो फिर?
1: हिंदू शब्द एक भौगोलिक शब्द था जो सिंधु नदी या सिंधु की घाटी क्षेत्र को संदर्भित करता था।
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी जानकारी है। सर, ऋग्वेद के अलावा क्या कुछ और भी ग्रंथ है जिनसे हमें और अधिक जानकारी मिल सकती है?
1: बिल्कुल जिशा, कुछ और हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं जैसे विष्णु पुराण और महाभारत। अच्छा जरा ये बताओ, मैंने अब तक कितने ग्रंथों के नाम तुम्हें बताए?
3: आपने अब तक 3 ग्रंथों के नाम बताए।
1: अच्छा, तो कौन कौन से हैं वो 3 ग्रंथ?
0: सर, ऋग्वेद,
3: महाभारत,
0: विष्णु पुराण।
1: अरे वाह, क्या बात है, कमाल कर दिया तुमने, बहुत अच्छे। विष्णु पुराण में बच्चों हम पढ़ते हैं वो देश जो समुद्र के उत्तर में और हिमाच्छादित पर्वतों के दक्षिण में है उसे भारत कहते हैं।
0: अच्छा।
1: हाँ।
3: सर, आपने प्राचीन ग्रंथ महाभारत का भी नाम लिया था।
1: बिल्कुल।
3: क्या उससे भी हमारे देश की जानकारी मिलती है?
1: देखो, पहली बात तो ये है कि महाभारत ग्रंथ के नाम में ही भारत का नाम है।
0: अच्छा।
1: हाँ, महाभारत में पहली बार भारत को भारतवर्ष भी कहा गया है।
0: अच्छा।
1: हाँ, और साथ साथ इस ग्रंथ में एक और नाम है भारत का।
0: वो क्या?
1: बताता हूँ बच्चों, वो है जम्बूद्वीप।
3: जम्बूद्वीप?
1: हाँ, जम्बूद्वीप। महाभारत में भारतवर्ष को जम्बूद्वीप भी कहा गया है।
0: जम्बूद्वीप?
1: हाँ?
0: ये नाम भला क्यों?
1: देखो, जम्बू का अर्थ होता है जामुन। इसे जम्बुल भी कहते हैं। जामुन का पेड़ उन दिनों इस भूभाग पर बहुत अधिक पाया जाता था, इसलिए भारत को जम्बूद्वीप भी कहा गया।
0: अच्छा।
1: हाँ, सम्राट अशोक ने भी अपने शिलालेखों में संपूर्ण भारत का वर्णन जम्बूद्वीप के नाम से भी किया है।
0: सर, मैंने सुना है कि उन दिनों हमारा देश बहुत बड़ा था।
1: बिल्कुल ठीक तुमने सुना है। उन दिनों भारत में आज के बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी सम्मिलित थे।
0: इतने सारे देश?
1: हाँ, और शायद इसी कारण से भारत को महाभारत भी कहा गया है।
0: अच्छा।
3: सर, अभी तक हमने जाना कि हमारे देश को भारत, भारतवर्ष
0: और जम्बूद्वीप कहा जाता था। सर, इंडिया और हिंदुस्तान भी तो हमारे देश को कहा जाता है।
1: बिल्कुल।
0: ये नाम कैसे आए?
1: लगता है सब कुछ जानकारी मानोगे। चलो ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इंडिया नाम कैसे आया। देखो बच्चों, इंडिया नाम इंडस से आया है। तुम्हें याद है ना कि सिंधु नदी को अंग्रेजी में इंडस रिवर कहते हैं?
0: जी सर।
1: हाँ, तो अभी मैंने बताया था कि भारत में फारसी लोग आए, लेकिन आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व यूनानियों का भी हमारे देश में आगमन हुआ।
0: अच्छा।
1: हाँ, यूनानी जब हमारे देश में आए तो उन्होंने सबसे पहले सिंधु नदी को पार किया।
0: ओ।
1: और सिंधु नदी को इंडोई या इंडिके कहा।
0: ऐसा क्यों कहा उन्होंने?
1: उनके साथ भी भाषा की समस्या थी। हाँ।
3: तो इसका मतलब है कि यूनानियों के लिए सिंधु कहना मुश्किल था
0: और इंडो या इंडिके कहना ज्यादा आसान था।
1: हाँ। और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। अच्छा, तुम्हें एक बात और बता दूं। और वो ये कि प्राचीन यूनानी लोग भारत में रहने वालों को इंडोई कहते थे।
3: अच्छा। इंडोई यानी इंडिया के रहने वाले इंडोई कहे जाते थे।
1: बिल्कुल।
3: तो इस तरह से नाम पड़ा इंडिया।
1: हाँ?
3: और हिंदुस्तान?
1: देखो, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग तुर्क और मुगलों ने किया। वो जिन इलाकों से आए थे उन इलाकों के नाम के आगे प्रायः स्थान शब्द हुआ करता था, जैसे
0: अफगानिस्तान।
1: बिल्कुल सही।
3: बलूचिस्तान।
1: सही।
0: तुर्किस्तान।
1: बिल्कुल। और उज्बेकिस्तान वगैरह वगैरह। और बच्चों, शायद स्थान का अर्थ स्थान से रहा हो।
3: सर, अब हमें हमारे सवालों का हल मिल गया।
1: अच्छा?
0: हाँ, बिल्कुल।
1: अरे वाह, क्या बात है।
0: सर, आपने

0: हमें बड़ी मजेदार जानकारी दी। हमारे देश के इतने सारे नाम हैं, लेकिन हमें किस नाम का प्रयोग करना चाहिए?
1: बड़ा अच्छा प्रश्न किया तुमने। देखो, हमारे संविधान की अंग्रेजी प्रति के पहले अनुच्छेद में ही ये स्पष्ट करते हुए लिखा गया है, इंडिया दैट इज भारत। हिंदी में कहा गया है, इंडिया जो कि भारत है।
0: अच्छा।
1: हाँ, अच्छा ये बताओ, तुम्हें संविधान की प्रस्तावना याद है?
0: जी, प्रस्तावना की शुरुआत में कहा गया है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया।
1: बहुत अच्छे, तो हमारे देश का नाम हुआ भारत, जिसे इंडिया भी कहते हैं। समझ में आया?
0: जी सर।
1: शाबाश। अच्छा, आज जो भी तुमने जाना है, समझा है, उस जानकारी को तुम कल क्लास में सबके साथ बांटोगे।
0: सबके साथ?
1: हाँ, सबके साथ।
2: तो साथियों, कैसी लगी आपको अपने प्यारे देश भारत अर्थात इंडिया के विषय में ये जानकारी? अच्छी लगी ना? इतने सारे नाम शायद ही किसी और देश के रहे होंगे। आज हमने जाना कि हमारे देश का नाम है भारत अर्थात इंडिया।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम भारत अर्थात इंडिया, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम पहली उड़ान।
4: इस कार्यक्रम में विश्व इतिहास में मनुष्य की पहली उड़ान के बारे में रोचक जानकारी दी गई है, और बताया गया है कि कैसे गर्म गैस के गुब्बारे पर मनुष्य ने पहली बार उड़ान भरी। इस घटना ने भविष्य में आधुनिक वायुयानों के आविष्कार का मार्ग प्रशस्त किया।
5: आपने आकाश में उड़ते पक्षियों को तो देखा ही होगा, देखा है ना? पक्षियों को उड़ते हुए देखकर आकाश में उड़ने की लालसा मनुष्य के मन में शुरू से ही रही है, और आज मनुष्य रॉकेट, अंतरिक्ष यानों और हवाई जहाज की सहायता से आकाश में उड़ सकता है। मगर ये कैसे संभव हुआ, आइए आज हम आपको बताते हैं। आज से लगभग 200 वर्ष पहले की बात है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में दो भाई रहते थे, जोसेफ और स्टीफन, जिनकी आयु होगी लगभग 15-16 वर्ष। दोनों भाई अक्सर आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को देखते और हवा में उड़ने की लालसा किया करते। एक दिन की बात है, दोनों भाई घर में खाना खा रहे थे।
6: भाई वाह, आज तो मजा आ गया। कितना बढ़िया खाना बनाया है माँ ने, क्यों जोसेफ?
7: हाँ स्टीफन भाई, हमारी माँ से बढ़िया खाना भला और कोई बना भी सकता है?
8: तुम लोग खाना खाओगे या बातें ही करते रहोगे? जल्दी से खा लो बेटा, मुझे अभी कबूतरों को भी दाना पानी देना है।
7: अच्छा माँ, क्या मैं एक बात पूछ सकता हूँ?
8: हाँ पूछो बेटा।
7: क्या हम भी कबूतर की तरह नहीं उड़ सकते?
8: बेटा भला हम कैसे उड़ सकते हैं, हमारे पास पंख थोड़े ही हैं।
6: लेकिन माँ।
8: ओफो, तुमसे बातें करते करते मैं तो भूल ही गई कि चूल्हा भी बुझ रहा है। ठहरो जरा, जोसेफ
7: जी
8: जरा वो फूकनी तो देना बेटा।
7: अच्छा माँ, ये लो माँ।
8: ला।
6: ओ, कितना धुआं भर गया है कमरे में, जल्दी करो माँ।
7: मिल गया, हाँ मिल गया मुझे। अरे मिल गया मुझे।
8: क्या मिल गया
7: मुझे? माँ माँ माँ,
8: क्या मिल गया? क्या मिल गया
7: मुझे? मिल गया।
6: क्या मिल गया भाई, क्या मिल गया?
8: सब क्या हो गया तुम्हें बेटा, बताओ तो सही, क्या हो गया है?
7: माँ मुझे उड़ने का तरीका मिल गया। हाँ उड़ने का तरीका मिल गया।
6: जोसेफ होश में आओ भाई, क्या हुआ?
7: स्टीफन स्टीफन, माँ माँ माँ, सर इस कमरे के धुएं को देखो। हाँ इस कमरे के धुएं को देखो। इसमें इसमें क्या उड़ रहा है बताओ, बताओ उसमें क्या उड़ रहा है?
8: कुछ भी तो नहीं,
6: कुछ भी तो नहीं है।
7: ओ नहीं स्टीफन नहीं, ध्यान से देखो। हाँ ध्यान से देखो, क्या धुएं के साथ राख नहीं उड़ रही है? उड़ रही है ना?
6: वो तो है मगर
7: इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ स्टीफन कि धुआं राख को उड़ा

0: लगता है।
1: हाँ हाँ, कहते तो तुम ठीक हो।
0: तो फिर क्यों ना हम कुछ प्रयोग करें, हैं?
1: हाँ,
0: मुझे तो लगता है कि अगर हम किसी हल्के लिफाफे में धुआं भर दें तो वो जरूर ऊपर की ओर उड़ेगा।
1: हाँ, ये बात तो है। चलो चलो जोसेफ, चलो देखते हैं।
0: ठीक है, आओ मेरे साथ।
2: अरे सुनो, अरे खाना तो खाते जाओ। स्टीफन, जोसेफ, सुनो तो।
3: और फिर क्या था, दोनों भाइयों ने झटपट कई प्रयोग कर डाले। इसमें कई बार उन्हें असफलता हाथ लगी, लेकिन वो पूरी लगन से अपने काम में जुटे रहे। और एक दिन सचमुच धुएं से भरा लिफाफा छत से जा टकराया। इस प्रयोग की सफलता से उत्साहित होकर दोनों भाई और अधिक परिश्रम से अपने प्रयोग करते रहे। उनकी योजना थी एक बड़ा गुब्बारा बनाकर उसे उड़ाने की, और आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। उन्होंने एक ऐसा गुब्बारा बना ही लिया। सन 1783 सितंबर का महीना था। दोनों भाई एक बड़े मैदान में अपने बनाए हुए गुब्बारे के पास खड़े थे। इस करतब को देखने के लिए मैदान में भारी भीड़ जमा थी।

0: खड़े थे। इस करतब को देखने के लिए मैदान में भारी भीड़ जमा थी।
1: अरे
2: अरे
3: गुब्बारा गुब्बारा कहाँ उड़ेगा?
2: क्या बात है दोस्त, यहाँ तो बड़ी भीड़ है।
4: हाँ भाई भीड़ तो है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लड़के मजाक ही कर रहे हैं। अरे यार भला हवा में कोई चीज उड़ सकती है क्या?
2: अभी पता चल जाएगा, पर यहाँ तो इतनी भीड़ है कि इस तरफ से कुछ भी साफ साफ नहीं दिख पाएगा।
4: तो चलो उस तरफ चलते हैं, उधर भीड़ जरा कम है।
2: हाँ, आओ, आओ, यही ठीक रहेगा। आओ चलो।
1: ना जाने क्या करेंगे,
4: रहने दीजिए, भला कोई चीज उड़ नहीं सकती।
1: अच्छा मजा आ गया, लगता है कुछ हो गया है।
4: अरे भाई साहब जरा रास्ता दीजिए, आगे जाने दीजिए।
2: भाई साहब हट जाइए। अरे आ गए आ गए, यहाँ से हम सब कुछ साफ साफ देख सकते हैं।
4: अरे अरे वो देखो वो सामने एक बड़ा सा गुब्बारा रस्सी से बंधा हुआ है।
2: अरे ये क्या, जोसेफ और स्टीफन गुब्बारे से एक टोकरे को बांध रहे हैं। वो देखो टोकरे में, हाँ
4: अरे अरे टोकरे में तो एक भेड़ है। अरे वो देखो एक मुर्गा और साथ में एक बत्तख भी है।
2: हाँ, क्या ये भी गुब्बारे के साथ उड़ेंगे?
4: दोस्त लगता तो कुछ ऐसा ही है। अरे अरे अरे अरे वो देखो, हाँ? स्टीफन हाथ से कुछ इशारा कर रहा है।
2: हाँ? और एक आदमी गुब्बारे की रस्सी खोल रहा है।
4: अरे अरे अरे वो गुब्बारा तो ऊपर क्यों जा रहा है? अरे
2: मान गए भाई मान गए, कमाल कर दिया बच्चों ने।
4: ये क्या हो रहा है, कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही है? अरे देखो वो गुब्बारा तो वाकई ऊपर जा रहा है।
1: अरे सचमुच उड़ रहा है, सचमुच।
4: अरे वाह, अरे यार ये तो कमाल हो गया,
1: बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। देखो गुब्बारा बहुत ऊंचा चला गया।

0: तेज हवा गुब्बारे को किसी भी दिशा में उड़ा ले जाती थी। कई बार मनुष्य को इस उड़ान में अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता था, लेकिन मनुष्य ने हार नहीं मानी और वो इस दिशा में खोज करता रहा। आखिर में अमेरिका के दो भाइयों विल्बर और ऑलिवर राइट, जिन्हें हम राइट ब्रदर्स के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने हवाई जहाज का एक ऐसा नमूना विकसित किया जो पेट्रोल से उड़ सकता था, और इस तरह साकार हुआ मनुष्य का हवा में उड़ने का स्वप्न।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पहली उड़ान, और अब इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत,
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। मीडियम वेव डीटीएच ऑडियो चैनल साथी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत, और फिल्म संगीत में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म एक दूजे के लिए का एक गीत। आवाज़ें हैं अनूप जलोटा और लता मंगेशकर की। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। सुनिए ये गीत।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म शान से, आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी, आर डी बर्मन और साथियों की। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है और सुनते हैं ये गीत।

ये गाना था फिल्म शान का, और अब अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म हम का। आवाज़ें हैं मोहम्मद अजीज़ और शोभा जोशी की। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, सुनिए ये गीत।

ये गाना था फिल्म हम का, और अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म आशा का। इसकी इसमें आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी और साथियों ने, आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। सुनिए ये गीत।

इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण और मैं हूं आपके साथ जावेद खान।

0: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह है।

0: मीडियाफेव डीटीएच के ऑडियो चैनल, साथी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन और साथी वेब्स ओटीटी पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7 बजने को हैं और ये समय होता है हिंदी में समाचार का, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं। तो कृपया हिंदी में समाचार के लिए प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए नए अवसरों पर विचार किया। विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने कहा कि वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार हैं। उन्होंने बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
2: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
1: श्री टंडन ने कहा कि दोनों नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी अपने विचार साझा किए। उन्होंने भारत वेनेजुएला संबंधों को और मजबूत बनाने तथा विकासशील देशों के हितों को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। सुश्री रोड्रिगेज ने कल 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। उनके साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था और वित्त, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसा के युग का अंत किया और इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट में गृह मंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने का कार्य कर रही है। साथ ही वह लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के साथ साथ स्थानीय संस्कृति को भी बढ़ावा दे रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए फील्ड कमांडरों के वित्तीय अधिकार को दोगुना करने को मंजूरी दी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इन उपायों से 1,25,000 करोड़ रुपए से अधिक की खरीद में सुविधा होगी। मंत्रालय ने कहा कि वित्तीय शक्तियों में वृद्धि 100% तक की गई है और कुछ मामलों में यह दोगुने से भी अधिक है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और केंद्रीय सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में भारत की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार का लोकार्पण किया। इसका निर्माण मारुति सुजुकी ने किया है। इस अवसर पर श्री पुरी ने कहा कि यात्री वाहनों में फ्लेक्स फ्यूल तकनीक की शुरुआत केवल एक नए वाहन की शुरुआत नहीं है, बल्कि भारत की ऊर्जा परिवर्तन यात्रा का एक नया अध्याय है। श्री नितिन गडकरी ने कहा कि फ्लेक्स फ्यूल वाहनों से प्रदूषण कम करने, कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटाने और विदेशी मुद्रा की बचत करने में मदद मिलेगी। इससे देश को लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत हो सकती है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है और गैर जीवाश्म ईंधन उत्पादन क्षमता के मामले में विश्व के शीर्ष उत्पादकों में से एक बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इस योजना की सफलता का मुख्य कारण यह है कि देश के नागरिकों ने यह समझ लिया है कि वे अपनी छतों पर बिजली खुद पैदा कर सकते हैं। गुजरात के अहमदाबाद में आज विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के पहले संस्करण का शुभारंभ हुआ, जो वैश्विक खेलों में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस भव्य आयोजन में वर्चुअल रूप से शामिल होकर अपनी शुभकामनाएं दी है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि योगासन का खेलों में बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि यह प्रतियोगिता योग को खेल की दुनिया में नई पहचान दिलाने का काम करेगी। श्री मोदी ने कहा कि प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ी चैंपियन हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण। रात 8 बजे आप सुनेंगे समाचार सेवा विभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष स्वास्थ्य सेवा। 8:15 पर हम आपको सुनवाएंगे फिल्म संगीत। 8:30 पर आप सुन सकते हैं पीएम मोदी के 12 साल सोमनाथ अमृत महोत्सव भारत का सांस्कृतिक पुनर्जागरण। ये कार्यक्रम आरएनयू भोपाल की प्रस्तुति होगी। 10 बजे हम आपको सुनवाएंगे प्रदेश लोक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा। और अब से कुछ ही देर बाद यानी 7:21 पर आप सुनेंगे किसान भाइयों का कार्यक्रम ग्राम सभा, यानी कि ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित किया जाएगा। ये थे आकाशवाणी भोपाल और आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित होने वाले आज के शेष मुख्य कार्यक्रम। और अब हम नजर डालते हैं कल यानी 5 जून शुक्रवार को प्रसारित होने वाले आकाशवाणी मध्य प्रदेश और आकाशवाणी भोपाल के मुख्य कार्यक्रमों पर। फोन इन कार्यक्रम फोन करेगी सुने आप सुन सकते हैं दिन में 11 बजे। 12 बजे का समय है आपकी फरमाइश का। 12:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक सिस्किया की 10वीं कड़ी। 1 बजे महिला कार्यक्रम, 1:30 पर लोक संगीत का कार्यक्रम, 1:45 पर सुगम संगीत का कार्यक्रम और युवा साथियों का नियमित कार्यक्रम युवाणी रोज की तरह 5:02 पर होगा। और ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति होंगे। हम आपको एक बार फिर याद दिला दें, 1 बजे महिला कार्यक्रम, 1:30 पर लोक संगीत का कार्यक्रम, 1:45 पर सुगम संगीत का कार्यक्रम और युवा साथियों का नियमित कार्यक्रम युवाणी रोज की तरह 5:02 पर होगा। और ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति है। फिल्म संगीत का आप आनंद ले सकते हैं 2:00 PM, शाम 5:33 पर, 6:30 पर, रात 8:35 पर और रात 9:45 पर। आपकी फरमाइश कार्यक्रम होगा कल दोपहर 2:30 पर और रात 10 बजे। 6 बजे हम आपको सुनवाएंगे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम। रात 8 बजे आप सुनेंगे समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष स्वास्थ्य सेवा। रात 9:30 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम खेल जगत। इसमें आप सुनेंगे वार्ता फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2026, वार्ताकार होंगे नवेद इशरत। 10:30 पर हम आपको सुनवाएंगे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रागमाला के अंतर्गत पंडित रामस्वरूप रतौनिया का तबला वादन, ताल होगी रूपक ताल। और ये तो थे आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। और अब एक नज़र डालते हैं आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित होने वाले कल के मुख्य कार्यक्रमों पर। सुबह 7:20 पर कार्यक्रम नमस्कार भोपाल, 8:30 पर आप सुन सकते हैं फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा। 9:15 पर गांधी चर्चा, 10 बजे आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी, 10:05 पर आप सुन सकते हैं महिला कार्यक्रम महिला संसार और 10:30 पर सुबह आप सुनेंगे पंडित रामस्वरूप रतौनिया का तबला वादन जिसमें आप सुनेंगे ताल पंचम और साथ ही सवारी ताल। और कल शाम 7:21 पर किसान भाइयों का कार्यक्रम ग्राम सभा होगा। ये थे आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित होने वाले आज और कल के मुख्य कार्यक्रम। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।

0: इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में 7:10 होने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से मुलाकात कर ऊर्जा, व्यापार और निवेश पर चर्चा की। प्रधानमंत्री कल गुजरात और दमन दौरे पर 21,500 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने विश्व सिकल सेल दिवस के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग को जनजातीय क्षेत्रों में उन्मूलन गतिविधियां तेज करने के निर्देश दिए और इंदौर में 6 जून को भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार एवं निवेश फोरम का होगा आयोजन। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से मुलाकात की। बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना रहा, क्योंकि वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडारों में से एक भंडार मौजूद है। इसके अलावा खनन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग में भी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और दमन क्षेत्र का दौरा करेंगे। सूरत में वे सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और 200 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल का उद्घाटन भी करेंगे। इसके अलावा श्री मोदी शाम को दमन में करीब 3,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, जिनमें स्वास्थ्य, पर्यटन और हवाई संपर्क से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण विमान ईंधन ATF की कीमतों में आई असामान्य बढ़ोतरी का बोझ यात्रियों पर न पड़े, इसके लिए केंद्र सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता देने का फैसला किया है। वहीं पेट्रोलियम मंत्रालय ने भी आश्वस्त किया है कि देश में पेट्रोल, डीजल, LPG और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार मौजूद है और कालाबाजारी रोकने के लिए निगरानी जारी है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने इस बारे में जानकारी दी।
1: I will request all the citizens.
2: मैं सभी नागरिकों से अपील करती हूं कि वे ऊर्जा की बचत करें और उसका सोच समझकर उपयोग करें। सरकार पेट्रोल, डीजल और LPG के पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, इसलिए घबराहट में इनकी जरूरत से अधिक खरीदारी या बुकिंग ना करें। साथ ही लोगों से अनुरोध है कि वे PNG, इंडक्शन स्टोव और इलेक्ट्रिक कुकटॉप जैसे वैकल्पिक ईंधनों और संसाधन का भी उपयोग करें।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसा के युग का अंत किया और इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने वाली संस्था के रूप में कार्य कर रही है। सत्र में भाग लेने वाले पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सभी नेता एक मजबूत और अधिक समृद्ध पूर्वोत्तर के निर्माण के अपने संकल्प में एकजुट हैं। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने आज स्वास्थ्य और आयुष विभाग को 19 जून के विश्व सिकल सेल दिवस के मद्देनजर उन्मूलन गतिविधियां तेज करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों में स्क्रीनिंग, दवा वितरण और जागरूकता कार्यक्रमों की विशेष निगरानी जरूरी है। राज्यपाल ने प्रत्येक मंगलवार को आंगनवाड़ी केंद्रों में माताओं और बच्चों को सिकल सेल के कारण, लक्षण और उपचार की जानकारी देने के लिए भी कहा है। इंदौर में 6 जून को भारत लैटिन अमेरिका एवं कैरेबियन व्यापार एवं निवेश फोरम 2026 का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मौजूदगी में होने वाले इस फोरम में लैटिन अमेरिका देशों के 15 देशों के राजदूत और 350 से अधिक उद्योग प्रतिनिधि शामिल होंगे। फार्मा, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल और IT क्षेत्र में निवेश और व्यापार के अवसरों पर भी चर्चा होगी। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन

0: YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने काफिले में इलेक्ट्रिक वाहन को शामिल कर लिया है। कल उन्होंने मुख्यमंत्री निवास से स्टेट हैंगर तक पहली बार ईवी से यात्रा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईंधन बचत के संदेश को अमल में लाते हुए वे अब भोपाल में नियमित रूप से इलेक्ट्रिक वाहन से ही चलेंगे। उन्होंने कहा कि ईवी से वायु प्रदूषण नहीं होता, रखरखाव सस्ता है और ये आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ भविष्य की दिशा में एक अहम कदम है। केंद्र सरकार ने प्रदेश के निमाड़ अंचल को बड़ी सौगात देते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 347B के उन्नयन और चौड़ीकरण को मंजूरी दी है। इस परियोजना पर 4,415 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इससे बैतूल, खंडवा, खरगोन और बड़वानी जिलों में सड़क की स्थिति सुधरेगी। खरगोन के लिए 16 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड बाईपास भी बनेगा। जनजाति कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग ने स्थानांतरण नीति 2026-27 के तहत स्वैच्छिक स्थानांतरण के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इच्छुक कर्मचारी 3 से 8 जून तक EHRMS पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और अधिकतम 15 कार्यालयों का चयन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने के मौके पर बैतूल जिले की शुभ्रा खाड़े ने अपनी प्रेरक कहानी साझा की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि
2: मैं 7 साल से आजीविका मिशन में जुड़ी हूँ। वर्तमान में मैं बैंक सखी का कार्य कर रही हूँ। तो मेरी आर्थिक स्थिति खराब थी, अब आजीविका मिशन में जुड़ने के कारण मैंने जो जनरल स्टोर की दुकान खोली है उससे मुझे अच्छी इनकम हो जाती है, मेरी आर्थिक स्थिति ठीक है।
1: मध्य प्रदेश में पहली बार नगरीय निकायों और पंचायतों की मतदाता सूची पुनरीक्षण में मतदाताओं को नाम जोड़ने, कटवाने और संशोधन के लिए ऑनलाइन सुविधा दी गई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि अब तक 8,317 आवेदकों ने इस सुविधा का लाभ उठाया है। अंतिम फोटोयुक्त मतदाता सूची 18 जून को प्रकाशित की जाएगी। प्रदेश सरकार ने ग्रामीण नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए स्वामित्व अधिकार अभिलेखों के पंजीयन पर लगने वाली स्टैंप ड्यूटी और पंजीयन शुल्क को पूरी तरह से माफ कर दिया है। 3,800 करोड़ रुपये का यह पूरा खर्च अब राज्य सरकार उठाएगी। प्रदेश में अब तक 68 लाख से अधिक अधिकार अभिलेख तैयार किए जा चुके हैं और लगभग 98% ड्रोन सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो चुका है। उज्जैन की 12वीं कक्षा की छात्रा दीक्षा कुशवाहा ने मात्र 22 मिनट में चने की दाल के 12 दानों पर 12 ज्योतिर्लिंगों की पेंटिंग बनाकर वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स पर अपना नाम दर्ज कराया है। 8 मिलीमीटर आकार की इन दालों पर सूक्ष्म कला का यह कमाल दीक्षा ने महज 1 साल की मेहनत से हासिल किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस उपलब्धि पर दीक्षा को बधाई दी है। भोपाल के रविन्द्र भवन में आज शाम मशहूर शायर और पद्मश्री प्राप्त बशीर बद्र को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी के इस याद बशीर बद्र कार्यक्रम में कई बड़े शायर, गायक और फिल्म निर्माता बशीर बद्र की विरासत पर अपने विचार रख रहे हैं। थोड़ी देर में अखिल भारतीय मुशायरा शुरू होगा जिसमें देशभर के नामचीन शायर अपना कलाम पेश करेंगे। प्री मानसून बारिश और आंधी तूफान को देखते हुए मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने अपने सभी मैदानी अधिकारियों और कर्मचारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। कंपनी के प्रबंध संचालक ऋषि गर्ग ने कहा कि किसी भी आपात स्थिति में उपभोक्ता कॉल सेंटर नंबर 1912 पर संपर्क कर सकते हैं। कंपनी ने उपभोक्ताओं को भी सावधान किया है कि मानसून में हवा में नमी के कारण करंट लगने का खतरा बढ़ जाता है और घर में मजबूत अर्थिंग का होना जरूरी है। अब रुख करते हैं मौसम की खबर का। प्रदेश में मानसून से पहले ही प्री मानसून गतिविधियां जोर पकड़ चुकी हैं। बीते 24 घंटों में 29 जिलों में आंधी बारिश और कुछ जगह ओले भी गिरे हैं। श्योपुर में सबसे अधिक 1.25 इंच बारिश दर्ज की गई और कई इलाकों में जलभराव हो गया। राजधानी भोपाल में रात भर बारिश का दौर चला है और सुबह भी बूंदाबांदी होती रही। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून के 20 जून के बाद प्रदेश में दाखिल होने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश के नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला ने आज नीमच के ग्राम खेमला में निर्माणाधीन ग्रीनको हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के कार्यों का निरीक्षण किया। बैतूल में विद्युत संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए संपर्क अभियान के तहत खंडारा में शिविर का आयोजन किया जाएगा। खंडवा शासकीय आईटीआई में आयोजित युवा संगम रोजगार मेले में 265 युवाओं का विभिन्न कंपनियों के लिए चयन किया गया। नर्मदापुरम जिले में जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत पचमढ़ी के छावनी झील पर सफाई और जल संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण कटनी के द्वारा आज किरण बाल गृह कटनी में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आगरमालवा जिले के सुसनेर में 5 से 21 जून तक विशेष अभियान चलाया जाएगा और अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम के तहत राजगढ़ के प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में बीकॉम इन बैंकिंग एंड फाइनेंस एंड इंश्योरेंस में ऑनलाइन प्रवेश प्रारंभ हो गए हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

जय जवान जय किसान चौपाल कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भैयन को प्रेमचंद भैया की राम राम। और सुनाओ भैया, कैसे हो आप सभी? कुशल मंगल हो कि नहीं? भैया देखो, हम तो जो ही चाहते हैं कि सबसे पहले तो अपन को अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखना है, क्योंकि भैया खेती किसानी से जुड़े हैं और खेती किसानी को काम काज के लाने अपन को घर से बाहर भी जाने पड़ते हैं, और वो बिना जाए होत भी नहीं है। और इस समय मौसम तो आप देख ही रहे हो, क्योंकि भैया गर्मी तो इतनी ज़्यादा हो रही है कि घर से बाहर निकलने को मन ही नहीं होता है। लेकिन कहो जाता है ना भैया कि किसान के लाने तो चाहे सर्दी हो, गर्मी हो या बसकाए को मौसम हो, वो तो भैया किसान खेती किसानी के काम के कारण बाहर जाने ही पड़ते हैं। तो ई समय अगर अपन को खेती किसानी के काम काज में थोड़ा सा बदलाव कर लें तो भैया अपन काम भी कर सकते हैं और अपने मौसम को आनंद भी ले सकते हैं। जैसे कि अपन को फुनसाएँ और संजावरिया ही खेती में अपन को काम काज करने हैं, दोपहिया को भैया बिल्कुल अपन को परहेज से रखने हैं, अपन को काम नहीं करने खेतन में जाके। और संगे संगे ई समय अगर आप देख रहे हैं कि पसीना में अपने शरीर से बहुत आते हैं, तो नियमित अंतराल पर भैया अपन को पीवे को पानी है वो अपन को पियत रहने हैं, और संगे संगे ऐसी चीज़ें ज़रूर खाते रहें जिनसे अपने शरीर में ठंडी तासीर बनी रहे। जैसे आम को पना है, नींबू की शिकंजी है, मठा है, दही है, ये तो आसानी से मिल भी जाते हैं अपने अपने गाँव में आसपास में, तो भैया और अपने घर में भी होते हैं, तो इनको अपन को नियमित सेवन भी करने हैं। और पुदीना की चटनी और हरी सब्जी जो है अपन को भोजन में भी शामिल करने हैं। कुल मिला के चाहे भैया अगर छोटी सी सावधानी अपन रखें तो मौसम को भी आनंद रह सकते हैं अपन, खेती किसानी के कामकाज और घर गृहस्थी के काम भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। और ज़रूरी बात जब भी अपन को बता दें भैया कि देखो कछु दिन बाद भैया कहते हैं कि बसकाए को मौसम भी आने वाले हैं, जो अपने मानसून है वो भी आने, और गर्मी के मौसम में अपन जाना था कि बिना पानी के कौनों काम काज नहीं होते हैं। कौन कौन तो भैया अपन देखा था कि एक एक बाल्टी और एक एक कसेड़ी की पानी के लाने भैया अपन को कितनी दूर तक पैदल जाने पड़ते हैं। तो मानसून को पानी जो व्यर्थ बह के ना जाए, एक के लाने भैया अगर थोड़ा सा प्रयास कर लें, अपनों श्रमदान दे के अपने गांव के आसपास अगर कोनो बावड़ी पोखर तालाब या चेक डैम है, अगर उनको गाद हटा लें, उनकी मिट्टी जो उन्हें जमा है उनको गहरीकरण कर लें, तो जब मान लो कि भैया जो बसकाय हुई है ना, तो बसकाय जो पानी है उनमें अपन ज़्यादा मात्रा में पानी सहेज सकें, और वही पानी भैया अपन को साल भर काम भी आए। क्योंकि भैया देखो बारिश के पानी को अपन जितना ज़्यादा रोक लें तो उससे भैया जो अपने ज़मीन को जलस्तर है वह भी बढ़ जाए, और अपने नलकूप और हैंडपम्प हैं इनमें भैया अपन को वर्ष भर तक पानी आसानी से मिल जाता रहा है। तो छोटे छोटे काम है भैया अगर जो अपन कर लें ना, तो जब मान लो कि अपन अपना जो जीवन है बहुत आसान भी हो सकता है। और कहो भी जाता है ना कि भैया पानी के बिना अपन कल की कल्पना नहीं कर सकते, कहते जल है तो कल है, और ई के ना ई के बिना ना तो अपने खेती किसानी काम काज हो पे और ना ही घर गृहस्थी के, तो ई के लाने अपन को पानी बचावे को बहुत प्रयास कर रहे हैं। और अपन देखते हैं कि अगर अपने शहर में या गांव में पाइप में पानी आ रहा है नल में, तो अपन सीधे पाइप लगा के भैया गाड़ी धो रहे हैं, फर्श धो रहे हैं, अपने चौक धो रहे हैं, जो काम भैया एक बाल्टी पानी में हो सकता है उसके लाने भैया हज़ार लीटर पानी काहे के काहे अपन बर्बाद करें। जो अपनी सोच है वो अपन को थोड़ी सी बदलने हैं, पानी को सहेजने हैं, उनको कम अपन को दुरुपयोग करने हैं और उनको बचा के रखने हैं। तो भैया बताओ तो और भी करें, पहले हम आपको सुनवा देते हैं बाबूलाल कुशवाहा और उनके संगे साथी इनके स्वर में जो 900 लोकगीत।

0: भैया देखो, हम अपने कार्यक्रम में समय समय पर वार्ता और भेंट वार्ता के माध्यम से जो आवश्यक जानकारी होते हैं, चाहे वो अपनी खेती किसानी से हो या अपने पशुधन से हो या अपने भैया स्वास्थ्य संबंधित हो, वो हम आपको देते रहते हैं। तो आज भी हम आपको सुनवा देते हैं बर्मी कंपोस्ट है, भूमि की उर्वरा शक्ति कैसे बढ़ाए, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर राज सिंह कुशवाहा।
1: वर्तमान में अगर देखा जाए जितने भी रासायनिक उर्वरक हैं, चाहे DAP हो चाहे यूरिया है, उसका रेट है जो दरें हैं बहुत ज़्यादा ऊंची होती जा रही है। और साथ ही साथ जो रासायनिक उर्वरकों के साथ साथ जो जैविक उर्वरक हैं या जैविक जो पदार्थ हैं, जो जैविक खाद अगर हमारे किसान बनाते हैं तो बहुत ही अति उत्तम उपाय होगा। अपने जो रासायनिक उर्वरकों के ऊपर जो अत्यधिक निर्भरता है वो थोड़ा कम होगी। साथ ही साथ जो हम केवल DAP और यूरिया का उपयोग कर रहे हैं, जिससे हमारी जो जमीन है, जो हमारी मृदा है, जो उसका स्वास्थ्य खराब हो रहा है, अगर हम उनके साथ में जैविक उर्वरकों का उपयोग करते तो निश्चित तौर पर हमारी जो जमीन का स्वास्थ्य खराब हो रहा है वो भी अच्छा होगा। और हमारे किसान भाई भैंस भी रखते हैं, गाय भी रखते हैं और भी जानवर रखते हैं, इसमें बैल थोड़ा कम हो गए हैं। तो मेरा तो किसान भाइयों से ये आग्रह है कि जो जैव पदार्थ होते हैं उनसे हम कई तरह के उर्वरक बना सकते हैं। गोबर की खाद बनाते हैं जिसको FYM बोलते हैं, मतलब गोबर की पकी हुई खाद जो घूरे के रूप में बनाते हैं, जो कि वर्तमान में हमारे किसान भाई त्रुटिपूर्ण ढंग से उसको बना रहा है। दूसरा हमारा जो नाडिब विधि से खाद बनाई जाती है वो हमारे लिए एक उपयोगी है। और सबसे महत्वपूर्ण है जो हमारा बर्मी कंपोस्ट बोलते हैं, जो हम केंचुआ खाद बोलते हैं, उसको बनाने का तरीका ही बहुत अच्छा है और उसके जो केंचुआ है वो उपलब्ध है। तो ये तीन ऐसे विकल्प हैं कि हमारे किसान भाइयों के पास इन तीनों के लिए जैविक पदार्थ उपलब्ध है। अगर बरसात का सीजन होता है तो हरी खाद का भी हम लोग बहुत अच्छे ढंग से बना सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। एक्चुअली क्या है, हमारे किसान भाई जो घूरे वर्तमान में डाल रहे हैं, रोड के किनारे डालते हैं, शहर के किनारे डालते हैं, ऊंचे डालते हैं, नीचे में डालते हैं, वो ढेर पद्धति से लगाते हैं, वो वास्तव में गोबर की खाद नहीं है, वो पूर्णतः कचरा हो जाता। ज्यादा बरसात होती है तो पानी के साथ जो हमारे पोषक तत्व बह के चले जाते हैं। जहाँ पे आप घूरे डाल रहे हैं जो स्थान है उसको थोड़ा व्यवस्थित कर लें, अब उसका थोड़ा लंबाई और चौड़ाई में विशेष ध्यान रखें, दो गड्ढे बना लें। जैसे गड्ढे का लंबाई आप आराम से जगह के अनुसार कर सकते हैं, गहराई पे थोड़ा ध्यान रखें, गड्ढे गहराई 2.5 या 3 फुट से ज्यादा न हो, और चौड़ाई का भी थोड़ा दिखाएं कि चौड़ाई भी 3.5 से 4 फुट से ज्यादा न हो। अब दिन प्रतिदिन का जो भी हमारा कचरा निकलता है, जो जानवरों के नीचे हम भूसा बिछा देते हैं या तुई बिछा देते हैं या जो हरी खाद है, इस तरह का जो कचरा जानवरों के पीछे डाल देते हैं, गोबर में मिला के वह एक तरफ से हम बारी बारी से उसको लगाते जाए, फेंक नहीं चारों तरफ, पूरा एक हमारा गड्ढा ये भर जाएगा 4-5 महीने। भरने के बाद अगर हमारे पास पानी का साधन है तो उसमें थोड़ा पानी खींच के और थोड़ी 1 या 1.5 अंगुल उसके ऊपर मिट्टी डाल लें और देखना 3 महीने के अंदर इतना बेहतरीन जो आपका कचरा जो घूरा बना था बेहतरीन आपका खाद बन जाएगा। और जो बगल में दूसरा गड्ढा खोदा है उसमें आप जो प्रक्रिया करने लगे, जब 3-4 महीने में हमारा जो दूसरा गड्ढा भरेगा तब तक हमारा जो पहला गड्ढा था वो बिल्कुल पूर्णतः बन के तैयार हो जाएगा। और जैसे खाद तैयार हो उसको निकालिए, आप चाहे रबी में डालिए चाहे आप खरीफ में डालिए, अगर जिस पद्धति अपना लेते हैं तो निश्चित तौर के हमारे किसान भाइयों को अत्यधिक लाभ होगा। उपयोग में हमारे जानवर क्या है, घास खाते हैं, फूस खाते हैं, उसके बीज है गोबर में रहते हैं और गोबर के तत्व खत्म हो जाते हैं, वो सड़ नहीं पाता है तो उसके तत्व निकल जाते हैं तो कंडा रह गया। अगर वो हमारा पक जाता है, सड़ जाता है, उसमें जितने तत्व बाहर नहीं जा पाते, चाहे तो बाष्पीकृत होकर न जा पाए या पानी के द्वारा बह नहीं पाए, तो वो तत्व पूरे रहते पक जाती, बहुत अच्छा खाद बन जाता है। सबसे बेहतरीन हमारे किसान पास भाइयों के पास है जिसको हम केचुआ खाद कहते हैं या बर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। जिन किसानों के पास डेयरी है या 15-20 जानवर है, उन किसानों के लिए जो सतह विद है वो सबसे ज्यादा उपयोगी है। एक ऊंचा स्थान का चुनाव करें, चुनाव करने के बाद ऐसे आप पहले तो नीचे अच्छी हार्ड जो जमीन है उसको थोड़ा बढ़िया ढंग से कूट लो, थोड़ा गिट्टी उठे एक साथ थोड़ा पक्का मजबूत बना लो। फिर आपने बांस के डंडे ले चाहे लोहे के डंडे, एक छप्पर बना लो लंबाई में। इसका जी ध्यान रखना है कि जो हम सतह विद से केचुआ खाद बनाएंगे उसमें जो हम कार्बनिक पदार्थ डालेंगे, करब है, बाजरा की कड़वी है, उसको पुनः बिछा दिया, उसके ऊपर थोड़ा 1-1.5 अंगुल मिट्टी डाल दी और मिट्टी डालने के बाद जी हमारा एक तरह से बिस्तर बन गया। उसकी लंबाई आप आवश्यकता अनुसार कितनी भी रखें, चौड़ाई का विशेष ध्यान रखें 2.5 से 3 फुट से ज्यादा वो

चौड़ी ना हो और जब कार्बनिक पदार्थ डाले 2 फुट की ऊंचाई तक रहे। कार्बनिक पदार्थ में विशेष ध्यान रखें, 5-6 चीज बिल्कुल उसमें नहीं आना चाहिए। नंबर एक, एक तो पत्थर के टुकड़े, दूसरे कांच के टुकड़े, तीसरे लोहे के टुकड़े, चौथे जो अपनी जो पन्नी होती है वो, या बहुत मोटे मोटे डंठल जो सड़ी पर, ये पदार्थ बिल्कुल उसमें नहीं आना चाहिए। इससे ज्यादा हमारा खेत का नुकसान होता है और जो हमारी क्रियाएं होती है वो बाधित होती है। हमने कार्बनिक पदार्थ डाल दिया और बढ़िया 15-20 दिन का पका हुआ गोबर हो गया और लंबाई में ले लिया और थोड़ा हल्का उसमें पानी खींच दिया और आवश्यकता अनुसार जो हमारे केंचुआ है, केंचुआ ये आयसोनिया फोटेडा बहुत अच्छी किस्म है, वो कृषि विज्ञान केंद्र ग्वालियर में उपलब्ध है। अगर हमारे किसान भाई चाहते हैं तो कृषि विज्ञान केंद्र ग्वालियर से वो प्राप्त कर सकते हैं। और जो केंचुआ के एक नियम होता है कि 3 महीने में 90 दिन में 1 केंचुआ से 15 केंचुआ हो जाते। अगर हमने 1000 केंचुआ डाले तो 3 महीने में 15000 तुम्हारे वैसे केंचुआ होगा, अगर उनकी परिस्थितियां उनके अनुकूल रही तो, अगर परिस्थितियां विपरीत होती तो मर भी सकते हैं। 3 महीने बाद जो स्थिति हो जाएगी, आप चाहे कितना वर्मी कंपोस्ट केंचुआ खाद बनाए, आप उसी को मल्टीप्लाई करते जाए और ज्यादा हो जाए तो जो आपके रिश्तेदार हैं या आपके और दूसरा जो इस तरह का काम करना है उनको आप बेचिए, 500 रुपए किलो बिकता है और 50 पैसे का ये केंचुआ बिकता है, तो जिस सतह भी हो गई जो हमारे बड़े किसान कर सकते हैं। सबसे उत्तम जो केंचुआ बनाने की 4 गड्ढा विधि है, इससे उपयुक्त किसान के लिए कोई भी विधि नहीं। जिस गांव में 100% 4 गड्ढा विधि की केंचुआ पिट बन जाती है, 80% बीमारियां अपने आप खत्म हो जाएंगी। जितनी भी बीमारियां हमारे गांव में होती है, ज्यादातर एक जो हमारे घूरे देखा हुआ, साल में जब हम घूरे खाली करते हैं गड्ढे हो जाते, लाल लाल पानी भरा रहता है, मच्छर कीड़े दुनिया भर के जैसा, उससे बीमारियां फैलती। तो अगर हमारी शौच क्रिया के लिए लैट्रिन बाथरूम बन जाती है, हमारे घूरे की जगह हमारे पिटे बन जाती, तो जो मलेरिया हैजाज विभिन्न प्रकार की है, मैं निश्चित तौर पर 80% हमारे किसानों के गांव से बीमारियां खत्म हो जाएंगी। इसी एक सिंपल मेथड है, जहां भी हमारा किसान भाई घूरे डाल रहा है उसको थोड़ा ऊंचा करें। इसका एक आकार होता 12 फुट लंबा, 12 फुट चौड़ा और 2.5 फुट ऊंचा। जी हम क्या एक दीवार नमा बिल्कुल जमीन को ऊपर बनाते हैं, गड्ढा नीचे नहीं बनाता। ऐसा अपने एक गड्ढा बना लिया, उसको बीच में 4 भागों से बांट देते हैं। जब 4 भागों में बांट दो, 4 गड्ढा भी होगी। जो बीच की जो चारों दीवारें होती है उसमें छिद्र रखते हैं चारों दीवारों। हमारा ये गड्ढा तैयार हो गया। कुछ हमारे किसान भाई पक्का बनाते हैं नीचे फर्श, जबकि मेरा कहना है ऐसा तत्व भी कि पक्का नहीं बनाना चाहिए। पक्का बनाने से नुकसान क्या होता, अगर बहुत तेज पानी बरसा, ऊपर शेड नहीं है तो पानी भर जाएगा, नीचे पानी नहीं आ पाएगा, हमारे केंचुआ खत्म हो जाएगा। या बहुत तेज गर्मी पड़ी तो नीचे हमारा पक्का है, गोबर वैसे ही गर्म होता तो हमारे केंचुए भर जाएंगे। छोटे छोटे ईंट के टुकड़े या गिट्टी के टुकड़े डाले बोल्डर, उसको चारों गड्ढे में बिछा दे, उसके बाद हम करें रेत डाले, क्योंकि गड्ढों में सांस होती तो वो सांसें बिल्कुल रेत से भर जाएगी, हाथ हिलाते रेत बिल्कुल पूरा भर जाए। फिर उसके पे 2 से 2.5 इंची हम काली मिट्टी हो तो बहुत अच्छी है, कोई मिट्टी डाले, आधे फुट का हम बिस्तर बना लेते। इससे फायदा क्या होता है, अगर बहुत ज्यादा पानी बरसेगा, नीचे जमीन हमारी कच्ची है, हमने ईंट डाली है, रेत डाला, बोल्डर डाले, रेत डाला, मिट्टी डाला, पूरा पानी भरा, नीचे चला जाएगा। जी हमने बिस्तर बना लिया। अब क्या दिन प्रतिदिन का जो हमारा पदार्थ, खासकर 40 से 50 किलो प्रतिदिन जिन किसानों के जो है हमारे कार्बनिक पदार्थ में निकलता है, इसमें गोबर की खाद है, भूसा वूसा ये सब मिला के, अब जी हम दिन प्रतिदिन डालेंगे। डालने के बाद करीब 1 महीने के अंदर जो हमारा 1 गड्ढा भर जाएगा। अब हमारा 1 गड्ढा भर गया, भरने के बाद अब हम दूसरे गड्ढे डालेंगे। और जो पहला गड्ढा भरा है उसमें गर्मी रहती है, गोबर गर्म रहता है, तो चारों तरफ हम क्या काम करते हैं, पन्नी डाल देते हैं हल्की और उसको थोड़ा गीला कर देते हैं। 15 से 18 दिन काली पन्नी से हम ढकते हैं तो उसमें ऐसी क्रियाएं होती है जो उसकी गर्मी है वो खत्म हो जाती है। पन्नी हटाते हैं, हाथ डालते हैं तो गोबर गर्म हो जाता, उस समय आप उसमें केंचुआ छोड़ दीजिए। अपने घर में एक जैव उर्वरक बनाने की फैक्ट्री तैयार कर ली आपने, एक बार केंचुआ छोड़ दिए, दूसरा गड्ढा हमारा 1 महीने में भरेगा, जब तक हमारा केंचुआ उसमें भोजन प्राप्त करेंगे, खाद बनाएंगे, 1 महीना बाद उसमें थोड़ा पानी खींच के फिर वही काली पन्नी चढ़ा देंगे, उस 15-20 दिन बाद छोड़ देंगे, फिर हमारा तीसरा गड्ढा आएगा, तो तीसरा गड्ढे में ये प्रक्रिया है। जब हमारा चौथा गड्ढा भरेगा तब तक जो पहला गड्ढा था उसमें 90 से 100 दिन हो जाएगा, हमारा केंचुआ खाद बन के एकदम तैयार हो जाएगा। और जो हमारे केंचुआ है जिसको बर्म्स कहते हैं, वो पहले गड्ढे में भोजन नहीं मिलेगा, 80% से ज्यादा केंचुआ दूसरे गड्ढे में चले जाएंगे, फिर तीसरे में चले जाएंगे, फिर चौथे में चले जाएंगे। और जैसे ही हमारा पहला गड्ढा था उसको निकाले, बढ़िया एक छायादार स्थान हो उसमें उस खाद को रखें, वो हल्की थोड़ा धूप में रख देते हैं तो केंचुआ अंधेरा पसंद करता है, तो वो सब केंचुआ नीचे चले जाएंगे, ऊपर का खाद निकाल के वो आप चाहे स्टोर कर लीजिए, चाहे आप तुरंत खेत में डाल दीजिए, उसका उपयोग करिए। 12x12x2.5 का गड्ढा बनाते हैं तो प्रति माह 5 से 6 क्विंटल आपको केंचुआ खाद

0: मिलती रहेगी।
1: चीटे, चीटी, तीतर, बटेर, मोर,
0: ये बड़े ढंग से कैचुआ खाते हैं
1: अपने पास, खासकर बटेर, तीतर और जो अपने पक्षी होते हैं मोर जो खाते हैं ऐसे। आप क्या जो फटे हुए जूट के बोरे हैं जो हमने गड्ढे बनाए उनके ऊपर उन लोग बिछा देते हैं, कैचुआ नीचे रहे तो इनसे बचाव हो जाता है। दूसरी जो चीटी और चीटी की बात आती है, जो हमारा गड्ढा बना है उसके चारों तरफ हमें एक नाली बना देते हैं पक्की, उसमें पानी भर दो और कोई भी इंसेक्टिसाइड हो, क्लोरीपाइरीफास हो या कोई भी इंसेक्टिसाइड, अगर थोड़ा दो चार बूंदे डाल देते तो आपका चीटा चीटी बिल्कुल नहीं आएगा। और दूसरा जो हमारा तरीका है सबसे बढ़िया, हमारे किसान भाई घर में मिर्ची रहती है, लाल मिर्ची पिसी हुई, लाल मिर्ची लें पिसी हुई और थोड़ा आटा लें, जो हमारी चार गड्ढा विधि बनी है चारों तरफ, चारों तरफ उसकी थोड़ा लक्ष्मण रेखा जैसी बना दें, चीटी अंदर जाएंगे। मैं तो किसान भाइयों से यही निवेदन करूंगा कि जो हमारी रासायनिक उर्वरकों के ऊपर निर्भरता है उसको थोड़ा दूर करें, और दूर की जा सकती है बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर हमारा किसान भाई कठिन परिश्रम कर और प्रतिज्ञा कर ले कि मेरे को जैविक खाद अपने घर में बनाना। वो चार पांच तरीके, नंबर एक जो उनका गोबर निकलता जो घूरे डालते हैं उनको व्यवस्थित करें, नंबर दो नाडुर की खाद बनाए, नंबर तीन कैचुआ खाद बनाए, नंबर चार जब खरीफ फसल आती है उस समय हरी खाद का उपयोग करें, नंबर पांच जो बहुत अच्छे जैव उर्वरक इस समय आ रहे हैं चाहे PSB हो, चाहे एक्टोवेक्टर हो, चाहे राजीव कल्चर हो, इस तरह के जो कल्चर आए उनका उपयोग करें। निश्चित तौर पे हमारे किसान की लागत ज़्यादा रासायनिक उर्वरकों पे लग रही है वो कम होगी, और उसके साथ साथ ही जो हमारा जमीन का स्वास्थ्य खराब होगा उसमें भी सुधार होगा। तो ऐसे मेरे किसानों से आग्रह है कि जैविक खादों का निश्चित तौर पर अपनी फसलों में उपयोग करें।
2: भैया देखो, अभी आपने कितनी अच्छी वार्ता सुनी वर्मी कंपोस्ट से भूमि की उर्वरा शक्ति कैसे बढ़ाएं, और ये विषय पर जानकारी दी डॉक्टर राज सिंह कुशवाहा ने। भैया देखो, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात बताई कि अपन को जैविक खाद को घर में ही बनाने हैं, और जो रासायनिक खादन और उर्वरक जो निर्भरता है वो अपन को कम करने हैं, क्योंकि जैविक तरीके से जो अपन खाद तैयार करें, कैचुआ खाद, वर्मी कंपोस्ट खाद या नादेड़ खाद, इसे भैया देखो एक तो अपनी ज़मीन की जो उर्वरा शक्ति है वह भी अच्छी बनी रहे, और जो उत्पादन अपन में मिले उसकी गुणवत्ता भी अपन को बहुत अच्छी मिले। और आजकल तो कहा जाता है ना भैया कि सभी अपने स्वास्थ्य के प्रति इतने ज़्यादा सचेत भी हो गए हैं, जागरूक भी हो गए हैं कि सब चाहते हैं कि भैया कम खाएं लेकिन गुणवत्तापूर्ण अच्छा खाएं। तो सभी को ध्यान रखा भैया अपन को कोशिश करने हैं कि जो कैचुआ खाद है वो अपन को स्वयं बनावे को प्रयास करने हैं। अगर कोई परेशानी आए तो भैया नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक से अपन सलाह भी ले सकते हैं, और ये खिलाने भैया आजकल तो देखो आधुनिकता के युग में फ़ोन पे भी अपन को जानकारी मिल जाती है, अपन को जाने भी नहीं पड़ता है, तो इन संचार के साधनों को भी अपन को ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करने हैं। तो भैया बतकाओ तो और भी करें, अब हम आपको सुनवा देते हैं महावीर सिंह भदौरिया के सुर में जो 900 लोकगीत।

0: लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: भैया देखो, अपन को अगर शासन की कोनो योजना को अगर लाभ लेने हैं तो सबसे जरूरी है कि अपन को स्वयं जागरूक हुए, क्योंकि जब तक भैया अपन स्वयं जागरूक नहीं हुए शासन की कोनो भी योजना को अपन लाभ नहीं ले सकते हैं। जैसे भैया अगर अपने पास शासन की योजना को सीधे लाभ लेवे के लाने पैसा खुद ही सीधे अपने खाते में जाने हैं तो एक लाना जरूरी है कि अपन को जनधन खातों रखें, क्योंकि भैया आजकल देखो शासन की कोनो भी योजना को अगर सीधे लाभ अगर अपन को मिलत है तो ई में जनधन खातों होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपके पास खातों नहीं है तो भैया अपने नज़दीकी बैंक में जाके बैंक मित्र से संपर्क करके अपना जनधन खातों भी खुलवा लें। आयुष्मान कार्ड से भैया देखो कितनी अपन को लाभ हो जाता है, क्योंकि अपन देखते हैं कि बीमारी में अगर अपन आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और अपनी आय अच्छी नहीं है तो भैया अपन को परेशानी भी होता है, लेकिन शासन की जो योजना है आयुष्मान भारत में भी भैया अपन को 5 लाख तक को मुफ्त में साल भर में अपन को इलाज भी मिल जाते हैं। तो हम तो यही कहें कि भैया शासन की योजना के लाभ के लाने अपन को स्वयं जागरूक रहने, शासन तो प्रयास कर रहे हैं कि सभी भैया मुख्य धारा में अपने आप को शामिल रख सकें और सबको साथ सबको विकास भी हो सके। तो भैया देखो बतकाओ तो और भी करें। अब हम आपको सुनवा देते हैं पद्म मोहन ब्रजवासी के स्वर में जो उन्होंने सो लोकगीत

0: भैया देखो, अब आप सुन रहे थे जो नौ सौ लोग गीत। भैया स्टूडियो की घड़ी भी हमको इशारों कर रही कि हम अपने सभी श्रोता भैयन से लेने आए विदा। तो चलते हैं सभी श्रोता भैयन को प्रेमचंद भैया की राम राम, जय जवान जय किसान।
1: थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण, और लीजिए अब प्रस्तुत है समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष स्वास्थ्य सेवा। ये कार्यक्रम
1: आकाशवाणी है, प्रस्तुत है विशेष श्रृंखला। इसके अंतर्गत आज सुनिए मोदी सरकार के 12 साल, नए भारत की स्वास्थ्य क्रांति। इसमें भाग ले रहे हैं नीति आयोग के पूर्व सदस्य डॉक्टर वी के पॉल और बिलासपुर एम्स के अध्यक्ष डॉक्टर एन के अरोड़ा। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं प्रियंका अरोड़ा।
2: दिस इज आकाशवाणी। इन द स्पेशल सीरीज नाउ वी ब्रिंग यू अ डिस्कशन ऑन 12 इयर्स ऑफ द मोदी गवर्नमेंट ट्रांसफॉर्मिंग हेल्थ केयर। पार्टिसिपेंट्स आर डॉक्टर वी के पॉल, फॉर्मर मेंबर नीति आयोग, एंड डॉक्टर एन के अरोड़ा, प्रेसिडेंट एम्स बिलासपुर। मॉडरेटर इज प्रियंका अरोड़ा।
3: स्वस्थ नागरिक किसी भी सशक्त और समृद्ध राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। आरोग्यम परम भाग्यम स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम के मंत्र को आत्मसात करते हुए भारत ने पिछले 12 वर्ष में स्वास्थ्य क्षेत्र में परिवर्तन की एक नई गाथा लिखी है। स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, गरीबों के लिए उपचार की बेहतर व्यवस्था, आधुनिक अस्पतालों और मेडिकल संस्थानों का विकास तथा डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं का बढ़ता दायरा, इन सभी ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को नई दिशा और नई गति दी है। यही परिवर्तन आज करोड़ों भारतीयों के जीवन में सकारात्मक बदलाव का आधार बन रहे हैं। मोदी सरकार के 12 साल नए भारत की स्वास्थ्य क्रांति विषय पर आज हम स्वास्थ्य क्षेत्र में उपलब्धियों, चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ हैं नीति आयोग के पूर्व सदस्य डॉक्टर वी के पॉल और एम्स बिलासपुर के अध्यक्ष डॉक्टर एन के अरोड़ा। आप दोनों का स्वागत है कार्यक्रम में।
4: बहुत-बहुत
3: नमस्कार। तो जी, कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर पॉल, आपसे जानना चाहती हूँ कि पिछले 12 वर्ष में भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में आए सबसे बड़े संरचनात्मक बदलावों को आप किस रूप में देखते हैं?
4: पिछले 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जी, विजनरी लीडरशिप में स्वास्थ्य क्षेत्र में अनप्रेसिडेंटेड जो कभी नहीं हुए वो रिफॉर्म्स हुए और वो बदलाव आया है। इसके बहुत सारी डायमेंशन, लेकिन मैं सर्वोपरि अगर उन डायमेंशंस को देखूं तो जो एक्सेस टू हेल्थ केयर बढ़ी है
3: जी,
4: और जो हेल्थ केयर की वजह से जो बोझ पड़ता था नागरिक पे, खासकर जो गरीब परिवार है, इन दोनों में सुधार लाने के लिए, एक्सेस को बढ़ाने के लिए और जो आर्थिक बोझ स्वास्थ्य सेवाओं को प्राप्त करने के लिए पड़ता था, उनमें जो कमी आई है, मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी उपलब्धि वो है। इसको हम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की नज़र से भी देख सकते हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं मिले, और जब स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं तो व्यक्ति की और सिटीजन जेब के ऊपर बोझ नहीं पड़ना चाहिए। ये जो हुआ है वो जो आयुष्मान भारत के अंतर्गत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और उसी के साथ साथ उसी बजट स्पीच में 2018 के बजट के अंतर्गत आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, अब उनको हम आयुष्मान आरोग्य मंदिर कहते हैं
3: जी,
4: जो हमारी प्राइमरी केयर की व्यवस्था बनी और जो सेकेंडरी और टर्शरी केयर में हेल्थ सर्विसेज को पहुंचाने के लिए जो एक मैकेनिज्म बना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत, मैं समझता हूँ कि इन दोनों को जोड़ के देखूँ तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की तरफ जो सुधार और जो जन जन तक इसका फायदा हुआ है उसको मैं सबसे बड़ी अचीवमेंट मानता हूँ।
3: जी हाँ, यह अभूतपूर्व पहल रही है और आज भी विश्व में सबसे बड़ी योजना के रूप में मानी जाती है। डॉक्टर अरोड़ा, अगर आपसे जानना चाहें तो जन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से पिछले 12 वर्ष की सबसे बड़ी उपलब्धि आप किसे मानते हैं?
5: जैसे कि प्रोफेसर पॉल ने कहा कि एक आम व्यक्ति के जेब से आज से 12 वर्ष पहले अगर वो 100 रुपए डॉक्टर की इलाज पे या अपनी किसी बीमारी के इलाज पे खर्च करता था तो उस समय 60 रुपए उसकी जेब से जाते थे, आज ये घट करके 35-40 रुपए के बीच में आ गया है। ये एक आमूल परिवर्तन है। और दूसरी चीज जो डॉक्टर पॉल कह रहे थे, जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, ये आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इनको इस स्ट्रैटेजिक तरीके से रणनीतिक तौर पर इनको बनाया गया है कि किसी भी व्यक्ति को इस देश में 2 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चलने की जरूरत नहीं होती। यानी कि 2 किलोमीटर का जो दायरा है, रेडियस है, उस बीच में एक आयुष्मान मंदिर है
3: जी।
5: तो जिसको हम एक्सेस है या स्वास्थ्य सेवाओं की प्रति जो उसकी प्राप्ति के लिए उसकी जो सुविधा है वो उसमें बहुत जबरदस्त परिवर्तन किया गया है। दूसरा एक चीज और है, मेड इन इंडिया या भारत में निर्मित जो एक पूरा का पूरा अभियान चला है उसके अंतर्गत कई चीजें हुई हैं। और मैं यहाँ पर टीकाकरण क्षेत्र का विशेष उल्लेख करना चाहूंगा कि अब इस देश में 100% जो टीके हैं वो भारतीय दिए जाते हैं। कोविड के दौरान जो 228 करोड़ टीके दिए गए वो पूरे के पूरे भारत में निर्मित थे, और उसकी वजह से जो देश में बचाव हुआ उसके बारे में जितना कहा जाए वो कम है। एक और चीज करी गई है और जो मेड इन इंडिया की तरफ बहुत बड़ा कदम रहा है कि अनुसंधान में बहुत अधिक इन्वेस्टमेंट किया गया है, जिससे कि हमारी इलाज करने की तरीके, इलाज करने के लिए दवाइयां, इलाज करने के लिए वैक्सीन और किसी भी बीमारी के लिए अब भारत में सुविधाएं उपलब्ध कराना, उसमें आशातीत वृद्धि हुई है। आज से 12 साल पहले लोगों को बाहर जाना पड़ता था, अब किसी भी इलाज के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, चाहे आप किसी भी सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से आए।
3: जी बिल्कुल डॉक्टर अरोड़ा, और हम जब आयुष्मान भारत की बात करते हैं, विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना मानी जाती है, तो ये किस तरह से स्वास्थ्य क्षेत्र में गेम चेंजर साबित हुई है डॉक्टर पॉल?
4: हमारे देश में सुविधाओं की कमी रही कई सालों तक, उसके साथ साथ में सिटीजन को अपने आप को स्वास्थ्य सुविधाओं से जोड़ने के लिए जो खर्चा होता था उसका समाधान का तरीका निकाला गया। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 60 करोड़ हमारे जो नागरिक हैं, 60 करोड़
3: जी,
4: उनको 5 लाख का कवरेज, हर साल उनके परिवार के अंदर 5 लाख का कवरेज जो है वो सेकेंडरी टर्शरी केयर के लिए दाखिला जब होता है अस्पताल में तो वो सरकार कवर करती है
3: जी।
4: और इसके साथ साथ बहुत सारे राज्यों ने और भी अपने अपने नागरिकों को एक्स्ट्रा भी जोड़ लिया है। अब ये जो सेवाएं दी जा रही हैं ये लगभग 1900 से ज्यादा पैकेजेस की तरह से है कि आपको डेंगू का बीमारी हुई तो एक पैकेज डेंगू का है, आपको घुटने के रिप्लेसमेंट की जरूरत है एक पैकेज है। आप सोच सकते हैं कि हमारे सबसे ज्यादा जो मार्जिनलाइज्ड हमारे नागरिक भाई बहन हैं, बच्चे हैं, उनको टर्शरी केयर में हार्ट की सर्जरी, नी रिप्लेसमेंट और इवन किडनी ट्रांसप्लांट और बुखार की बीमारी, एनकेफेलाइटिस, स्ट्रोक एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ब्लड की बीमारियां, कैंसर, इन सब बीमारियों को उनको कैशलेस, उनको सामने पैसा नहीं देना है, और उनको सेवाएं मिल रही हैं 30,000 से ज़्यादा अस्पतालों में, जिनमें कि कम से कम 12,000 प्राइवेट हॉस्पिटल भी जुड़े हुए हैं। तो प्राइवेट सेक्टर को भी जोड़ दिया गया एक आम नागरिक के लिए, ये एक बहुत बड़ी इनोवेशन है। आयुष्मान भारत PMJ के अंतर्गत हर रोज 85,000 से 90,000 व्यक्ति अस्पतालों में दाखिल हो रहे हैं और उनका मुफ्त इलाज हो रहा है, रोज 80,000 से 90,000। अभी तक 10 करोड़ से ज्यादा ऐसे दाखिले हो गए हैं, 10 करोड़ से ज्यादा। देखिए कितने लोगों को ये फायदा कैशलेस कवरेज का जो हुआ है। अगर हम देखें कि इससे कितनी बचत हुई है समाज को, देश के नागरिकों को, तो ये आंकड़ा आता है 1,52,000 करोड़ का फायदा जो है वो यहाँ तक पहुँचा है। लेकिन अगर हम इसको दूसरी तरह से देखें कि इससे मेरे को रीच कैसे बढ़ी, तो जब शुरू हुआ था तो जो बेनिफिशरीज है, लाभार्थी हैं, उनमें लगभग एक 0.7% less than 1% ही बेनिफिशरीज का फायदा ले रहे थे। लेकिन जैसे जैसे प्रोग्राम मैच्योर हुआ, आपको जान के खुशी होगी कि आप 2 से 2.5% लोग, मतलब कि 2.5 से 3 गुना बेनिफिशरीज को एक्सेस अब मिल रहे हैं। तो लोग बैठे रहते थे, अब इसको अपनी सेवाओं का को लेके जाते हैं। कैंसर से पीड़ित व्यक्ति जो है, एक स्टडी हमें दिखाती है कि जिनको PMJ का कवरेज नहीं है वो टाइम पे पहुंचते हैं 30% लोग सिर्फ, और आयुष्मान भारत के जो लाभार्थी हैं वो 90% लोग टाइम पे पहुंच पा रहे हैं सेवा, क्योंकि उनको पता है कि मेरे पास ताकत है इलाज लेने के लिए। बहुत बड़ी खुशी की बात यह है कि 2024 से इस कार्यक्रम के साथ में 70 और 70 से ज़्यादा उम्र के सभी नागरिकों जोड़ दिया गया है, इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है, अमीर गरीब सब के लिए। तो ये 6 करोड़ नागरिक हैं जिनको कि एक्स्ट्रा एक आयुष्मान भारत में जगह मिली है। ये लगभग 4.5 करोड़ फैमिलीज परिवारों को बिलोंग करते हैं, और मुझे खुशी है बताते हुए कि 1 करोड़ से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन इस कार्यक्रम के अंतर्गत वयो योजना जो है PMJ की, उसके साथ जोड़ के वयोवंदन योजना में ये समावेश हुआ है। तो जो सबसे नीडी लोग हैं उनको, क्योंकि उस उम्र पे ज़्यादा बीमारियां होती हैं, तरह तरह की बीमारियां होती हैं, तो उस समाज को प्रोटेक्ट करना और इस स्कीम के साथ जोड़ना एक बहुत बड़ी बात है और उपलब्धि है। ये इतने बड़े स्केल के ऊपर रोज दाखिले हो रहे हैं और उन सबका इलाज हो रहा है और इससे गरीब की जेब पे बोझ कम हुआ है, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि उनको एक्सेस ऑफ हेल्थ केयर मिलना शुरू हो गया है।
3: बिल्कुल। और डॉक्टर अरोड़ा, अगर मैं आपसे बात करूं, आप लंबे समय से टीकाकरण कार्यक्रमों से जुड़े रहे हैं, मिशन इंद्रधनुष और कोविड टीकाकरण अभियान ने भारत के जो सार्वजनिक स्वास्थ्य तंत्र को किस प्रकार मजबूत किया है?
5: ये जब आप टीकाकरण की बात करते हैं तो पूरी दुनिया में इस चीज को सराहा गया है। 2014 में कुल 63% बच्चों में संपूर्ण टीकाकरण होता था और आज ये बढ़कर के 93-94% हो गया है। अभी NFHS का डेटा 2 दिन पहले आया है 2024-25 का, एक्चुअली उसमें डेटा 22-23 का
3: जी,
5: और उसके हिसाब से 88.7% बच्चों में संपूर्ण टीकाकरण उपलब्ध हो रहा। और इसका कारण, और आपने मिशन इंद्रधनुष का जो उदाहरण दिया कि जो बच्चा रह जाए जिसको टीका नहीं मिला हो उसको देने का प्रयास किया गया, और साथ ही साथ गर्भवती महिलाएं जिनको टिटनेस का टीका नहीं मिला उनको भी देने का। लेकिन ये टीका खाली कहने पर से नहीं है, इस कार्यक्रम में जो नवाचार किया गया कि इस देश का हर बच्चा जो टीकाकरण के लिए उसका अधिकार था उसको मैप आउट किया गया, उसकी पहचान की गई और उस तक पहुंचने का प्रयास किया गया। और यह जो प्रयास था जिसको हम माइक्रो प्लानिंग कहते हैं, ये हम सीखे खास तौर पे जब हम पोलियो उन्मूलन कर रहे थे। पूरे के पूरे टीकाकरण में हमारा अब हर बच्चा, हर महिला जो है हमारे एक तरीके से हाथ पे लिखा रहता है। और अब इसको आगे ले जाकर के UN IT प्लेटफॉर्म है जिससे कि हर एक एक हमारी रजिस्ट्री बन गई है जिसमें बच्चों को टीकाकरण दिया जाता है। लेकिन इसका मुख्य लाभ जो हुआ है कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुदृढ़ता आई है, क्योंकि अब जब मैं बच्चों के तक पहुंचता हूं, गर्भवती महिलाओं तक पहुंचता हूं, तो खाली टीकाकरण नहीं है, उनके स्वास्थ्य से संबंधित बाकी जो समस्याएं हैं उनको भी वहां तक लेके जाने का प्रयास किया जा रहा। साथ ही साथ जो ये माइक्रो प्लान वाला सिस्टम है, इसका प्रभाव हमारी जो क्रॉनिक बीमारियाँ हैं, आयुष्मान आरोग्य मंदिर के द्वारा ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये खास तौर पर 2 बड़ी बीमारियाँ हैं
3: जी।
5: ये भी अपने आसपास के जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर के चारों तरफ लगभग 5,000 की पॉपुलेशन होती है, वहां तक पहुंचाने में भी इसी उपक्रम का उपयोग किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के जो भी नवाचार किया जा रहा है टीकाकरण में, उसका प्रभाव खाली बच्चों की और महिलाओं की स्वास्थ्य सेवाओं पर सुदृढ़ नहीं हुआ है, लेकिन बाकी स्वास्थ्य सेवाओं पर भी प्रभाव पड़ा है। और मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि इस समय जो भारत का टीकाकरण कार्यक्रम है वो हमारी सारी की सारी सरकारी जो भी हमारे कार्यक्रम हैं, अभियान हैं, उसमें सबसे ज़्यादा कवरेज या पहुंच जो है टीकाकरण कार्यक्रम की है। इस देश के लगभग 97% जो टीकाकरण के अधिकारी हैं उन तक कम से कम एक टीका लग चुका है। तो यही एक रास्ता है जिससे कि बाकी जो सेवाएं हैं उनको भी पहुँचाया जा सकता है।
3: बिल्कुल डॉक्टर पॉल, अभी डॉक्टर अरोड़ा ने आयुष आरोग्य मंदिरों की बात की और बहुत ही महत्वपूर्ण है प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिहाज से, और अभी देश में 1,70,000 से अधिक हमारे यहाँ आयुष्मान आरोग्य केंद्र हैं। तो अगर बात करें आयुष्मान भारत जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, उसका विस्तार किया जा रहा है ताकि जो आयुर्वेद है और आयुष उपचारों को उसमें शामिल किया जा सके, तो सरकार कैसे आधुनिक और पारंपरिक चिकित्सा को एक साथ लेकर चल रही है?
4: आपके सवाल में 2 हिस्से हैं। पहले मैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर की जो बात कही है उसको थोड़ा आगे बढ़ाना चाहूँगा। किसी भी देश में स्वास्थ्य सेवाओं में जो प्राइमरी केयर होती है, प्राथमिक सेवाएं जो होती हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप में प्राथमिक सेवाओं में जो सुदृढ़ता आई है, हमारे सब सेंटर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर सालों से काम निभा रहे थे बिल्कुल लिमिटेड तरीके से, जितना भी कर पा रहे थे लिमिटेड था। 2018 में आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जिनको आज हम आयुष्मान आरोग्य मंत्र कहते हैं, उनकी संरचना, उनकी सोच लेके आए, जो एक लिमिटेड प्राथमिक सेवाएं होती थी, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ या संक्रमित बीमारियों के, इन्फेक्शियस बीमारियों, कम्युनिकेबल डिजीज की, वो तो करना ही है, उसमें भी और डेप्थ और इंटेंसिटी लेके आए। लेकिन जो नहीं हो रहा था, जैसे कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जो हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, डायबिटीज़ की बीमारी इतनी प्रोमिनेंट है, कैंसर, अब ये सेवाएं प्राथमिक सेवाओं में आयुष्मान आरोग्य केंद्र में निहित हो गई कि हम इनको एक सीमित तरीके से, सीमित इन द सेंस कि पीरियोडिक, इतने साल के बाद हर व्यक्ति का एक चेकअप होगा, हर साल ब्लड प्रेशर चेक होगा, हर साल शुगर चेक होगी डायबिटीज़ के लिए, और कैंसर तीन साल में, पाँच साल जैसा प्रोटोकॉल है, इस पर तीन कैंसर, मुँह का कैंसर, कैंसर सर्विक्स, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर लेडीज में, और ब्रेस्ट कैंसर, स्तन का कैंसर, इसकी सबकी स्क्रीनिंग होगी। इसके अलावा मेंटल हेल्थ को साथ में जोड़ा गया, आई, आंख का इलाज, ENT, कान का इलाज, नाक का इलाज, डेंटल हेल्थ, फिर एल्डरली केयर को भी जोड़ा गया इसमें। तो 12 पैकेजेस बने, शुरू के 5 पैकेजेस, 4 पैकेजेस के बजाय उसका आयाम बढ़ गया। अब और इंटरेस्टिंग बात देखिए, 170,000 ये बने, उसमें दो तरह के हैं, एक सब सेंटर लेवल का होता है 6,000 पॉपुलेशन के लिए, और एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर का होता है, लगभग 30,000 का उसका दायरा होता है। कुल मिला के ये यूनिट बन जाता है, एक PHC वाला आयुष्मान आरोग्य मंदिर और 5 या 6 या 4 या 5 सब सेंटर वाले आयुष्मान आरोग्य मंदिर बन जाता। अब बिल्कुल आश्चर्य भी होगा आपको, 120,000 नए मिड लेवल प्रोवाइडर्स, इनको करने के लिए टीम को बढ़ाया गया। हमारी पुरानी टीम थी आशा वर्कर थे एक गांव में लगभग 1,000 की पॉपुलेशन पे, फिर हमारे पास ANM थे, कहीं कहीं मेल हेल्थ वर्कर होता था, लेकिन 120,000 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स को लगाया गया है। ये इतनी रेवोल्यूशनरी बात है कि इतने संख्या में एक ह्यूमन रिसोर्स को प्राइमरी केयर के पीछे लगाया गया, और ये टिपिकली BSc पास हमारी नर्सेज होती हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, और सब जगह पे टेलीमेडिसिन का प्रावधान हुआ, सब जगह पे 100 से ज़्यादा दवाइयाँ, सब सेंटर वाले में 105 दवाई और प्राइमरी हेल्थ सेंटर में 170 फ्री मेडिसिन, सब सेंटर वाले में 14 डायग्नोस्टिक टेस्ट फ्री, और PHC वाले में 42 से ज़्यादा फ्री डायग्नोस्टिक टेस्ट का प्रावधान किया गया है। तो सारे समाज को, सारे जितनी पॉपुलेशन है उसको एक सूत्र में बांध के कमिटमेंट है कि हम इनका चेकअप करेंगे, कमिटमेंट है कि हम उनको याद दिलाएंगे कि दवाई आपको फ्री मिल रही है, दवाई जब ख़त्म होती है तो अगली दवाई आप लीजिए, ज़रूरत होगी तो टेलीमेडिसिन के द्वारा जोड़ा जाएगा, और जो बाकी सेवाएं शुरू से हैं, इम्यूनाइजेशन है, मदर चाइल्ड हेल्थ है, TB कंट्रोल है, लेप्रसी, ये जो प्रोग्राम वो तो चल रही है, उनमें भी ताकत है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस प्लानट पर सबसे बड़ा जो प्राइमरी हेल्थ केयर का जो एक रेवोल्यूशनरी काम हो रहा है एवर इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, वो आज हमारे देश में हो रहा है, और ये बहुत दूर तक हमें लेके जाएगा, क्योंकि क्रॉनिक बीमारियों को बचाने का तरीका सिर्फ यही होता है कि या तो वैसे ही हम अपने आप को, अपना लाइफस्टाइल ठीक करें, नहीं तो हम डिटेक्ट करें, और प्राइमरी हेल्थ के द्वारा डिटेक्शन भी हो, प्रिवेंशन भी हो, हेल्थ प्रमोशन भी हो, और ज़रूरत पड़े तो फिर ट्रीटमेंट भी हो, जिसमें फिर PMC जुड़ जाता है।
3: बिल्कुल, देखा जाए इतनी बड़ी आबादी है हमारे जैसे देश की, तो घर घर जाकर इस चीज़ की जांच करना और उनको बताना, रोकथाम के लिए उपाय बताना, तो बहुत बड़ी बात है।
4: दूसरी बात आपने कही कि हमें ट्रेडिशनल मेडिसिन को जोड़ा गया, बहुत बड़ी बात है
3: जी।
4: ये हिस्टोरिक जब देखा जाएगा तो हिस्ट्री में ये माना जाएगा कि प्रधानमंत्री जी के आने के बाद में जो भारत का अपना सिस्टम थे, आयुर्वेद था हमारा, सिद्ध है हमारे पास, यूनानी है, ये सब हमारे भारत में पनपे हुए सिस्टम है, ये इन सब के जो योग है वो भी स्वास्थ्य के लिए भी और स्वास्थ्य से भी ऊपर का है, वो उन सब को एक मेन स्ट्रीम में लाना, उनको लिए बजट प्रदान करना, उनके सिस्टम को स्ट्रेंथन करना और उनको एक इंटीग्रेटिव अप्रोच में जोड़ना, और को जो बढ़ोतरी मिली है वो बहुत बड़ी बात है कि दोनों का समावेश हो, आधुनिक कार्यक्रम, आधुनिक पद्धति का भी हो और ट्रेडिशनल का भी हो, ताकि दोनों मिलके एक व्यक्ति को, एक नागरिक को वो दे पाएँ जो उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा, स्वास्थ्य रहे, बीमारियाँ नहीं हो, मन भी अच्छा हो, तन भी अच्छा हो और आत्मा भी अच्छा हो, इन सब का जो जोड़ इंटीग्रेटिव अप्रोच में लेके आए हैं, ये भारत का मॉडल जो है ये दुनिया देखेगी। और आयुर्वेद का जो प्रचलन है वो बड़ा है, आयुर्वेद की जो दवाइयाँ हैं उनकी एक्सेप्टेंस बढ़ी है, हमारे एक्सपोर्ट बढ़े हैं, और बिल्कुल ये मेन स्ट्रीम में दोनों को ले जाने का जो माहौल बना है और जो ताकत आई है ये भी एक अनप्रेसिडेंटेड
3: है। बिल्कुल एक साथ ले जाना तो बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर अरोड़ा, हम जैसे बात कर रहे थे टीकाकरण की भी, तो इन दिनों सरकार जो कैंसर है उसकी डिटेक्शन, अर्ली डिटेक्शन पर, स्क्रीनिंग पर बहुत ध्यान दे रही है और खासकर जो सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए राष्ट्रव्यापी HPV टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है, तो आप आज के परिप्रेक्ष्य में इसे कितना महत्वपूर्ण मानते हैं?
5: वो HPV वाला टीकाकरण है और इसके अलावा डॉक्टर पॉल ने तीन कैंसर्स के बारे में बताया। एक तो महिलाओं के बच्चेदानी के मुंह वाला कैंसर जिसको सर्वाइकल कैंसर है, उसी के लिए वैक्सीन है ये।
3: जी।
5: उसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर और मुंह का कैंसर, और एक तीसरे कैंसर के लिए वैक्सीन ऑलरेडी दी जा रही है जो हेपेटाइटिस बी है, उसकी वजह से लिवर का कैंसर हो जाता है। तो कैंसर की तरफ जो है, क्योंकि जैसे कि हम सबको मालूम है कि पिछले कुछ समय में हम सब लोगों का ध्यान बहुत अधिक आकर्षित हुआ है कैंसर की बीमारी की तरफ, उसकी स्क्रीनिंग के लिए, जल्दी पहचान के लिए, फिर इलाज के लिए, और इस दिशा में बहुत सारा काम किया गया है। एक तो स्क्रीनिंग के बारे में डॉक्टर साहब ने बताया, लेकिन साथ ही साथ एक चीज़ और हुई है हमारे देश में इस पिछले 12-13 साल में। एम्स का संख्या एक से बढ़कर के इस समय 23 एम्स हो गए, जो अपने आप में एक गजब की चीज है। कि और ये एम्स बड़े शहरों में नहीं करे गए, फॉर एग्जाम्पल झारखंड में देवघर करके एक जगह है, कई लोगों को मालूम भी नहीं होता, मतलब ऐसी जगह किया है जहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन या पिछड़े इलाकों में किया गया है। हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर में है, इसी तरीके से JNK में दो हैं और बाकी पूरे कंट्री में इस तरीके से करे गए, और खास तौर पे ऐसे क्षेत्रों में किया गया है एम्स को एस्टैब्लिश, जहां से ज्यादा लोगों के पास टर्शियरी केयर, जो सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो, और इनमें कैंसर के इलाज के लिए बिल्कुल आधुनिकतम मशीनें उपलब्ध हैं। इन सारे में ये सब नए इंस्टीट्यूशन है, उसके बावजूद कैंसर की तरफ विशेष ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही साथ अनुसंधान इस तरीके से किया जा रहा है कि जो क्षेत्रीय और स्थानीय समस्याएं हैं, और उसमें हमारे कुछ कैंसर स्थानीय तौर पे बहुत होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाएं तो लेरिंजियल कैंसर, मुंह का कैंसर बहुत कॉमन है और सर्वाइकल कैंसर भी बहुत ज्यादा है, तो उन क्षेत्रों में उन पे विशेष तौर पे ध्यान दे करके उसकी स्क्रीनिंग है, उसके बचाव के लिए क्या तरीका किया जाए, उसके इलाज के लिए क्या किया जाए। और अब ये जो HPV वैक्सीन के बारे में आपने कहा, ये हमारी बच्चियों के लिए 9 से 14 साल की लड़कियों के लिए है, और ये वैक्सीन इतनी सुरक्षित है, और वैक्सीन मिलने के बाद कैंसर, सर्वाइकल कैंसर या महिलाओं के बच्चेदानी का मुंह का कैंसर प्रैक्टिकली खत्म हो जाता है। इनफैक्ट WHO की तरफ से ये मुहिम चलाई जा रही है कि ये वैक्सीन के साथ साथ अगर हम स्क्रीनिंग और इलाज करते हैं तो अगले 15-20 साल में इस समस्या से निजात मिल सकती है। तो कुल मिलाकर कैंसर की तरफ जो है बहुत बड़ा ध्यान दिया जा रहा है। कुछ बाकी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी हैं, बाकी सरकार जिनको सहायता कर रही है, जैसे टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट है, इनके चारों तरफ पूरे देश में शाखाएं बनाई जा रही हैं, और कुल मिलाकर हर एक प्रदेश में कैंसर का एक रीजनल सेंटर बनाया गया है, जिससे कि लोगों को दूर दराज चल करके जाने की जरूरत ना पड़े और घर के पास ही ये सुविधाएं उपलब्ध हो।
3: बिल्कुल डॉक्टर पॉल, अगर हम आज देखें, आज भारत डिजिटल स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत तेजी से विकास कर रहा है, तो जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है और जो स्वास्थ्य ID जैसी पहल है, वो आम नागरिक के लिए जो स्वास्थ्य सेवाओं को किस तरह से सरल और प्रभावी बना रही है?
4: भारत का जो डिजिटल हेल्थ की तरक्की हुई है वो दुनिया में बिल्कुल अलग और शायद सबसे आगे की तरक्की की तरह मानना चाहिए। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन शुरू किया गया और उसके जो डिफरेंट स्वरूप हैं उसमें, एक है कि हमारे पास हर नागरिक का इवेंचुअली एक डिजिटल आइडेंटिटी होगा, उसको हम आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट कहते हैं, आभा। तो आपको हैरानी होगी, 87 करोड़ व्यक्तियों का, नागरिकों का आभा आइडेंटिटी आज हमारे पास अवेलेबल है, 87 करोड़, 145 करोड़ में से। इसका क्या फायदा है कि इस सिस्टम के द्वारा, इस आइडेंटिटी के द्वारा जो मेरे हेल्थ के रिकॉर्ड्स हैं वो उसके ऊपर लोड हो सकते हैं, वो पुराने नए अगले सब जुड़ सकते हैं, और जब किसी ने इसको देखना है और प्रस्तुत करना है और रिकॉर्ड की तरह भी है तो वो डॉक्टर साहब उसको देख के फैसला कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, और जैसे इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स हमारे और से और लोड होते जाएंगे, ये एक इनोवेशन का भी जरिया बनेगा, और इसमें बहुत सेवा की ईज जो है, ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ एक्सेसिंग हेल्थ, वो अचीव होगी। इसमें फिर जो टेली मेडिसिन में जो तरक्की हुई है, जैसे मैंने बताया कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर में टेली मेडिसिन हो गया है, हमारे पास ई संजीवनी एक टेली मेडिसिन है, रोज हजारों कंसल्टेशन उसके ऊपर होती हैं, हजारों, और उसमें इतने डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं। उसके अलावा प्राइवेट स्पेस में टेली मेडिसिन हो रही है, इंस्टीट्यूशंस में एक रेवोल्यूशन आ गई है टेली मेडिसिन। उसके और डायमेंशन भी हैं कि हॉस्पिटल की रजिस्ट्री बनेगी, हेल्थ प्रोफेशनल्स की रजिस्ट्री बनेगी, वो सब काम हो रहा है। लेकिन जो डिजिटल हेल्थ है वो एक हिस्सा बन चुका है हमारे देश में हेल्थ सिस्टम का। हम डिजिटल हेल्थ को इस्तेमाल करते हुए अपने प्रोग्राम्स को लागू करते हैं, हम बेनिफिशरीज को चिन्हित करते हैं, हम बेनिफिशरीज को फायदे के साथ जोड़ते हैं, उनको ट्रैक करते हैं। सो डिजिटल हेल्थ में जो इतना बदलाव आया है और जो उसकी वजह से हेल्थ की एक्सेस बढ़ी है, एक्यूरेसी बढ़ी है, और जो इसका फ्यूचर पोटेंशियल है वो बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है। और इसके आगे चलते हुए जब इस टेक्नोलॉजी को हम एआई के साथ लिंक करेंगे, इस टेक्नोलॉजी के और सॉल्यूशंस होंगे, तो मुझे लगता है कि भारत बिल्कुल अग्रणी देशों में होगा इस काम में।
3: डॉक्टर अरोड़ा, आई जस्ट वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन रिगार्डिंग मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ इशू। व्हाट प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ इंडिकेटर्स ड्यूरिंग द लास्ट 12 इयर्स?
5: वी हैव जस्ट सीन लास्ट टू डेज सम ऑफ द रीसेंट डेटा। One of the key issues which has been bothering all of us was stunting in children. And stunting has been traditionally recognized as the quality of health services. And during last, between NFHS 5 and 6, I think the stunting has decreased by 12 or 14 percent points. Now, this is remarkable because this is, jisko kehte hain, bilkul phasi hui cheez thi, jisko ठीक करने में बहुत ही मेहनत लग रहा था। और ये देश भर में पोषण कार्यक्रम शुरू हुआ, महिलाओं का एम्पावरमेंट, उनके पोषण पे विशेष ध्यान देना, उस दिशा में जो काम हुआ है। तो अब हमने देखा है कि बच्चों में जो स्टंटिंग, हमारे यहाँ लगभग 50% बच्चे अपनी पूरी ऊंचाई को प्राप्त और लंबाई को प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, वो अब आ गए हैं 29% पे लगभग। लेकिन अभी काम करने की जरूरत है, वो है अनीमिया, खून की कमी है। अब वो गर्भवती महिलाएं हैं, हमारी किशोरी बिटिया लोग हैं और बाकी बच्चों में ये अनीमिया की समस्या ऐसी है। इसकी तरफ जो है अनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम आरंभ किया गया है और उस तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन वो विकास में और मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि देश के डिफरेंट हिस्सों में अनीमिया के कारण अलग अलग हो सकते हैं और खाने में खासतौर पे उस चीजों का विशेष ध्यान रखना है। तो कुल मिलाकर के, और एक तीसरी चीज जो महिलाओं के लिए विशेष तौर पे रहा है कि एक समय था जब हमारे यहाँ केवल 27% महिलाएं अपना प्रसव जो है एक संस्था में करती, चाहे सरकारी चाहे प्राइवेट, आज वो पढ़ करके लगभग 95% हो गया है। ये भी एक अभूतपूर्व उपलब्धि है और इसकी वजह से नवजात शिशुओं की मृत्यु, असमय मृत्यु से उसको कम किया गया है। और साथ ही साथ जो हमारी महिलाओं की मृत्यु हो जाती थी, मैटरनल मोर्टैलिटी, वो एकदम नीचे आ गई है। तो कुल मिलाकर के हम देखते हैं कि जो हमारी माताएं हैं और बच्चे हैं, उनके स्वास्थ्य में जो प्रोत्तर विकास हुआ है, उस विकास में एक तेजी आई है, मृत्यु दर में कमी हुई है, चाहे वो माँ हो चाहे नवजात शिशु हो। और इसमें भी हम लोग पूरी कोशिश की जा रही है कि 2030 तक, उससे पहले ही जो हमारे SDG गोल्स हैं उनको हम प्राप्त कर सकें और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उन चीजों की उपलब्धि प्राप्त कर सकें जिसमें ज्यादातर देश प्राप्त नहीं कर पाए हमारी तरफ।
3: बिल्कुल, अगर डॉक्टर पॉल आपसे बात करूं, कोरोना के टाइम की जब कभी याद आती है तो अब भी जैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन उस समय जो भारत की रणनीति थी उसको पूरे विश्व में सराहा गया, दो इट वाज अ मेजर चैलेंज फॉर अस। सो व्हाट मेजर स्टेप्स हैव बीन टेकन टू स्ट्रेंथन इंडियाज हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सिंस द COVID-19 पेंडेमिक?
4: उसके बाद में हमने अपनी व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ किया, एक वन हेल्थ मिशन देश में लॉन्च किया गया। उसका तात्पर्य यह है कि जो महामारियां हम अभी देख रहे हैं पिछले दशकों में, और कोविड की महामारी को भी देखा और आगे देखते हैं, तो ये लगता है कि महामारी का जो ओरिजिन है, जो वायरस है, वो एनिमल किंगडम से आता है, बैट से, चमगादड़ से आता है, या बर्ड से आता है, चिकन से आता है। अब इन सब चीजों को समझते हुए क्लियर हो गया है कि हम एनिमल किंगडम से अलग नहीं है, हम वाइल्ड लाइफ के सिस्टम से अलग नहीं है, हम जो हमारा लाइफ स्टॉक है, घरेलू जानवर है, उनसे अलग नहीं है, हम एनवायरमेंट, जंगल, इन सब से सभी जुड़े हुए। तो वन हेल्थ के अप्रोच के द्वारा इन सब सेक्टर्स को और इन सब डायमेंशंस को जोड़ के एक जो मिशन बनाया गया है, उनके अंतर्गत जो हमारा सर्वेलेंस सिस्टम है कि कहाँ पे क्या बीमारी हो रही है, पशु में भी क्या हो रही है, ह्यूमन में भी क्या हो रही है, उसको जीनोमिक लेवल तक जाके समझना और उसके बारे में देखना कि वो कैसे प्रोग्रेस हो रहा है, उसको कंटेन कैसे करना है। तो ये एक होल ऑफ गवर्नमेंट का एक सिस्टम वन हेल्थ के अंतर्गत बनाया गया है। हमारे सर्वेलेंस की पद्धतियों को स्ट्रांग किया गया है, हमारे जो इंडस्ट्री है और साइंस एकेडमिया का सिस्टम है उनको अलर्ट करके उनकी अप्रोच करा गया है कि जो वायरसेस महामारी का रूप दे सकते हैं या उनसे मिलते जुलते हैं, उनके लिए अपनी रिसर्च को बढ़ाओ, उनके लिए तैयार रहो कि पहले से ही वैक्सीन की रिसर्च हमारी बहुत आगे तक हो, ताकि अगर मुसीबत आती है तो हम जल्दी से जल्दी 100 दिन के भीतर वैक्सीन को पैदा करने की ताकत रखें। इसके अलावा जो रिस्पांस है ग्राउंड से, जो रिस्पांस है हमारा, जो एक IDSP का सिस्टम है, 200,000 से भी ज्यादा जगह से हमें इन्फॉर्मेशन आती है, उसको सशक्त किया गया है। सिंड्रोमिक अप्रोच ICMR ने डिटेक्ट करने का सिस्टम को सशक्त किया गया। वेस्ट वाटर सर्विलेंस भी करा जाए कि सुएज में क्या वायरसेस आ रहे हैं। काफी बड़े तौर पे इन सारे को पिछले लेसन को लेकर और आज की साइंस को जोड़ते हुए हमने अपनी व्यवस्थाओं को बहुत स्ट्रांग किया है, और ये जो फ्यूचर के लिए हमारी बायो सिक्योरिटी है, फ्यूचर के लिए हमारी जो हेल्थ सिक्योरिटी है, उसके लिए ये स्टेप जो है पूरे तरीके से लिए जा रहे हैं।
3: बिल्कुल डॉक्टर पॉल, अगर बात करें कि आम आदमी को क्या चाहिए, अच्छी शिक्षा, आवास मिल जाए और अच्छी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हो, और किफायती दाम पर जब आपको दवाएं मिलती हैं तो उससे बड़ी बहुत ही सुखद एहसास नहीं हो सकता एक आम आदमी के लिए। तो जन औषधि केंद्र ऐसे में कितने महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं।
4: जन औषधि केंद्रों के द्वारा हाई क्वालिटी जेनेरिक मेडिसिन जो गुणवत्ता में पूरी उतरती है उनको उपलब्ध किया जाता है। देश में 19,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्रों का जाल बिछा हुआ है और बहुत तेजी से इसको 25,000 तक लगाने की प्लान है। इसमें हर रोज 10,00,000 से ज्यादा व्यक्ति अपनी दवाइयां खरीदते हैं
3: जी।
4: किफायती दाम पे मिलती हैं। मार्केट में जो रेट होता है उससे आधी और कई दवाइयां तो सिर्फ 10% तक भी नीचे उनको उसका प्राइस से मिलता है। बहुत फायदा होता है। अगर हम देखें जब से ये प्रोग्राम चालू हुआ है तो लगभग 40,000 करोड़ रुपए की बचत भारत के नागरिक समाज को इस कार्यक्रम की वजह से उपलब्ध हुई है। और ये कार्यक्रम के द्वारा जो जन औषधि केंद्र हैं ये सब जगह, सब प्रदेशों में, सब जिलों में इसका डायमेंशन दिखाई देती है, इनकी प्रेजेंस दिखाई देती है। और दवाइयों के अलावा जो मेंस्ट्रुएशन के लिए पैड्स की भी उपलब्धि की गई है मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए, और जब से ये वाला कार्यक्रम शुरू हुआ है 105 करोड़ से ज्यादा सुविधा नैपकिन्स जो है, मेंस्ट्रुअल नैपकिन दिए गए जिसकी कीमत सिर्फ 1 रुपया है। तो ये दो काम कर रहा है, एक तो गुणवत्ता की दवाइयां मिल रही हैं, दूसरा व्यक्ति को बचत हो रही है, और तीसरा इसकी वजह से एक्सेस बढ़ती है, व्यक्ति सेवाएं ले पाता है, इस्तेमाल करता है तो बीमारी रुकती है, और उसका जो जायजा है वो हम रुपयों में नहीं ले सकते। इतना बड़े भले का ये कार्यक्रम है।
3: बिल्कुल श्रोताओं, नए भारत की जो स्वास्थ्य क्रांति की यात्रा है केवल नीतियों और आंकड़ों की कहानी नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन में आए वास्तविक परिवर्तन की गवाही भी है। डॉक्टर पॉल और डॉक्टर अरोड़ा, आप दोनों का धन्यवाद इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए।
5: बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।
1: विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोदी सरकार के 12 साल, नए भारत की स्वास्थ्य क्रांति। इसमें भाग ले रहे थे नीति आयोग के पूर्व सदस्य डॉक्टर VK पॉल और बिलासपुर एम्स के अध्यक्ष डॉक्टर NK अरोड़ा। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी प्रियंका अरोड़ा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप NewsOn AIR और यूट्यूब चैनल NewsOn AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
2: In the special series, you were listening to a discussion on 12 years of the Modi government transforming healthcare. Participants were Dr. VK Paul, former member Niti Aayog, and Dr. NK Arora, president, AIIMS Bilaspur. Moderator was Priyanka Arora. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashwani. You can listen to it on our mobile app, News on AIR. This program is also available on our YouTube channel, News on AIR Official.
0: अभी आप सुन रहे थे समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष स्वास्थ्य सेवा। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।

इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। लीजिए कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। आकाशवाणी भोपाल के लोकप्रिय कार्यक्रम ग्राम सभा में रविवार 7 जून 2026 को शाम 7:30 बजे से 8 बजे के बीच सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। हेलो ग्राम सभा, इसमें विषय होगा मानसून के आगमन पर बगीचे और उद्यानिकी फसलों के बारे में जानकारी। इस कार्यक्रम में जो श्रोता अपनी समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान चाहते हैं वो 7 जून 2026 को शाम 7:30 बजे से 8 बजे के बीच आकाशवाणी भोपाल के फ़ोन नंबर से 2660902 और 2660903 पर फ़ोन लगाकर समाधान प्राप्त कर सकते हैं। दिन समय और फ़ोन नंबर एक बार पुनः सुन लीजिए। 7 जून 2026 शाम 7:30 बजे से 8 बजे के बीच फ़ोन नंबर्स हैं 2660902 और 2660903। भोपाल का एसटीडी कोड है 0755। सूचना समाप्त हुई। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 8:45 होने को हैं। यह समय होता है समाचार संध्या का, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं। कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। भारत और वेनेजुएला ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ऊर्जा, व्यापार, स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसर तलाशने पर चर्चा की। गृहमंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन के बुनियादी ढांचे पर ध्यान देने को कहा।

0: अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि इससे योगासन को वैश्विक खेल पहचान मिलेगी। पेट्रोल और एथेनॉल की अलग अलग मात्रा के मिश्रित ईंधन से चलने वाली देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार लॉन्च। मानसून ने दी केरलम में दस्तक। केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में अगले 7 दिन तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। और भारतीय मुक्केबाज जैस्मिन लेम्बोरिया विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंची। प्रिया घंघास और विश्वनाथ सुरेश ने शीर्ष 3 में जगह बनाई। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि लैटिन अमेरिका में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में वेनेजुएला के साथ भारत का घनिष्ठ सहयोग विकासशील देशों के उत्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने मीडिया को बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
1: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसा के युग का अंत करके इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया है। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में गृह मंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने का कार्य कर रही है। बैठक में गृह मंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे कानून व्यवस्था पर ध्यान देने के बजाय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि उग्रवाद अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। उन्होंने राज्यों को नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का बुनियादी ढांचा तैयार करने को भी कहा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी तथा केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में भारत की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार का लोकार्पण किया। इसका निर्माण मारुति सुजुकी ने किया है। इस अवसर पर श्री पुरी ने कहा कि यात्री वाहनों में फ्लेक्स फ्यूल तकनीक की शुरुआत भारत की ऊर्जा परिवर्तन यात्रा का एक नया अध्याय है। श्री नितिन गडकरी ने कहा कि फ्लेक्स फ्यूल वाहनों से प्रदूषण कम करने, कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटाने और विदेशी मुद्रा की बचत करने में मदद मिलेगी।
2: हमारे देश से करीब 22 से 23 लाख करोड़ रुपए हम फॉसिल फ्यूल के इंपोर्ट के लिए खर्चा करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमको आत्मनिर्भर भारत बनाना है। अगर आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो हमें इंपोर्ट को कम करना पड़ेगा और एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। हमारे देश में अगर ये इंपोर्ट को कम करना है तो हमें अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल पर काफी काम करने की आवश्यकता थी, और इसलिए ये जो इंडस्ट्री है यही हमारे देश के ग्रोथ का ग्रोथ इंजिन है।
0: फ्लेक्स फ्यूल वाहन पेट्रोल और एथेनॉल के विभिन्न मिश्रणों पर चल सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।

0: फिर स्वागत है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार सरकार के पिछले 12 वर्षों के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम इस श्रृंखला में बात करेंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों के बारे में।
1: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ कारोबार को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इन सुधारों से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और भारत दुनिया में प्रतिस्पर्धी व्यापारिक केंद्र के रूप में मजबूत हुआ है। 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार, उद्यमिता और निवेश आधारित विकास को बढ़ावा दे रही है। सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या 2016 में लगभग 500 से बढ़कर इस साल मार्च तक 2,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सकें। महाराष्ट्र के ठाणे के चार्टर्ड अकाउंटेंट मनोज बासेर ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में किए गए सुधारों से अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिली है।
2: केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर के ऊपर किए गए रिफॉर्म्स देश की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा स्टेप है। स्टेबिलिटी के लिए अप्रत्यक्ष कर के रिफॉर्म से वन नेशन वन टैक्स का एडवांटेज काफी क्लियरिटी देता है कि हमें बिजनेस कैसे करना है। लोगों को टैक्स के बारे में पूरा नॉलेज और क्लियरिटी आती है। इससे एक देश की इमेज भी बहुत अच्छी हुई है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हुई है।
1: वहीं सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल, सरल और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम की शुरुआत की गई। जेम पर अब तक कुल 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हो चुका है। जेम से जुड़ी एक विक्रेता कामिनी गुप्ता ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जेम की प्रक्रिया काफी सरल और पारदर्शी है और सरकारी खरीदारों तक पहुंच प्रदान करता है।
3: ये डिजिटल खरीद मंच है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और इनकी जो टेक्निकल टीम है और जो भी हमारे लोग जुड़े हैं जेम से, ये एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम करते हैं। इनका सहयोग मिलता रहता है। एमएसएमई, स्टार्टअप, महिला उद्यमियों और निर्माताओं को सीधे सरकारी खरीदारों तक प्रदान करता है।
1: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल पर पंजीकरण की संख्या अक्टूबर 2020 में 10,000 थी, जो बढ़कर अब 8,31,000 से अधिक हो गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता को भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एकजुट करता है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रथम विश्व योग चैंपियनशिप योगासन को वैश्विक खेल पहचान दिलाएगी और युवाओं के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध कराएगी।
5: इस चैंपियनशिप के माध्यम से योगासन को एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के रूप में नई पहचान मिलेगी। मुझे विश्वास है कि भविष्य में योगासन भी अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में अपनी जगह बनाएगा, चाहे ओलंपिक्स हो या मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स हो। हम जितनी मेहनत करेंगे सुखद परिणाम आ भी सकता है।
0: हमारी संवाददाता ने बताया कि विश्व योगासन चैंपियनशिप का आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, आयुष मंत्रालय और भारतीय खेल प्राधिकरण के सहयोग से किया गया है।
6: अहमदाबाद का एक्का एरिना आज से शुरू हुई पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप के साथ ही एक बड़े ऐतिहासिक बदलाव का गवाह बन रहा है। इस वैश्विक प्रतियोगिता में अमेरिका, घाना, केन्या और मलेशिया सहित 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। मेजबान भारत ने 6 आयु श्रेणियों में मुकाबले के लिए अपनी 122 सदस्यों की टीम उतारी है। परणा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन

0: टूर्नामेंट में एम आर अर्जुन और हरिहरन अमसाकुरणन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में आज भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एरोन ताई और कैंग खाईजिंग को शिकस्त दी। विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में जैस्मिन लंबोरिया ने महिलाओं की 57 किलोग्राम भार वर्ग में नंबर एक स्थान हासिल कर लिया है। वहीं प्रिया घांघस 60 किलोग्राम भार वर्ग और विश्वनाथ सुरेश 50 किलोग्राम भार वर्ग में शीर्ष तीन में जगह बनाने में सफल हुए हैं। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने परीक्षा प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन प्रणाली की शुरुआत की है। आयोग ने इस तकनीक का सफल उपयोग हाल ही में आयोजित प्रारंभिक सिविल सेवा परीक्षा और इस वर्ष हुए भारतीय वन सेवा परीक्षा में किया। भारतीय जनता पार्टी ने आज राज्यसभा चुनाव और उपचुनाव के लिए अपने 11 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। पार्टी ने मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान से डॉक्टर अलका गुर्जर और डॉक्टर सतीश पूनिया को मैदान में उतारा गया है। राज्यसभा की 24 सीटों के लिए चुनाव 18 जून को होने हैं। इसके अलावा ओडिशा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की एक एक सीट पर भी उपचुनाव कराए जाएंगे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज एक नए डिजिटल पोर्टल की घोषणा की, जिससे अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य भारत के शोध तंत्र को मजबूत करना है। और बात मौसम की, दक्षिण पश्चिम मानसून आज केरलम पहुंच गया। मौसम विभाग ने केरलम और कर्नाटक में अगले 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। माहे, पुदुचेरी और काराईकाल में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड और पश्चिम राजस्थान में भी कल गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना है। इस बीच दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज तेज बारिश हुई। लोगों को गर्मी और उमस भरे मौसम से थोड़ी राहत मिली। आज रात भी हल्की वर्षा की संभावना है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने अगस्त सितंबर सत्र के लिए अपने इंटर्नशिप कार्यक्रम में भाग लेने के लिए महिलाओं से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसमें छात्राएं, शोधकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षक शामिल हो सकते हैं जो किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक गैर शैक्षणिक संस्थान से जुड़े हों। आवेदन ऑनलाइन पोर्टल wcd.intern.nic.in के माध्यम से किए जा सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और वेनेजुएला ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ऊर्जा, व्यापार, स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसर तलाशने पर चर्चा की। गृहमंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन के बुनियादी ढांचे पर ध्यान देने को कहा। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि इससे योगासन को वैश्विक खेल पहचान मिलेगी। पेट्रोल और एथेनॉल की अलग अलग मात्रा के मिश्रित ईंधन से चलने वाली देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार लॉन्च। और मानसून ने दी केरलम में दस्तक। केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में अगले 7 दिन तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम सायरा मुज्तबा विद द न्यूज एट 9। The headlines. India and Venezuela review full spectrum of bilateral relations and explore new avenues of cooperation in energy, trade and healthcare. Home Minister Amit Shah asked the chief ministers of northeastern states to focus on AI, machine learning and blockchain infrastructure for new generations. World Yogasan Sports Championship begins in Ahmedabad. Prime Minister Narendra Modi hopes it will give Yogasan a global sports identity. India launches first flex-fuel passenger vehicle operating on a wide range of ethanol-petrol blends. Southwest monsoon hits Kerala. IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over Kerala, Karnataka and Tamil Nadu during the next 7 days. And in world boxing rankings, India's Jasmine Lamboria climbs to world number 1, while Priya Ghangas and Vishwanath Suresh enter into top 3. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today held talks with Acting President

0: राज के माहिर सर्जन डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव ने मेड इन इंडिया सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए ग्याना से भारत में तवील फासले की रोबोटिक टेली सर्जरी कामयाबी के साथ अंजाम देकर एक आलमी रिकॉर्ड कायम किया है। ये टेली सर्जरी ग्याना में जॉर्ज टाउन पब्लिक अस्पताल और इंदौर में IRCAD इंडिया के दरमियान रिमोट तरीके से अंजाम दी गई है। दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता आज साकेत के मैक्स अस्पताल गईं और कल मालवीय नगर में आग लगने के बड़े वाक्य में जख्मी लोगों की खैरियत मालूम की। उन्होंने जख्मी अफराद और उनके कुंबे के लोगों से भी बातचीत और उनका इलाज करने वाले डॉक्टरों से भी उनके जारी इलाज के बारे में मालूमात हासिल की और ओहदेदारान को सभी जरूरी मदद फराहम करने की हिदायत दी। आग लगने के इस बड़े वाक्य में हलाक होने वालों के कुंबों को 10-10 लाख रुपए की नकद इमदाद का ऐलान किया गया है। शदीद तौर पर जख्मी लोगों को 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। जुनूब मगरबी मानसून आज केरलम पहुंच गया है। भारत के महकमा मौसमियात ने अगले 7 दिन के दौरान केरलम और कर्नाटक में ज्यादा और बहुत ज्यादा बारिश और तमिलनाडु में बहुत ज्यादा बारिश की पेशगोई की है। कल माहे पुडुचेरी और क्राइकल में बहुत और बहुत ज्यादा बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने अगले 2 दिन के दौरान अंडमान निकोबार जजायर आंध्र प्रदेश कोंकण गोवा लक्षद्वीप मध्य महाराष्ट्र जैली हिमालयाई मगरबी बंगाल सिक्किम तेलंगाना उत्तराखंड और शुमाल मशरकी रियासतों में बहुत ज्यादा बारिश की पेशगोई की है। इधर दिल्ली कौमी राजधानी खत्ते में आज तेज बारिश हुई जिसके सबब गर्मी और हफ्स की सूरत हाल से राहत मिली। महकमा मौसमियात ने आज रात हल्की और बहुत हल्की बारिश की पेशगोई की है जिसमें बिजली की गरज चमक भी शामिल है। जकार्ता में हुए इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में MR अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन की भारतीय जोड़ी मर्दों के डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने आज एक सख्त मुकाबले में मलेशिया की जोड़ी आरुनताई और कांगखाई शिंग को 16-21, 21-15 और 21-19 से शिकस्त दी है, जबकि सिंगल जुमरे में PV सिंधु और आयुष शेट्टी के अपने अपने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में शिकस्त के बाद भारत की मुहिम खत्म हो गई है। भारत ने मुक्केबाजी की हालिया आलमी दर्जाबंदी में अपनी मजबूत पोजीशन बरकरार रखी है। ख्वातीन के 57 किलोग्राम के जुमरे में जैस्मीन लेम्बोरिया आलमी नंबर 1 पर पहुंच गई हैं, जबकि एशियाई चैंपियंस प्रिया घंगास 60 किलोग्राम और विश्वनाथ सुरेश 50 किलोग्राम के अपने अपने जुमरे में टॉप 3 में पहुंच गए हैं। ख्वातीन के जुमरे में मीनाक्षी ने 48 किलोग्राम के जुमरे में आलमी नंबर 1 का अपना मकाम बरकरार रखा है, जबकि मर्दों के जुमरे में सचिन सिवाच और नरेंद्र बेरवाल बैनुल अक्वामी पैमाने पर मुसलसल कामयाबी हासिल करने के बाद टॉप 5 में पहुंच गए हैं। और आखिर में इस बुलेटिन की खास खास खबरें एक बार फिर। भारत और वेनेजुएला ने बाहमी ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया। नीज तवानाई तिजारत और सेहत देखभाल के शोबों में तआवुन के नए मौके की जस्तजू की। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने शुमाल मशरकी रियासतों के वज़राए आला को हिदायत दी है कि वो नई नस्लों के लिए AI मशीन लर्निंग और ब्लॉक चैन बुनियादी ढांचे पर तवज्जो मरकूज करें। आलमी योग आसन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप अहमदाबाद में शुरू हो गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जाहिर की है कि ये योग आसन को एक आलमी खेलकूद की शनाख्त फराहम करेगी। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 9:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है PM मोदी के 12 साल सोमनाथ अमृत महोत्सव भारत का सांस्कृतिक पुनर्जागरण ये कार्यक्रम RNU भोपाल की प्रस्तुति है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं विशेष कार्यक्रम सोमनाथ अमृत महोत्सव विकास और विरासत की गौरव यात्रा। गुजरात के सोमनाथ मंदिर के पुनर्स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पिछले दिनों सोमनाथ अमृत महोत्सव आयोजित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। इस दौरान श्री मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और भारत की शाश्वत आत्मा के पवित्र प्रतीक के रूप में खड़ा है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ एक मंदिर से अधिक देश के मजबूत मनोबल का प्रमाण है। दरअसल सोमनाथ हमारी प्राचीन विरासत, आस्था और राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक भी है। सोमनाथ साक्षी है कि सृजन शक्ति हमेशा विनाशकारी शक्ति से प्रभावी होती है।

0: सोमनाथ की प्रत्येक ईंट भक्ति का ताप और भारत के पुनरुत्थान का गौरव कहती है। इतिहास में कई बार मंदिर को क्षति पहुंचाने का प्रयास किया गया, लेकिन प्रत्येक विध्वंस के बाद ये मंदिर और अधिक भव्यता के साथ उठ खड़ा हुआ। आज सोमनाथ अमृत महोत्सव पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार, विचारक और लेखक श्री कृष्ण मोहन झा जी। जैसा बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में आकाशवाणी में।
1: जी धन्यवाद।
0: कार्यक्रम को शुरू करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 मई को सोमनाथ अमृत महोत्सव को संबोधित करते हुए क्या कहा वो सुनवाते हैं आपको।
2: साथियों, जब मैं पिछली बार यहाँ आया था तब मैंने कहा था जिसके नाम में ही सोम अर्थात अमृत जुड़ा हो उसे नष्ट कौन कर सकता। इतिहास के लंबे कालखंड में इस मंदिर ने कितने ही आक्रमण झेले। महमूद गजनवी, अलाउद्दीन खिलजी जैसे अनेक आक्रांत आए, लुटेरों ने सोमनाथ मंदिर का वैभव मिटाने का प्रयास किया। वो सोमनाथ को एक भौतिक ढांचा मानकर उससे टकराते रहे। बार बार इस मंदिर को, इस ढांचे को तोड़ा गया और ये बार बार बनता रहा, हर बार उठ खड़ा होता रहा, क्योंकि तोड़ने वालों को मालूम नहीं था हमारे राष्ट्र का वैचारिक सामर्थ्य क्या है। हम भौतिक शरीर को नश्वर मानने वाले लोग हैं, लेकिन हम जानते हैं उसके भीतर बैठी आत्मा अविनाशी है और फिर तो शिव तो सर्वात्मा है। इसलिए अलग अलग काल में अलग अलग जीवों की संकल्प शक्ति में शिव प्रकट होते रहे। राजा भोज, कभी राजा भीमदेव प्रथम, कभी राजा कुमारपाल, कभी राजा महिपाल प्रथम, तो कभी राव खंगार, ऐसे अनेक शिव भक्त समय समय पर सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाते रहे। ऐसी कितनी ही महान विभूतियां हैं जो सोमनाथ की सेवा में अपना सर्वस्व अर्पित करती थी। मैं आज इस अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्रीमान के एम मुंशी जी, ऐसी सभी ज्ञात अज्ञात दिव्यात्माओं को भी श्रद्धापूर्वक आदरपूर्वक नमन करता हूं। उनका स्मरण हमें ये प्रेरणा देता है कि हमें न केवल अपनी सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाना है, बल्कि इस जिम्मेदारी को आने वाली पीढ़ियों के हाथों में सौंप कर भी जाना है।
0: जासर, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सोमनाथ एक मंदिर से अधिक देश को, देश के मजबूत मनोबल का प्रमाण है, इसे किस तरह देखते हैं आप?
1: देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि सोमनाथ, जो सोमनाथ केवल सोमनाथ कहने को नहीं है, 12 ज्योतिर्लिंगों में महत्वपूर्ण स्थान सोमनाथ का है।
0: जी,
1: और जो सोमनाथ के साथ घटित हुआ, यदि हम बात करें 1026 में मोहम्मद गजनवी ने जिस ढंग से वहाँ तोड़ फोड़ की और उसके बाद ये लगा कि ये पूर्ण रूप से नष्ट हो गया, लेकिन फिर भी आप देखिए कि सोमनाथ का निर्माण हुआ, फिर से आप नए स्वरूप को प्राप्त किया, उसके बाद फिर आक्रांताओं ने, विदेशी आक्रांताओं ने कई बार उसमें हमले किए और उसके बाद पुनर्निर्माण का क्रम समाज करता रहा है। तो यही वजह है कि जो मोदी जी ने कहा है कि ये जो हमारी विरासत है ये सुदृढ़ रही और ये हमें सिखा रही है कैसे हमको जो है मजबूती के साथ खड़े होना है। कमजोर टूटना नहीं है, हम टूटते नहीं हैं, पुनर्निर्माण करते हैं। ये उनके कहने का आशा है। स्वतंत्रता के बाद भी आप देखिए कि जब 1951 में, क्योंकि 75 साल पूरे हो रहे हैं, 11 मई 1951 में सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इसकी नींव रखी थी।
0: जी,
1: तब से लेकर के 75 वर्ष हो गए और लगातार समृद्ध होता जा रहा है और मंदिर का देखिए कि भव्यता लगातार बढ़ रही है। और यही वजह थी कि प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि किसी देश के प्रधानमंत्री ने इतना सोचा हो, आपको ध्यान होगा कि महाकाल लोक के निर्माण किया उन्होंने, काशी को एक नया स्वरूप दिया उन्होंने, अयोध्या को देखिए

0: एक अयोध्या का निर्माण और उसकी भव्यता किस ढंग से बढ़ी हुई है। तो आज ये पर्यटन के, यानी आप देखिए तीर्थ तो है ही हैं लेकिन साथ में एक पर्यटन के केंद्र भी बन चुके हैं। यहाँ पे जो है पर्यटन और तीर्थ दोनों का समावेश दिखाई दे रहा है। इससे एक तरफ तो रोजगार की बढ़ोतरी हो रही है, तरह तरह के रोजगार यहाँ पे आ रहे हैं और जब विदेश से भी लोग यहाँ जब आते हैं तो आप समझ सकते हैं कि उस क्षेत्र का विकास किस ढंग से होता है। आपने अपनी आंख से ही देखा, क्योंकि हमारे देखते ही देखते उज्जैन के महाकाल की दशा दिशा किस ढंग से बदल गई। तो उसी ढंग से सोमनाथ को भी हम लेते हैं, क्योंकि जो पहला जो आपका जो प्रश्न है उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा हुआ है कि हम कहीं टूटने वालों में से नहीं है, हम मजबूती से खड़े होने वाले हैं। जब जब टूटे हैं तो उसके बाद हम ज्यादा मजबूती से खड़े हुए हैं।
1: जी जी जी, प्रधानमंत्री ने जो अगला मेरा प्रश्न है वो इसी से जुड़ा हुआ ही है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि लुटेरों ने सोमनाथ मंदिर का वैभव मिटाने का प्रयास किया। सोमनाथ को केवल एक भौतिक ढांचा मानकर उन्होंने उसे टकराते रहे, बार बार मंदिर को तोड़ा गया, ये बार बार बनता रहा, हर बार उठ खड़ा होता रहा। तो कहीं ना कहीं ये, जैसा कि आपने भी कहा कि ये आत्मबल, आत्मसम्मान और भारत के गौरव को दिखाता है।
0: देखिए निश्चित रूप से मैंने पहले ही कहा कि मोहम्मद गजनवी ने जिस ढंग से हमारी धरोहरों को तोड़ने का प्रयास किया
1: जी।
0: उसके बाद यदि मैंने बाबर नामा पढ़ी तो बाबर नामा में बाबर ने हुमायूं को एक पत्र लिखा, उसमें उन्होंने कहा कि भारत की संस्कृति को और इतिहास को मिटाने का कभी प्रयास नहीं करना, उनकी सीख थी। और यही वजह रही है कि जिस ढंग से ये जो हमारी संस्कृति रही है वो बच पाई, तो मुगलों ने उसमें बहुत कुछ, उनका योगदान भी उस ढंग से रहा तो वो किया। और जिस ढंग से समृद्धि हमारे पास, जब से आज़ादी के बाद और किसी देश के प्रधानमंत्री ने जब चिंता की खासतौर पर ज्योतिर्लिंगों को लेकर के, क्योंकि कहीं ना कहीं सबके आस्था का केंद्र बना हुआ है, तो जिस ढंग से उनकी चिंता देखने को मिल रही है और उन्होंने ये भी बताया कि हमारी विरासतों को किस ढंग से मिटाया गया
1: जी,
0: हमारी संस्कृति को कैसे, क्योंकि संस्कृत हमारी बहुत मजबूत थी, दूसरों के पास संस्कृति नहीं है। एक बात बहुत अच्छी बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि बहुत साल पहले भाई महावीर से हमने एक इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने एक बात कही थी कि जिस देश की का इतिहास नहीं है, जिस देश की संस्कृति नहीं है, वो आज संस्कृति बना रहे हैं, लेकिन हम अपने इतिहास को, हमारी संस्कृति को हम सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं
1: जी।
0: तो ये उस प्रश्न का जवाब, आपके प्रश्न का जवाब है कि हमारी संस्कृति तो थी, हमारा इतिहास तो था, लेकिन हमारे स्वर्णिम इतिहास को हम लोगों तक नहीं पहुंचा पाए। ये जो आयोजन हो रहा है 75वां वर्ष मनाया जा रहा है सोमनाथ जी का, कहीं ना कहीं इस बात का संदेश है कि युवा पीढ़ी जाने कि हम टूटने के बाद भी खड़े हो सकते हैं, किस ढंग से हम दासता को झेले हैं, गुलामियों को झेले हैं, और आज जाकर के हमको जब आज़ादी मिली है तो इस आज़ादी को हम किस ढंग से सुरक्षित रखें और पुराने वैभव को हम बना के रखें।
1: और ये सोमनाथ अमृत महोत्सव है जो आने वाले 1000 वर्षों तक जो है वो लोगों को प्रेरणा देता रहेगा, भारत की प्रेरणा बना रहेगा, ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा।
0: देखिए निश्चित रूप से लाखों लाखों वर्ष तक, जब तक धरती रहेगी तब तक के सोमनाथ का जिक्र होगा, तब तक के काशी विश्वनाथ का जिक्र होगा, तब तक के आप ओंकारेश्वर का जिक्र होगा, जब तक महाकाल का जिक्र होगा। तो ये ऐसी चीज़ें हैं, ये छाप कभी छूटेंगी नहीं
1: जी,
0: ये हमारे संस्कारों से रची बसी है, हमारी संस्कृति से रची बसी है और हमारे दैनिक जीवन से रची बसी हुई है। तो इसका मिटना तो संभव नहीं है, लेकिन सुदृढ़ता बहुत ज़रूरी है। जिस ढंग से सुदृढ़ करने का प्रयास है, आज आप देख रहे हैं कि हर राज्य के मुख्यमंत्री ने, जो खासतौर पर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने, पूरा प्रयास किया है कि लोग जाकर के देख करके आए। यहाँ से भी आपने देखा कि डॉक्टर मोहन यादव ने एक स्पेशल ट्रेन को रवाना किया,
1: मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन
0: योजना के तहत जो है यहाँ से हजारों की संख्या में लोग गए। तो ये एक अच्छी परंपरा है लोगों को दिखाने की, बताने की। जब तक कि लोग उससे साक्षात्कार नहीं करेंगे तो कैसे जानेंगे कि क्या चीज़ है।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सही बात। मंदिर के इतिहास को अगर हम समकालीन भारत के साथ अगर जोड़ते हुए देखेंगे तो किस तरह से देखते हैं आप मंदिर का इतिहास समकालीन भारत के साथ?
0: देखिए बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है कि ये जो इतिहास था
1: जी,
0: बड़ा समृद्धशाली था। भारतीय लेखकों को तो छोड़िए, जो फारसी लेखकों ने लिखा है तो उन्होंने तो ये तक कहा है कि ये मंदिर सोने की चिड़ैया थी
1: जी।
0: वहाँ पे स्वर्ण को लेकर के उन्होंने कहा अत्यंत समृद्ध माना गया सोमनाथ का मंदिर
1: जी।
0: तो उन्होंने अपनी सब चीज़ों में कहा, तो समृद्धि तो बहुत ज़्यादा थी और यही वजह थी कि उसको लुटेरों ने लूटा है
1: जी,
0: कई बार लूटने का प्रयास किया और जितने बार लूटा उतने ही समृद्धि उस मंदिर की लौटती गई है
1: जी जी।
0: तो मेरा यही कहना है कि जिस ढंग से आप, चूँकि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी यही कहा है कि जो मंदिर का इतिहास रहा है वो बहुत ही समृद्ध रहा है।

0: और हम यही बताना चाहते हैं इन 75 वर्षों के बाद युवाओं को कि किस ढंग से जो है उसका इतिहास रहा है, किस ढंग से स्नेह स्नेह निर्माण कार्य हुआ है और आज एक गौरवशाली
1: जी
0: समृद्धता प्राप्त करी है उसने।
1: जी जहाँ साहब, 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम सोमनाथ मंदिर के इतिहास को नई पीढ़ी तक पहुँचाने में ये जो अमृत महोत्सव आयोजित किया गया, इसकी क्या भूमिका रहेगी और किस तरह से ये पहुँचेगा?
0: ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि जो आपने कहा कि ये 12 ज्योतिर्लिंग में और ये जो आयोजन है
1: जी,
0: क्योंकि कोई भी कार्यक्रम आप देखते हैं कि जब आयोजन जब होते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वृत्त चित्र प्रस्तुत किए जाते हैं, नाटक प्रस्तुत किए जाते हैं, नृत्य प्रस्तुत किए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो डॉक्यूमेंट्री बनाई जाएंगी तो ये सब चीज़ें जो हैं वहाँ जो प्रदर्शन बड़ी बड़ी प्रदर्शनी लगाई जाएंगी, इतिहास से लेकर के आज तक की प्रदर्शनी होगी तो युवा पीढ़ी समझ पाएगा और उसका प्रचार प्रसार जिस ढंग से आज हम बैठ करके आज ही देख रहे हैं कि आज ये पूरे अखबारों में लगातार सोमनाथ को लेकर के है। माननीय प्रधानमंत्री जी का आर्टिकल आपने पढ़ा होगा कि कितना समृद्ध आर्टिकल था, उसने कितनी भावुकता के साथ लिखा और लोगों से अपील भी की कि जाएं सोमनाथ जाएं और वहाँ पे करें
1: जी। और हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बैठकर अगर
0: सोमनाथ की
1: चर्चा कर रहे हैं तो जाहिर है कि पूरे देश में इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं और होनी भी चाहिए, जिससे नौजवान युवा सोमनाथ मंदिर के बारे में, उसके इतिहास के बारे में, सांस्कृतिक विरासत के बारे में, धर्म के बारे में जाने।
0: बहुत अच्छी बात आपने कही, जो आज का युवा है अब वो किताबों से हट चुका है
1: जी,
0: वो रील में विश्वास करता है, तो अब रील, क्योंकि अब जब वहाँ जाएंगे तो रील बनाएंगे
1: जी,
0: तो रील भी फ्लोट होगी सोशल मीडिया में, एक जो संचार जिस ढंग से होगा उसका जो जिस ढंग सर्कुलेट करेंगे तो वो गाँव गाँव तक चीज़ें पहुँचेगी, तो सोमनाथ की जो कथा है वो अब वो जो युवा हैं वो खुद प्रस्तुत करेंगे, तो उनको खुद एक लगेगा जब वहाँ पे जब आप पहुँचते किसी चीज़ को आप जाकर के स्वयं देखते हैं, जो कि आपने खुद रिपोर्टिंग भी की है, जब किसी चीज़ को रिपोर्ट आप वहाँ पहुँच करके करते हैं तो बात अलग होती है और कहीं सुन करके कोई बात करते हैं तो बात अलग होती है, तो कहीं ना कहीं जो करोड़ों की संख्या में जो वहाँ युवा पहुँच रहे हैं, बुजुर्ग पहुँच रहे हैं, कई बुजुर्गों का सपना था वो सपना पूरा हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है कि 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन से जो है एक मुक्ति प्राप्त होती है और अपने जीवन काल में इसको करना भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है
1: जी।
0: तो उसी तरह से जो बुजुर्ग हैं उनके कहीं ना कहीं सपने रहे होंगे वो पूरे होंगे, युवा जा करके देखेंगे और कहीं ना कहीं इसका जो एक व्यापक प्रचार प्रसार आप आकाशवाणी के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से, प्राइवेट चैनलों के माध्यम से निरंतर, अब देखिए सोमनाथ की स्टोरी लगातार आ रही है, सोमनाथ पे रोज आर्टिकल्स आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक माहौल क्रिएट हुआ है
1: जी। जैसा शायद आप भी मेरी बात से इत्तेफाक रखें कि जो युवा हैं, आज के युवा कुछ साल पहले तक उतने धार्मिक नहीं थे, उतने चेतन नहीं थे धर्म को लेकर, परंपराओं को लेकर, विरासतों को लेकर, लेकिन आज का जो युवा है वो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि थोड़ा धार्मिक जितना होना चाहिए उतना है।
0: ये बहुत मार्मिक प्रश्न आपने कहा
1: जी।
0: 2014 में मैंने भी दो दिन पहले ही कहीं ये कोट किया था
1: जी
0: कि लाल किले से देश के प्रधानमंत्री ने शौचालय की बात की
1: जी,
0: उन्होंने कहा शौचालय पहले फिर देवालय
1: जी।
0: जब आज़ादी के 70 साल बाद किसी देश के प्रधानमंत्री को शौचालय की बात करनी पड़े तो देवालय की चिंता कैसे कर सकते हैं आप
1: जी।
0: पहले उन्होंने शौचालय की व्यवस्था की
1: जी,
0: समग्र स्वच्छता की बात की, स्वच्छता अभियान चलाया और उसके बाद देखिए सने सने उन्होंने चीज़ों को व्यवस्थित किया
1: जी।
0: उन्होंने एक बात और थी, मैं आज यहाँ पे ये भी कहना चाहता हूँ क्योंकि विषय से विषयांतर जरूर होगा, लेकिन उन्होंने महिलाओं को निकलने के लिए कहा, उन्होंने कहा कि आप लड़के को तो आप घूमने देते हैं पर लड़की लेट हो गई तो उसका हिसाब पूछते हैं
1: जी।
0: तो ये जो मैसेज उनका गया और आज देखिए कि 2014 से हम आज 26 में बैठे हुए हैं, 12 साल का सफ़र है, इन 12 सालों में महिलाएं कितनी समृद्ध हुई। अभी हाल ही में आपने स्पेशल डिस्कशन भी किया महिला आरक्षण को लेकर के, जो बिल आया था उस पर भी आपने किया, तो पूरे देश ने देखा कि किस ढंग से मोदी जी ने महिलाओं को लेकर के कार्य किया और किसी भी परिवार में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, तो जो आप धार्मिक अनुष्ठानों में, धार्मिक पूजा पाठों में उनकी भूमिका रहती है, तो आप जो आपका जो प्रश्न था कि युवा क्योंकि आकर्षित हो रहा है, क्योंकि पूजा का क्रम और धार्मिक आयोजनों का क्रम लगातार निरंतर बढ़ता जा रहा है और आप देखिए कि जो संचार माध्यम है कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि समाज को ये हतोत्साहित भी कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ देखा जाए तो समाज में एक अच्छी चेतना का जागरण भी इसके माध्यम से।
1: नए साल पे भी युवा जो है
0: पहाड़ों
1: पर समुन्द्र किनारे जाने के बजाय अयोध्या जा रहे हैं, काशी वाराणसी जा रहे हैं, धार्मिक स्थलों पर जा रहे हैं, मंदिरों की ओर।
0: भाई आप देखिए पहले लोग ताजमहल और कुतुब मीनार देखने जाते थे
1: जी जी,
0: अब आज जो है वो मंदिरों में, हम खुद ही जानते हैं कि हमारे इतने सारे परिचित आते हैं तो हमें बड़ी दिक्कत जाती है कि उनकी व्यवस्था बनाने के लिए आज इतनी भीड़, लाखों की संख्या में नए वर्ष में जो है वो युवा आते हैं परिवार के साथ आते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि इस सरकार की है और हम तो कहते हैं कि 104

0: 40 करोड़ जनता की तरफ से हम माननीय मोदी जी के प्रति आभारी ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने जो हमारी संस्कृति थी, जो हमारे ऐतिहासिक धरोहर थे, उनको जीवित कर दिया, आज उनको इस योग्य बना दिया कि लोग आज वहाँ पहुँच रहे हैं। और आज देखिए, आज आप ही आपके परिचित कितने बोलते होंगे कि उज्जैन जाना है
1: जी,
0: तो आज आप हाथ खड़ा कर लेते हैं क्योंकि वहाँ व्यवस्था करना कठिन हो गया है।
1: जी सही बात। अमृत महोत्सव की बात चल रही है, तो जो सोमनाथ अमृत महोत्सव है, इससे सोमनाथ और आसपास के क्षेत्रों में रोजगार, होटल व्यवसाय और स्थानीय हस्तशिल्प को जहाँ साहब कैसे बढ़ावा मिलने की उम्मीद है?
0: देखिए, बहुत अच्छा ये प्रश्न भी आपका है, जो कि धार्मिक पर्यटन जब होता है
1: जी,
0: तो जब बाहर से जब आदमी आता है, जब आप कहीं भी जाते हैं, तो आप अपने घर के लिए कुछ ना कुछ लेकर के जाते हैं
1: जी।
0: तो एक तो आने के लिए आपको पहले तो होटलों की व्यवस्था की जरूरत होगी वहाँ अच्छे से, क्योंकि आप अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से वहाँ रुकने की व्यवस्था करते हैं
1: जी।
0: तो होटलों में होटलों का व्यवसाय बहुत अच्छे से चलेगा
1: जी।
0: फिर आपको वाहन का व्यवसाय बहुत अच्छे से चलता है
1: जी।
0: फिर धार्मिक पर्यटन के लिए जब हम बात करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं
1: जी।
0: जो स्थानीय जो परिवहन है उसको लाभ मिलता है, गाइड को लाभ मिलता है, जो वहाँ का लोकल उत्पाद होता है उसको एक दिशा दशा मिलती है। आप देखिए, कई प्रोडक्ट ऐसे हुए जो लोकल से निकल करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँच गए, तो जो हस्तशिल्प है हमारा उसको एक अलग स्थान मिलेगा। प्रसाद का उद्योग है, वो बढ़ोतरी हो रही है। जो छोटे व्यापारी हैं, जो फूल, नारियल और ये सब चीज़ें बेचते हैं, तो वो एक उसको भी एक अलग दिशा मिलेगी
1: जी।
0: अच्छा, गुजरात सरकार द्वारा इसको हेरिटेज टूरिज्म के रूप में भी डेवलप किया जा रहा है, तो ये जो सब चीज़ें हैं वहाँ पे भी देखिए, छोटे छोटे व्यापार को प्रोत्साहित करने का भी प्रयास किया गया है
1: जी। और जाहिर बात है कि अगर जो धार्मिक पर्यटन से अगर हम इसको देखें जोड़कर, तो जब लोग आएंगे तो स्थानीय जो छोटे छोटे से दुकानदार हैं, जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, उनका भी फायदा होगा, जो होटल वालों का भी फायदा होगा, चौतरफा विकास पर्यटन के साथ। ये मोदी सरकार का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि ही कही जाए कि जहाँ जहाँ धार्मिक स्थलों का विकास हुआ है, पुनर्निर्माण हुआ है, वहाँ विकास चौतरफा हुआ है। सिर्फ मंदिर नहीं बनाए हैं, मंदिर के साथ साथ पूरा क्षेत्र का विकास हुआ है,
0: चहुमुखी विकास हो रहा है। और देखिए, आप दूर मत जाइए, आप तो यहाँ से हमने उज्जैन आपने खुद देखा हुआ, कल और आज में आप अंतर महसूस करिए कि कल क्या था। आज आप चाह करके भी वहाँ पे होटलें पूरी फुल हैं, वहाँ पे रोजगार के नए नए सृजन होते जा रहे हैं, वहाँ का जो लोकल उत्पाद है वो इंटरनेशनल लेवल पे जा रहा है। तो यही स्थिति आपको सोमनाथ में देखने को भी मिलेगी, क्योंकि लोकल उत्पाद अब जो है ग्लोबल होता जा रहा है। तो हमारी जो चीज़ें थी, तो अब बाहर का जब आदमी आकर के जब देख रहा है, चीज़ों को कर रहा है, तो वो उसको प्रॉपर प्लेटफॉर्म मिल रहा है, क्योंकि प्लेटफॉर्म मिलने की आवश्यकता होती है, और वहाँ पर ये इस कार्यक्रम के माध्यम से वो आपको देखने को मिलेगा
1: जी। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें यहाँ पर अमृत महोत्सव के अवसर पर स्मारक डाक टिकट और स्मारक सिक्का भी जारी किया गया है सोमनाथ मंदिर जो अमृत महोत्सव है उस पर।
0: देखिए, किसी चीज़ को जीवंत रखने के लिए, उसको यादगार बनाने के लिए ये सब चीज़ें बरसों से चले आ रही है, और ये क्योंकि आप देखिए कि स्मारिका निकाली जाती है
1: जी,
0: डाक टिकट जारी किए जाते हैं, सिक्के जारी किए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये उस चीज़ को बताता है। ये बरसों बरसों तक, जैसे कि आपने कहा ना कि मोदी जी ने कहा कि हजारों वर्ष तक याद रहेगा, तो याद कैसे रखा जाएगा
1: जी?
0: तो ये डाक टिकट याद रखे जाएंगे, ये सिक्के याद रखे जाएंगे
1: जी,
0: ये जो डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है वो याद रखे जाएंगे। तो ये सब चीज़ें एक इस चीज़ को चिरस्थायी बनाने के लिए अत्यंत आवश्यक है
1: जी। जासर, सोमनाथ मंदिर की जो ऐतिहासिक यात्रा जो है, 1026 से शुरू होती है, और आज हम सन 2026 में हैं, 1000 वर्ष पूरे हो चुके हैं। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण भी हुए, और इन आक्रमणों और उनके पुनर्निर्माण के बाद जो सोमनाथ अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया, किस तरह भारतीय सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ये प्रतीक बन सकता है?
0: देखिए, बहुत ही ये बात रही है कि मोदी जी ने इस बात को, जैसे आपने भी कहा कि किसी चीज़ के विकास के साथ साथ वहाँ के ऐतिहासिक महत्व को, सांस्कृतिक विरासत को सुदृढ़ करने के लिए, क्योंकि आप जब सोमनाथ जाएंगे तो गुजरात के कल्चर को वहाँ महसूस करेंगे, सोमनाथ के कल्चर को वहाँ महसूस करेंगे, तो ये जो सांस्कृतिक जो गतिविधियाँ होंगी, जो सांस्कृतिक आयोजन होंगे, कहीं ना कहीं ये हमारे मानस में स्थान बना चुके रहेंगे, मानस पटल पे वो शामिल हो चुके रहेंगे। तो ये जो करोड़ों की संख्या में युवा और बुजुर्ग जा रहे हैं वहाँ पे, तो कहीं ना कहीं इसका असर वहाँ पे पड़ेगा, और आने वाले समय में जैसे आप हम बात करते हैं 12 ज्योतिर्लिंगों में, तो धीरे धीरे शनि एक एक ज्योतिर्लिंग पे काम होना शुरू हो चुका है, तो आने वाले समय में इसी तरह के जो आयोजन हैं

0: राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, राष्ट्र के उत्थान के लिए, राष्ट्र की समृद्धि के लिए कामना की जाती है। यही कार्य मोदी जी ने यहाँ किया और यही वजह है कि जिस ढंग से आपने देखा कि 11 मई को चूंकि इसकी नींव रखी गई, इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई, चूंकि 11 मई 1951 में जो है तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसकी इस ऐतिहासिक पल को वो किया था, उसको याद किया गया। और यही वजह थी कि मोदी जी ने 11 ज्योतिर्लिंगों के जल से अभिषेक करके ये इस कार्य की का श्रीगणेश किया था।
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया आपसे। अंतिम एक, जो आज के युवा हैं और क्योंकि युवा पीढ़ी के केंद्र में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केंद्र में हमेशा युवा पीढ़ी रहती है, आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं धर्म को लेकर, विरासत को लेकर, सांस्कृतिक विरासत को लेकर, जो सोमनाथ, आप भी मुझे लग रहा है कि बिल्कुल ये अपील करेंगे कि वो भी सोमनाथ मंदिर जाएं, वहाँ की विरासत को देकर देखें और किस तरह से इतने आक्रमणों के बाद भी मंदिर आज वहाँ खड़ा हुआ है और देश के गौरव की को बता रहा है।
0: बहुत अच्छी बात आपने कही और मैं आज के युवाओं से यही आग्रह करना करूँगा कि वो हमारी विरासत को, वो हमारे इतिहास को और हमारी संस्कृति को जिंदा रखने का प्रयास करें, क्योंकि भारत की बागडोर आने वाले समय में आपके हाथ में आने वाली है। आप इसको समझें कि इसकी महत्ता क्या है। बड़े संघर्षों से चीज़ें आज यहाँ खड़ी हुई है, इसको सहेजना और आगे लेकर के चलना आपकी जवाबदारी है। आप ज़रूर देखें और आपको ये सीख जरूर मिलेगी कि किस ढंग से कोई इमारत बार बार टूटने के बाद भी खड़ी होती है। कहीं ना कहीं आपके जीवन में इस बात को आत्मसात करने का ये अवसर होगा कि किस ढंग से गजनवी ने इसको बार बार तोड़ा, उसके बाद कई आक्रांताओं ने इसको तोड़ा, लेकिन आज भी सोमनाथ खड़ा हुआ है, सोमनाथ का मंदिर आज भी वही वैभव के साथ है। तो कहीं ना कहीं इस बात के संकेत हैं कि यदि हम प्रयास करते रहें तो जीर्ण उद्धार लगातार होता है और हम इस चीज़ में आगे बढ़ सकते हैं।
1: जी जाने से पहले एक बार फिर मैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ अमृत महोत्सव में 11 मई को जो शामिल हुए थे वहां पर क्या कुछ कहा था, एक बार फिर से सुनवाते हैं अपने श्रोताओं को।
2: हमारे सांस्कृतिक स्थल हजारों वर्षों से भारत की पहचान रहे हैं, इतनी समृद्ध विरासत हमें मिली है, लेकिन आप विडंबना देखिए, हमने दशकों तक उसके महत्व को नहीं समझा। दुनिया में से कितने ही उदाहरण हैं जहां विदेशी हमलावरों ने राष्ट्रीय पहचान से जुड़े स्थलों को नष्ट किया, लेकिन जब उस देश के लोगों को मौका मिला, सबने साथ आकर अपनी पहचान को फिर से सहजा, फिर से संवारा, पुनः प्रतिष्ठा की। लेकिन हमारे यहां राष्ट्रीय स्वाभिमान से जुड़े विषयों पर भी राजनीति होती रही। सोमनाथ खुद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आजादी के बाद पहले दायित्वों में से एक था कि सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार करते, इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने इसके लिए इतने प्रयास किए। लेकिन हम सब जानते हैं उन्हें इसके लिए नेहरू जी द्वारा कितना विरोध झेलना पड़ा था। मैं आज इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये सरदार साहब की इच्छा शक्ति थी कि इतने विरोध के बावजूद सरदार साहब डिगे नहीं, सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण भी हुआ और देश ने सदियों के कलंक को भी धो दिया। साथियों, दुर्भाग्य से देश में ऐसी शक्तियां आज भी प्रभावी हैं जिन्हें राष्ट्रीय स्वाभिमान से ज्यादा तुष्टीकरण जरूरी लगता है। राम मंदिर निर्माण जैसे अवसरों पर भी हमने देखा है किस तरह राम मंदिर निर्माण का भी विरोध किया गया। हमें ऐसी

0: मानसिकता से सावधान रहना है। इस तरह की संकुचित राजनीति को हमें पीछे छोड़ना होगा। हमें विकास और विरासत को साथ लेकर के आगे बढ़ना होगा।
1: अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ पत्रकार, लेखक, विचारक कृष्ण मोहन झा जी को, जो कि सोमनाथ अमृत महोत्सव पर उन्होंने विस्तार से वहाँ की विकास और विरासत की गौरव यात्रा पर प्रकाश डाला। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।
2: धन्यवाद, और आकाशवाणी की पूरी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और साधुवाद देता हूँ कि आपने इस गंभीर विषय को समाहित किया और लोगों तक सोमनाथ के बारे में बताने का प्रयास किया। धन्यवाद।
1: कार्यक्रम के आज के अंक में इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में किसी अन्य विषय के साथ। सुनते रहिए आकाशवाणी मध्य प्रदेश। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे पीएम मोदी के 12 साल सोमनाथ अमृत महोत्सव का सांस्कृतिक पुनर्जागरण। ये कार्यक्रम आरएनयू भोपाल की प्रस्तुति थी।
1: सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक लोक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: ये आकाशवाणी है। आज के राष्ट्रीय क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत के कार्यक्रम में हम सुनवा रहे हैं मैथिली लोक संगीत, जिसे प्रस्तुत कर रही हैं आकाशवाणी की ए श्रेणी की कलाकार सौम्या मिश्रा। सौम्या मिश्रा बिहार के मधुबनी जिले की निवासी हैं। वे एक प्रतिभाशाली लोक गायिका हैं, जिन्हें मैथिली, हिंदी और भोजपुरी में अपनी भावपूर्ण प्रस्तुतियों के लिए विशेष पहचान प्राप्त है। आपके संगीत में मिथिला की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं की गहरी छाप दिखाई देती है, साथ ही उसमें आधुनिक श्रोताओं को आकर्षित करने वाली नवीनता भी विद्यमान है। सौम्या मिश्रा देश भर के अनेक प्रतिष्ठित सांस्कृतिक समारोहों और मंचीय कार्यक्रमों में अपनी मधुर एवं भावपूर्ण गायकी से श्रोताओं का मन मोहती रहती हैं। आइए सुनते हैं आकाशवाणी की ए श्रेणी की कलाकार सौम्या मिश्रा की स्वरबद्ध प्रस्तुति में मनमोहक मैथिली लोकगीत। आज के कार्यक्रम में संगत करता है तबले पर हरिभूषण झा, ऑक्टोपैड पर ललित, ढोलक पर अमन कृष्ण और सिंथेसाइजर पर शशिभूषण झा। सौम्या मिश्रा अपने कार्यक्रम का आरंभ कर रही हैं महाकवि विद्यापति की एक रचना चानन भेल विषम सर रे से।
1: दिस इज आकाशवाणी इंटरनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ रीजनल फोक एंड लाइट म्यूजिक। वी प्रेजेंट मैथिली फोक सॉन्ग बाय सौम्या मिश्रा एंड ए ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। सौम्या मिश्रा हेल्स फ्रॉम मधुबनी बिहार। She is a gifted folk vocalist, acclaimed for her soulful renditions in Maithili, Hindi and Bhojpuri. Her music reflects a deep connection to the cultural traditions of Mithila, while carrying a freshness that appeals to contemporary audiences. Sowmya Mishra has performed at numerous prestigious cultural festivals and stage programs across the country, enchanting listeners with her melodious voice and heartfelt expression. In today's program, the accompanists are Haribhushan Jha on tabla, Lalit Kumar on octopad, Aman Krishan on dholak, and Shashibhushan Jha on keyboard. She begins her rendition with a composition titled Chanan Bhel.

0: अभी आप सुन रहे थे सौम्या मिश्रा से महाकवि विद्यापति की एक रचना चानन भेल विषम सर रे। आइए अब सुनते हैं एक लगनी गीत जिसके बोल हैं एकता हम बारी कुमारी।
1: We just heard a composition titled चानन भेल। Continuing this program, she now presents a composition titled एकता हम बारी कुमारी।

0: आप सुन रहे हैं सौम्या मिश्रा द्वारा प्रस्तुत मैथिली लोकगीत कार्यक्रम में अगली प्रस्तुति है एक चैती जिसके बोल है कोहके बारी कोयलिया हुरामा।
1: That was a Maithili composition performed by Soumya Mishra. We will now listen a composition titled Kuhke Bari Koyaliya Horama.

0: अभी आप सुन रहे थे चैती गीत। कार्यक्रम में अगली प्रस्तुति है एक पूर्वी, जिसके बोल हैं, बाट हेरी दिन काटी नूर बहैया।
1: That was a Maithili composition performed by Soumya Mishra. She concludes her rendition with a composition titled Baate Heri Din Kaati Nor Bahiye.

0: इसी के साथ आज के कार्यक्रम में मैथिली लोकगीत की ये प्रस्तुति अब यहीं संपन्न होती है। इस कार्यक्रम में तबले पर संगत की हरिभूषण झा ने, ऑक्टोपैड पर थे ललित कुमार, ढोलक पर थे अमन कृष्ण और सिंथेसाइजर पर साथ दिया था शशिभूषण झा ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया। कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे आकाशवाणी जयपुर ओडिशा की प्रस्तुति।
1: With that, she concludes her rendition of Maithili folk compositions. This part of the program was recorded in the studio of Akashwani Delhi. Continuing the broadcast from Akashwani Delhi, now we will listen to the presentation of Akashwani Jaipur, Odisha.

क्षेत्रीय लोक और सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूं। मैं अमीना हुसैन, नमस्कार। आज हम आपको सुनवा रहे हैं ओडिशा प्रदेश के कुछ मधुर और मन मोह लेने वाले आधुनिक गीत, जिनको प्रस्तुत किया है आकाशवाणी जयपुर केंद्र ओडिशा। इन गानों को सुरों में सजाकर आप तक पहुंचाया है आकाशवाणी जयपुर केंद्र ओडिशा के सुप्रसिद्ध टॉप ग्रेड म्यूजिक कंपोजर श्री विजय कुमार सामंतराय। श्री विजय कुमार सामंतराय माता श्रीमती स्नेहलता सामंतराय और पिता श्री चंद्रशेखर सामंतराय के सुपुत्र हैं। आपने गुरु श्री हेमंत कुमार त्रिपाठी के तत्वावधान में बचपन से ही बैला यानी कि वायोलिन की शिक्षा ग्रहण करना प्रारंभ कर दिया था। सन 1994 में आपने आकाशवाणी जयपुर केंद्र में स्टाफ आर्टिस्ट के तौर पर योगदान दिया। उसके बाद से आपने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक सीढ़ियों को पार करते हुए सन 2023 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय, आकाशवाणी और दूरदर्शन की तरफ से टॉप ग्रेड म्यूजिक कंपोजर का मान्यता हासिल किया। आपने सन 2015 में आकाशवाणी संगीत सम्मेलन के अखिल भारतीय संगीत कार्यक्रम में बेला वादक के तौर पर संगत भी किया है। आपने आकाशवाणी के विभिन्न कार्यक्रम में संगीत देकर 20 से भी अधिक नेशनल और इंटरनेशनल एनुअल अवार्ड भी प्राप्त किया है। तो लीजिए, आज हम आपको सुनवा रहे हैं विजय कुमार सामंतराय के बनाए हुए सुरों से सजे कुछ आधुनिक ओडिया गीत। विभिन्न वाद्य यंत्र पर संगत कर रहे हैं तबला पर सुशांत कुमार अधिकारी, बांसुरी पर वी कुर्मनाधन, वायोलिन पर हिमांशु भूषण शतपथी, मैंडोलिन पर के ईश्वर सराफ, गिटार पर इंदर सिंह और गान पर के संतोष कुमार राव, सेक्सोफोन पर हैं राहुल देव सामंतराय, ऑक्टोपैड पर बी जगदीश कुमार, ढोलक पर हैं उमेश कुमार पाणिग्राही और आकाश कुमार सामंतराय। स्पेशियल इफेक्ट दिया है गुप्तेश्वर पाणिग्राही। तो प्रस्तुत है पहला गाना, जिसका बोल है मन हृदय जेते सबू कथा तम आगे प्रिय कही देली। मतलब है अपने दिल की हर बात लो आज कह दिया हमने आपके सामने। ये बोल लिखा है गीतकार रंजन कुमार बेहरा और मधुर आवाज है प्रीति पंडा की।

अभी सुनते हैं जिंदगी की कुछ भूल भुलैया अनजान राहों की बात। ये बोल लिखा है गीतकार बसंत कुमार दास, आवाज है सनातन पुरोहित दास की। पांथ शाड़ार रातिटीए पाई घड़ीए पड़ुची उणा, हेले मधुशाला अजणा कोणरे सरुनाही बिका किणा। जीवन हेउ केते बाट बणा, हेउ केते बाट बणा।

अभी सुनते हैं गीतकार किशोर चंद्र नंद के लिखे हुए गीत आवेगरे के ही कही थीबा कथा मन तुली ने किया अंके। इस गाने को आवाज दिया है प्रीति पंडा। किसी ने जो दिल से कह दिया कुछ बातें, आज ये मन उन्हें ही क्यों ढूंढे।

कार्यक्रम के अगले गाने को अपने मन मोह लेने वाले आवाज से प्रस्तुत कर रहे हैं सनातन पुरोहित दास। गीतकार हैं गौर पटनायक। बोल है नाटकर मिछ अभिनय छड़ा आउ किछि जाने नाही, मतलब है जीवन के रंगमंच में मैं हूँ एक अभिनेता, झूठा अभिनय के सिवाय और कुछ भी तो नहीं आता।

अंत में प्रस्तुत है एक युगल गीत, गीतकार रंजन कुमार बेहरा, आवाज है सनातन पुरोहित दास और प्रीति पंडा की। बोल है, प्रथम देखारे तुम्हें मनकल चोरी, अल्प कथारे आहा लागिगला टोरी, पहली ही मुलाकात में मन चुरा लिया, थोड़े ही बातों में हाय दिल लगा लिया।

अभी आप सुन रहे थे क्षेत्रीय लोक और सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ ओडिया आधुनिक गीत, जिनको प्रस्तुत किया था आकाशवाणी जयपुर केंद्र उड़ीसा में और प्रसारण किया गया आकाशवाणी दिल्ली से। विभिन्न वाद्य यंत्र पर संगत कर रहे थे तबला पर सुशांत कुमार अधिकारी, बांसुरी पर वी कुर्मनाधन, वायोलिन पर हिमांशु भूषण सतपथी, मैंडोलिन पर के ईश्वर सराफ, गिटार पर इंदर सिंह और गान पर के संतोष कुमार राव, सेक्सोफोन पर थे राहुल देव सामंतराय, ऑक्टोपेड पर बी जगदीश कुमार, ढोलक पर उमेश कुमार पाणिग्राही और आकाश कुमार सामंतराय, स्पेशियल इफेक्ट दिया था गुप्तेश्वर पाणिग्राही। इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग में सहायता किया था रंजन कुमार बेहरा, यांत्रिक सहायता किए थे शरद कुमार पाढ़ी और एन योगेंद्र। इसी के साथ क्षेत्रीय लोक और सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम अब समाप्त होता है। विदा चाहती हूँ मैं अमीना हुसैन, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि लैटिन अमरीका में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में वेनेजुएला के साथ भारत का घनिष्ठ सहयोग विकासशील देशों के उत्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने मीडिया को बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
1: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसा के युग का अंत करके इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया है। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में गृह मंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने का कार्य कर रही है। बैठक में गृह मंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे कानून व्यवस्था पर ध्यान देने के बजाय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि उग्रवाद अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। उन्होंने राज्यों को नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का बुनियादी ढांचा तैयार करने को भी कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता को भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एक दूसरे से जोड़ता है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रथम विश्व योग चैंपियनशिप योगासन को वैश्विक खेल की पहचान दिलाएगी और युवाओं के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध कराएगी।
2: इस चैंपियनशिप के माध्यम से योगासन को एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के रूप में नई पहचान मिलेगी। मुझे विश्वास है कि भविष्य में योगासन भी अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में अपनी जगह बनाएगा, चाहे ओलंपिक्स हो या मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स हो। हम जितनी मेहनत करेंगे सुखद परिणाम आ भी सकता है।
0: भारतीय जनता पार्टी ने आज राज्यसभा चुनाव और उपचुनाव के लिए अपने 11 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पार्टी ने मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान से डॉ. अलका गुर्जर और डॉ. सतीश पुनिया को मैदान में उतारा गया है। राज्यसभा की 24 सीटों के लिए चुनाव 18 जून को होने हैं। इसके अलावा उड़ीसा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की एक एक सीट पर उपचुनाव भी कराए जाएंगे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज मिजोरम के चंफाई जिले में 9 स्थानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई म्यांमा से अवैध रूप से लाई जा रही सुपारी की तस्करी और 970 करोड़ रुपए से अधिक की आपराधिक आय से जुड़े धन शोधन के मामले में की गई। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज केरलम पहुंच गया है। मौसम विभाग ने केरलम और कर्नाटक में अगले 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। माहे, पुद्दुचेरी और कराईकल में भी कल तेज बारिश होने की संभावना है। बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड और पश्चिम राजस्थान में भी कल गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना है। विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में जैस्मीन लंबोरिया ने महिलाओं की 57 किलोग्राम भार वर्ग में नंबर 1 स्थान हासिल कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय किरण झा। Prime Minister Narendra Modi today held talks with acting President of Venezuela, Delcy Rodriguez, in New Delhi. The two leaders reviewed the full spectrum of bilateral relations and explored new avenues of cooperation in energy, trade, investment, healthcare and automobiles, among others. In a social media post, Mr. Modi said they had extensive discussions on the expanding cooperation in energy, critical minerals, technology, agriculture, health and people-to-people ties. He said that as a valued partner in Latin America, India's close cooperation with Venezuela holds immense importance for the Global South. He said both nations will continue to work together for the mutual benefit of the people of the two countries. Addressing media after the talks, Secretary East Rudrinder Tandon said Venezuela possesses one of the largest oil reserves in the world. He said today's discussions between the two sides focused on forging an energy partnership between the two countries as Venezuelan energy sector is undergoing a fundamental transformation. Union Home Minister Amit Shah today said that Narendra Modi government ended the era of violence in the northeast and transformed the region from the hotspot of disputes to that of opportunities. After attending the 73rd plenary session of the Northeastern Council NEC, Mr. Shah in a social media post said, "Today NEC is serving as an institution for strategic planning for the development of region while fulfilling people's aspirations and promoting culture." In the NEC meeting, the Home Minister instructed CMs to shift the focus from law and order to shielding the rights of citizens as insurgency is no longer an issue. He also directed states to build AI, machine learning and blockchain infrastructure for new generations. Mr. Shah said that he also instructed to market Northeast potential in agarwood, foreign trade and health tourism. Prime Minister Narendra Modi today said yoga is India's timeless gift to humanity. Virtual